यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज मंगलवार है, शक्षमवत 1948 के आषाढ़ माह की 9वीं तिथि, तदनुसार 30 जून सन 2026। श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:57 होने को है। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से तत्पश्चात होगा विविध भारती का कार्यक्रम। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से शुरू आंध्र प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2 जुलाई को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक का मसौदा पेश किया जाएगा। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। वे किसानों से सीधे संवाद करेंगे। श्री चौहान वहां एक प्रदर्शनी में भी जाएंगे। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांव और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के पेट्रोल पंप पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच

0: हॉर्मूज जल डमरू मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी युद्ध विराम के बाद हो रही है। दुनिया के लगभग 20% कच्चे तेल का परिवहन इसी जलमार्ग से होता है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हाल में घुसपैठ कर शिविर स्थापित करने संबंधित खबरों का खंडन किया है। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें तथ्यहीन और निराधार हैं। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित कई नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की ये कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए खतरा है। 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 57 दिन की इस यात्रा से पहले यात्रियों का पहला जत्था जम्मू पहुंचने लगा है। फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में पैराग्वे ने जर्मनी को एक कड़े मुकाबले में हरा दिया। दोनों टीमें निर्धारित समय पर 1-1 गोल की बराबरी पर थी। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में पैराग्वे ने जर्मनी को 4-3 से हराया। वहीं ब्राजील भी राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।

नमस्कार। प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदनवार। आज का चिंतन भर्तृहरि के नीति शतकम के अनुसार विद्यारूपी धन सबसे श्रेष्ठ धन है, क्योंकि इसे न तो चोर चुरा सकता है, न राजा छीन सकता है, न भाइयों में इसका बंटवारा होता है और न ही ये कोई बोझ बनता है। ये ऐसा धन है जो खर्च करने पर हमेशा बढ़ता ही है। आइए अब सुने भक्ति संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन झरोखा के अंतर्गत सुनिए आज दिनभर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

अब से थोड़ी देर में सुबह 6:35 से सुनेगा श्री रामचरितमानस गान, इसका 235वां भाग आप सुन सकेंगे। आज सुबह 6:45 और संध्या 6:45 से आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम संगीत सरिता। इसके अंतर्गत विविध भारती के खजाने से के अंतर्गत गायिका विदुषी डॉक्टर गंगूबाई हंगल से बातचीत सुनिएगा। सुबह 7 से भूले बिसरे गीत, 7:30 से हम है राही प्यार के, सुबह 8:15 से सुनेगा त्रिवेणी, आलेख एवं स्वर विधि जैन, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सुबह 8:30 से चित्रलोक, सुबह 9:30 और रात्रि 9:30 से आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम आज के फनकार। इसके अंतर्गत संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के कल्याण जी पर केंद्रित यह कार्यक्रम सुनिएगा, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। सुबह 10 से आपको सुनवाएंगे पिटारा के अंतर्गत सेहतनामा, इसके अंतर्गत सुनिएगा डॉक्टर गौरव मेहता गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट और हेप्टोलॉजिस्ट से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा भाग, संपादन सहयोग रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। सुबह 11 रात्रि 11 से सुनिएगा कार्यक्रम रंग तरंग, दिन में 12:05 से यादों की महफिल, दोपहर 1 से आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम सुरीला सफर, त्रिवेणी सुनिएगा दोपहर 2 से। दोपहर 2:30 से आपको सुनवाएंगे सदाबहार नगमे सखी सहेली, इस कार्यक्रम का वक्त होता है दोपहर 3 से, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

शाम 4 बजे से सुनेगा पिटारा के अंतर्गत सेलुलॉयड के सितारे। इसके अंतर्गत गीतकार, शायर और लेखक शकील आजमी से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा भाग सुन सकेंगे। संपादन सहयोग काजल भद्रगे, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। छाया गीत का पुनर्प्रसारण आप सुनते हैं शाम 5:30 से तराने नए पुराने, शाम 6 बजे से हिंदी में समाचार, 6:05 संध्या सुनेंगे तराने नए पुराने का शेष भाग, शाम 6:30 पर झरोखा, शाम 6:35 से संध्या रंजन। फौजी साथियों के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा शाम 7 बजे से जयमाला।

शाम 7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनेगा पॉप एक्सप्रेस। रात 8 बजे से हवा महल के अंतर्गत सुनवाएंगे आपको नाटका उनके महबूब, लेखन विमला रैना का, निर्देशन लोचन बख्शी का। चित्रलोक सुनिएगा रात 8:15 से। रात 9 बजे से आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम आपके लिए। रात 10 बजे से सुनेगा छाया गीत, आलेख है उस और ममता सिंह का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। और रात 10:30 से सुनेगा ढलती जाए रात। रात 11 बजे रंग तरंग। अभी आप सुन रहे थे झरोखा के अंतर्गत

रात 9 बजे से आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम आपके लिए। रात 10 बजे से सुनेगा छाया गीत, आलेख है उस और ममता सिंह का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। और रात 10:30 से सुनेगा ढलती जाए रात। रात 11 बजे रंग तरंग। अभी आप सुन रहे थे झरोखा के अंतर्गत कार्यक्रम।

चित्रकूट जाते हुए श्री राम के राज्याभिषेक के लिए गुरु की आज्ञा पाकर भरत जी पवित्र तीर्थों का जल ले गए थे, किंतु वहां से श्री राम के स्थान पर वो केवल उनकी पादुका लेकर ही लौट सके। अब उस पवित्र जल की समस्या थी, जिसे किसी उचित स्थान पर तिरोहित करना था। चित्रकूट की सभा में भरत जी के सभी संशयों के समाधान के पश्चात अत्रि मुनि के परामर्श के अनुसार तीर्थों के पवित्र जल की स्थापना उस अगम कूप में की गई, जो निकट के पर्वत के समीप ही था। छोटे भाई शत्रुघ्न, अत्रि ऋषि तथा अन्य साधु संतों समेत भरत जी उस अनादि स्थल पर पहुंचे, जो कालक्रम में लोप हो गया था। इसी कारण किसी को उस कुएं का पता भी न था। सेवकों ने पवित्र जल रखने के लिए उस जलयुक्त स्थान पर एक विशेष कूप का निर्माण किया। अत्रि ऋषि ने भविष्यवाणी की कि लोग इसे भरत कूप की संज्ञा देंगे। ऋषि ने उस स्थल विशेष की महिमा श्री राम को भी सुनाई। अपने समग्र समाज सहित भरत तथा शत्रुघ्न ने चित्रकूट के उस वनखंड का विचरण करके प्रकृति की छटा का सुख प्राप्त किया।

0: संगीत सरिता।
1: मित्रों नमस्कार, संगीत सरिता में विविध भारती के खजाने से कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग्स हम आपके लिए चुनकर ला रहे हैं जो अपने आप में अनूठी हैं, क्योंकि वो दुर्लभ हैं और अमूल्य हैं। आइए आज सुनते हैं किराना घराने की वरिष्ठ गायिका विदुषी डॉक्टर गंगूबाई हंगल से डॉक्टर बिंदु माधव पाठक की बातचीत।
2: डॉक्टर गंगूबाई हंगल जी नमस्ते।
3: नमस्ते।
2: सुना है कि आपकी माता जी कर्नाटक संगीत पद्धति की विदुषी थी, फिर भी आपको हिंदुस्तानी संगीत के प्रति कैसी प्रेरणा मिली?
3: उस वक्त ऐसे है, ज्यादा हिंदुस्तानी सुनने को मिलता था। मेरे माए कर्नाटक गाती थी, हम किसी को नहीं सुना उस वक्त।
2: अच्छा।
3: इसलिए जो ग्रामोफोन रिकॉर्ड आते जाते चाय के दुकान में हो या किसी के घर में हो, हम सुनते थे, वो हम सुन के थोड़ा थोड़ा गाने लगे
2: हिंदुस्तानी संगीत।
3: अच्छा। उस वक्त झोरा भाई, जानकी भाई और पैरा साहेब, ऐसे लोगों के हमने, मुझे याद है वो नाम इतने, वो हमने गाने लगे थोड़े बहुत सुन सुन के घर में। मुझे, मेरे माँ को ऐसे लगा इसको हिंदुस्तानी संगीत पसंद है, इसको सिखाएंगे, इसलिए
2: हिंदुस्तानी संगीत
3: संगीत सिखाएंगे। बाद में वो थोड़ा इधर से धारवाड़ में हमारा जन्म है, बाद में मुझे उस हुबली ले गए, वहाँ उलगुर कृष्णाचार्य करके
2: संगीत विद्वान
3: हुए, अब्दुल करीम खान के शागिर्द थे।
2: अच्छा।
3: उसके पास एक साल तक हमने
2: शिक्षा
3: पी। तो एक साल में मुझे ऐसा लगता है 50 धृत लय की वो चीजें बंदिश हमको बताए।
2: अच्छा।
3: मेरे आवाज पतला बहुत था।
2: अच्छा।
3: वो तो 3-3 मिनट में एक एक बंदिश में 2-2 ताने ऐसे कुछ वो बताए थे।
2: अच्छा।
3: हम ऐसे छोटा मोटा, कहीं हमारे माँ का प्रोग्राम, हम बीच में हुए, मैं भी गाती थी,
2: स्वर लगाती थी।
3: नहीं अलग से, क्योंकि मेरे माँ ने थोड़े बहुत शुरू में जो मुझे सिखाए स्वर के ज्ञान उनसे ही हो गया मेरे माँ से।
2: अच्छा।
3: हाँ, वो सुबह सुबह, उस वक्त मुझे बहुत छोटी थी उम्र में, 9-10 साल की, 5 बजे मुझे उठाती थी।
2: अच्छा।
3: हाँ, वो कर्नाटक स्वर तो कर्नाटक हिंदुस्तानी तो अलग नहीं है।
2: बिल्कुल।
3: इसलिए स्वर का साधना मेरे माँ से मिल गया।
2: अच्छा।
3: हाँ, वो उनकी पद्धति से मुझे रोज वो 1-1.5 घंटा सूर्यास्त करवाती थी। बाद में बीच में थोड़ा कुछ वजह से बंद हुआ, बाद में सवाई गंधर्व उसके पास थोड़े से बड़ी हुई थी, उस वक्त से हमने
2: उच्च शिक्षा
3: प्राप्त हो पाए।
2: डॉक्टर गंगूबाई जी।
3: हाँ।
2: आप तो किराने घराने की प्रसिद्ध गायिका हैं।
3: हाँ।
2: क्या आप किराना घराने के विशेषता के बारे में कुछ बताएंगे?
3: किराने घराने ऐसे हैं, स्वर अच्छी तरह से लगाना, बाकी का बेसुर गाते ऐसे नहीं
2: है। बिल्कुल। हाँ।
3: ये स्वर में ज्यादा ध्यान रखे हैं, इसलिए वो तो ऐसे बोलते हैं तंत्रवाद्यकार थे इनके पूर्वज, ऐसे कैसे भी वो ज्यादा स्वर का ध्यान रखते, स्वर के ज्यादा महत्व देके, स्वर एकदम आ करके नहीं लगाए।

0: करके उसको गोल ऐसे आ ऐसे करके लगा के एकदम स्वर में गाड़ना बोलते हैं, क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं,
1: मग्न हो जाना,
0: हाँ, हाँ, हो जाना। ऐसे गाने का हमारे किराने घराने की पद्धति है।
1: क्या आप गुरुकुल पद्धति में विश्वास रखते हैं?
0: हाँ जरूर, क्यों नहीं, क्योंकि हम आजकल देखते हैं सभी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में संगीत है, फिर वो अच्छे हैं क्योंकि प्रचार के लिए गायक बनना हो तो गुरुकुल पद्धति चाहिए, नहीं तो उनके लिए क्या होता है, किस घराने से जाना, किसके पास सीखना, ये कुछ मालूम हो जाता है उनको।
1: अच्छा,
0: हाँ गायक बनने के लिए गुरु पद्धति, मैंने तो शिक्षा पाई है, मुझे उस विश्वास इसी में है।
1: अच्छा, आप नए छात्रों के लिए क्या देने के, कैसे रियाज करना चाहिए और रागों की बढ़त कैसे करनी चाहिए?
0: वो तो किसी का आवाज पतला रहते हैं, किसी का बुद्धि अच्छा रहता है, आवाज नहीं रहते, वो गुरु ने बताना चाहिए किस पद्धति से वो
1: रियाज
0: करना। हमको तो हमारे गुरु जी ने एक एक स्वर का सुबह बैठने से तोड़ी शाम में मुल्तानी ऐसे हमको रियाज करने के लिए मुझे बताए थे। ऐसे एक एक स्वर षड्ज नीचे जितने जाता है खर्च पे उतने एक एक स्वर, सांस जब तक है उस तक एक एक स्वर
1: कहना चाहिए
0: और बाद में उसका ताने के तरह एक एक श्वास में कितनी दफे ताने आते हैं। सा नी दा पा दा नी सा ये जो है श्वास बढ़ाते ऐसे इतनी छह दफे सात कितने आते हैं इतने ऐसे हमको बताए थे। और विस्तार करने में तीन स्वर सारेगा गारेगा इतनी उनके अलग अलग
1: ढंग
0: होता है। बाद में गांधार के बाद मध्यम, मध्यम के बाद ऐसे जितने हमारे बुद्धि काम करेगा करना गाना ये हमको सिखाए उस वक्त।
1: अच्छा।
0: रास्ता ठीक बताना ये गुरु का काम है।
1: तो आप कहते हैं कि संस्थाओं में जैसे कि यूनिवर्सिटी हो या संगीत के महाविद्यालय हो वहाँ संगीत की शिक्षा, यानी कि वहाँ से कोई संगीतकार नहीं
0: बन पाता? कम, हमने तो देखे ही नहीं ऐसे, क्योंकि क्या होता है स्कूल से वो थोड़ा बहुत संगीत हो तो हो जाता है और एकदम कॉलेज में आना, कॉलेज में जब आते हैं 16 वर्ष तो हो जाते हैं उस वक्त कहीं ना कहीं संगीत शुरुआत होते हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है स्कूल से, आजकल हम देखते हैं स्कूल में प्रार्थना का अगर दूसरे कोई उनको पता नहीं, साल में एक गायक उसमें से निकलते हैं, बहुत कुछ होगा।
1: हाँ। तो आजकल आपको किस तरह के श्रोता मिलते हैं, यानी कि शास्त्रीय संगीत के प्रति अभिरुचि रखने वाले या
0: वो? हमारे लिए तो ऐसा नहीं होता, हम जो गाते वही सुनने वाले ही हमको मिलते हैं।
1: अच्छा,
0: आजकल उनको पता है गंगू भाई दूसरे कोई कुछ नहीं गाएगी, वो जो सुनने वाले वही आते हैं, मुझे कोई फरमाइश नहीं करते।
1: अच्छा,
0: शुरू बचपन में सब कुछ गाती थी हम, मराठी गजल ठुमरी हमने, मुझे बाद में ऐसे लगा इसमें करने का मुझे फुर्सत नहीं मिलते।
1: अच्छा,
0: ये मुझे मेरा ये है वो।
1: अच्छा,
0: इसलिए यही गाते चले आए हमने।
1: छात्रों के लिए आपका क्या आदेश है?
0: श्रद्धा भक्ति से जो गुरु बताते हैं एक करना, फिर विश्वास से।
1: अच्छा, आप इतने राग गाती हैं, उनमें से आपको अत्यंत प्रिय कौन सा राग है?
0: कभी कभी एक एक राग जम जाता है, ज्यादा से ज्यादा से करुणा रस सुबह का राग मुझे ज्यादा मुझे गाने के अच्छा लगता है। वो प्रोग्राम में तो सभी राग एक एक दफे हमको ऐसा लगता है ये राग मुझे इतनी नहीं, फिर वो ही जम जाता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। ज्यादा से कोमल स्वर का मुझे पसंद है।
1: क्या आप एक उनकी झलक दिखाएंगे किसी एक राग में?
0: अच्छा, ये जो हम बता रहे हैं कोमल रेखा वसावरी।
1: हाँ।

0: धन्यवाद डॉक्टर गंगूबाई जी।
1: आज आपने सुनी बातचीत किराना घराने की वरिष्ठ गायिका विदुषी डॉक्टर गंगूबाई हनगल से डॉक्टर बिंदु माधव पाठक की बातचीत। आकाशवाणी धारवाड़ केंद्र पर रिकॉर्ड की गई ये बातचीत वर्ष 1990 में विविध भारती के संगीत चर्चा कार्यक्रम में प्रसारित हुई। इसकी प्रस्तुतकर्ता थी छाया गांगुली। वर्ष 1913 में जन्मी गंगूबाई हनगल जीवन भर संगीत की साधना करती रहीं। वैसी कठोर साधना, अथक परिश्रम और कड़े रियाज ने उन्हें गिने चुने शीर्षस्थ कलाकारों की पंक्ति में स्थान दिलाया। उनके अद्भुत कंठ से निकलकर स्वरों का जो आविष्कार होता था उसका कोई सानी नहीं। आज वो हमारे बीच नहीं है। वर्ष 2009 में वे असीम में विलीन हो गई, परंतु उनकी आवाज हम सुन सकते हैं जैसे उनसे की गई ये बातचीत अभी हमने सुनी। इसी तरह आइए सुनते हैं उनका गाया हुआ राग चंद्रकौंस। तीन ताल में निबद्ध बंदिश के बोल हैं, कब घर आओ पिया।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, भूले बिसरे गीत। इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं मोहम्मद रफी और कमल बारोट की आवाजों में फूल बने अंगारे। इस फिल्म के गाने के साथ आनंद बख्शी ने लिखा है इसे और संगीत से संवारा है कल्याण जी आनंद जी ने।

ये हमारी जहाँ पहली मुलाकात याद है तुझे चपाटी का वो फुटपाथ हुई थी हमारी जहाँ

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में मजबूर फिल्म का गाना। आनंद बख्शी हैं गीतकार और संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है भूले बिसरे गीत। लीजिए अब सुनिए कमर जलालाबादी का लिखा और कल्याण जी आनंद जी का संगीत बद्ध किया गाना। आवाजें हैं लता मंगेशकर और साथियों की, फिल्म का नाम छलिया।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर। जिनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
3: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया हो। मैं, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। फिर उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया।
2: बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता, एक दिन तेरे बिन।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश लीजिए, सुनिए आशा भोसले, उषा खन्ना और साथियों की आवाजों में छोटी बहू फिल्म से। उद्धव कुमार हैं गीतकार और संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है, उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने

0: उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
0: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा,
2: रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहाँ पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: अब आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम संपन्न हुआ, आगे दीजिए नमस्कार।

हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास।

नमस्ते रोहतास सुनने वाले सभी श्रोताओं को कुसुम का प्रातःकालीन नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत सुविचार के साथ। कोई किसी को सिखा नहीं सकता, जब खुद में इच्छा जागती है तभी कोई सीख पाता है। श्री अरबिंदो।

और भाई, आज के इतिहास के बारे में जाने तो आज है 30 जून। आज ही के दिन सन 2002 में ब्राज़ील ने जर्मनी को 2-0 से हराकर फुटबॉल के विश्व कप पर कब्जा किया। 2008 में आज ही के दिन रविकांत उमाशंकर चौधरी व विमल चंद्र पांडे को संयुक्त रूप से भारतीय ज्ञानपीठ का नवलेखन पुरस्कार प्रदान किया गया। और आज ही के दिन सन 2008 में भारतीय पत्रकार अनीसुद्दीन अजीज़ को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ बुक कीपर्स को के न्यू बिजनेस ऑफ द ईयर अवार्ड में सम्मानित किया गया।

और अब आज के दिन जन्मे व्यक्ति के बारे में जाने, तो आज जन्म हुआ महान शख्स नागार्जुन, जो भारतीय इतिहासकार रहे। इनका जन्म 1911 में हुआ था। 1921 में रघुवंश का जन्म हुआ, जो हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार एवं

आलोचक थे। सन 1928 में हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध संगीतकार कल्याण जी का जन्म हुआ और C.N.R. Rao भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में से एक का जन्म सन 1934 में हुआ था। 1969 में जन्म हुआ भारतीय राजनीतिज्ञ और राज्यसभा के सांसद हैं भूपेंद्र यादव का।

और आज के दिन अलविदा कहे गए शख्स के बारे में जानते हैं। तो आज ही के दिन सन 1985 में निधन हुआ के एच आरा का, जो भारत के प्रसिद्ध चित्रकार थे। 1970 में एक समर्पित महिला थी जिन्होंने अनभिज्ञता को दूर करने और ज्ञान, प्रेम और विश्वास से भरी दुनिया बनाने की कोशिश की थी, का निधन हुआ था। उनका नाम था आशा देवी आर्यानकम। और 1917

जो भारत के प्रसिद्ध दिग्गज राजनेता, उद्योगपति, शिक्षाविद और विचारक थे। और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म आंचल से।

और अब आइए आज के स्थानीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में जाने। तो आज के स्थानीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधि में सबसे पहले बच्चों की रचनात्मक प्रतिभा को प्रोत्साहन। भभुआ, बच्चों की रचनात्मक एवं कलात्मक प्रतिभा को प्रोत्साहित करने वाली मासिक पत्रिका बालमन का 53वां अंक सफलतापूर्वक प्रकाशित हो गया है। बता दें कि पिछले 4.5 वर्षों से इस पत्रिका का नियमित प्रकाशन कर शिक्षक धीरज कुमार बच्चों की सृजनात्मक क्षमता को निखारने और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का सराहनीय कार्य कर रहे हैं। यह पत्रिका विशेष रूप से ग्रामीण एवं दुर्गम क्षेत्रों के बच्चों को अपनी कला, लेखन, चित्रकला, कविता, कहानी, सामान्य ज्ञान तथा अन्य रचनात्मक गतिविधियों को देश के विभिन्न राज्यों के बच्चों के बीच साझा करने का अवसर प्रदान कर रही है।

अगली गतिविधि में किसानों को फसलों में मशीनीकरण की दी जानकारी। सिटी रिपोर्ट भभुआ। जिले में कृषि से जुड़े कई विभागों के समन्वय से जिले के 3 लाख किसानों को लक्षित कर प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित की जा रही है। 11 प्रखंडों में बारी बारी से कैंप का आयोजन पूरे जून माह में किया गया। आज अंतिम दिन है जिसमें खेती की बारीकियां किसानों को सिखाई जा रही है ताकि उनकी अच्छी उपज की गुणवत्ता बेहतर बनी रहे। कृषि वैज्ञानिकों की टीम गांव में भ्रमण कर चौपाल कर रही है। भारत सरकार के इस प्रोजेक्ट में कृषि विज्ञान केंद्र, उद्यान विभाग, कृषि विभाग, आत्मा सहित अन्य विभागों का भी समन्वय रखा गया है। जानकारी के मुताबिक खेत बचाओ अभियान चलाई जा रही है। ये 1 से 30 जून तक प्रस्तावित है। आज यानी 29 जून को भी जागरूकता कार्यक्रम चलाई गई। और हमारी अगली गतिविधि में 7 दिवसीय नेशनल FDP का समापन। गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग ने IEEE कोलकाता सेक्शन के सहयोग से 7 दिन का फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम पूरा किया। इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल का समर्थन रहा। कार्यक्रम का विषय रहा AI आधारित युग में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए एडवांस्ड लर्निंग स्ट्रेटजीज। समापन 29 जून को समारोह के साथ हुआ।

और हमारी अगली सांस्कृतिक सामाजिक गतिविधि में प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रमा बोले, संत कबीर महान संत वो समाज सुधारक थे। संत कबीरदास विचार मंच के तत्वाधान में महान संत कबीरदास जयंती समारोह दास विचार मंच के अध्यक्ष योगेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक समिति के संरक्षक सत्यनारायण स्वामी के संचालन में बीपी मंडल परिसर जी संपन्न हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन दीप जलाकर एवं पुष्पांजलि अर्पित कर शेर शाह सूरी इंटर स्तरीय विद्यालय सासाराम के पूर्व प्राचार्य शिक्षाविद सुग्रीव प्रसाद सिंह एवं कवि लेखक साहित्यकार प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रमा सिंह ने किया तथा उपस्थित सभी लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित कर संत कबीरदास जी को नमन किया। संत कबीर के व्यक्तित्व व कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए वक्ताओं ने संत कबीर को महान संत समाज सुधारक बताया। उनके दोहे आज भी प्रेरणा देती है, साथ को एक नई दिशा भी देती है। प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रमा सिंह ने बताया कि आजीवन समाज में व्याप्त आडंबरों पर कुठाराघात करने वाले संपूर्ण विश्व में अपने दोहे के माध्यम से मानव को कर्मशील बनाने वाले भारतीय संत कबीरदास जी को कोटि कोट नमन। उनकी वाणी युगो युग तक हमें प्रेरणा देती रहेगी।

और हमारी अगली स्थानीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में है, पांचवी कक्षा तक 60 छात्रों पर होंगे 2 शिक्षक। सरकार ने प्रारंभिक स्कूलों में टीचरों की न्यूनतम संख्या तय कर दी है। बता दें कि शिक्षा विभाग की तरफ से कहा गया है कि पहली से पांचवी तक के क्लास में 60 छात्रों पर 2 शिक्षकों का होना जरूरी है, तो वहीं 61 से 90 छात्रों पर 30 टीचरों का स्कूल में होना अनिवार्य है। सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षकों की न्यूनतम संख्या कर दी गई है। वास्तविक नामांकन, कक्षा संरचना और विषयगत आवश्यकता के आधार पर इनकी संख्या तय की जाएगी। इस संबंध में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और हमारी अगली गतिविधि में अस्थायी लोक अदालत, आम जनता के हक में व्यवस्था। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देश के आलोक में सोमवार को नगर परिषद भभुआ के परिसर में अस्थायी लोक अदालत के प्रचार प्रसार और इसके कार्यों के प्रति लोगों को सचेत करने के लिए एक विशेष कार्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आम जनता को सार्वजनिक उपयोगी सेवाओं से जुड़े विवादों के त्वरित, सुलभ और किफ़ायती समाधान के प्रति जागरूक करना था।

और हमारी अगली गतिविधि में पल्स पोलियो अभियान में जीविका दीदी और सेविकाएं करेंगे सहयोग। जिले में चल रहे पल्स पोलियो अभियान पर आशा कार्यकर्ताओं की हड़ताल का असर पड़ने लगा है। विभिन्न मांगों को लेकर आशा कार्यकर्ताओं के कार्य बहिष्कार के कारण कई प्रखंडों में बच्चों की पोलियो की खुराक पिलाने का कार्य प्रभावित हो रहा है। स्थिति को देखते हुए जिला स्वास्थ्य समिति ने अभियान को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था लागू की है। जिला स्वास्थ्य समिति की ओर से जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधक को पत्र जारी कर सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी ने पत्र में बताया है कि राज्य स्वास्थ्य समिति के निर्देशानुसार 28 जून से सभी जिले के सभी प्रखंडों में पल्स पोलियो अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन आशा कार्यकर्ताओं की हड़ताल के कारण कुछ क्षेत्रों में कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

और अब आइए आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। तो श्रोताओं, स्टूडियो में लगभग सभी समाचार पत्र आ चुके हैं और आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खियां अलग अलग हैं। हिंदुस्तान की पहली हेडलाइन में है, बिहार में सरकारी शिक्षकों के तबादलों का रास्ता साफ, स्कूलों में शिक्षकों के पद और उपलब्धता की पहचान की प्रक्रिया पूरी। बिहार के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के तबादले की राह की बाधा दूर हो गई है। शिक्षा विभाग ने 5.88 लाख शिक्षकों के रेशनलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी कर ली है। इसके तहत सभी 74,000 विद्यालयों में शिक्षकों के पद और उनकी उपलब्धता की पहचान की गई है। ये शिक्षकों के तबादले का आधार बनेगा। विभाग ने जुलाई में बड़े पैमाने पर स्कूल शिक्षकों के तबादले की योजना बनाई है। छात्रों की संख्या के मुताबिक शिक्षकों का अनुपात नहीं होने के कारण शिक्षकों के पद और उनकी उपलब्धता को लेकर समस्या खड़ी हो रही थी। विभाग के पास कोई सटीक आंकड़ा भी नहीं था जिसके आधार पर शिक्षकों का तबादला होता। गौर हो कि हाल ही राज्य मंत्रिमंडल ने शिक्षकों के तबादले नीति को मंजूरी दी है।

प्रभात खबर की हेडलाइन है, कई जिलों में थी सिंगमारी की तैयारी, सरगना समेत 24 धराएं। सिपाही भर्ती परीक्षा सहरसा से लेकर कैमूर तक हुई कार्रवाई। केंद्रीय चयन पार्षद द्वारा आयोजित बिहार पुलिस वायरलेस ऑपरेटर भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने के आरोप में 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें केंद्राधीक्षक, शिक्षक व बायोमेट्रिक्स कर्मी भी शामिल है। सहरसा पुलिस ने गिरोह के सरगना समेत 6 लोगों को पकड़ा गया है। पुलिस ने उनके पास से 10 मोबाइल, कई अभ्यर्थियों के मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र, पासबुक, ब्लैंक चेक व अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए हैं। मुख्यालय DSP 2 कमलेश प्रसाद सिंह ने बताया कि सूचना मिली थी कि एक गिरोह अभ्यर्थियों से लाखों रुपए लेकर सेटिंग कर रहा है और व्हाट्सएप व ब्लूटूथ के माध्यमों से प्रश्नों के उत्तर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके बाद पुलिस टीम ने शिवपुरी वार्ड संख्या 34 स्थित एक किराए के मकान में छापेमारी की। इस दौरान खुरहरान गांव का चंदन कुमार व सिमराहा वार्ड संख्या 4 का चंदन कुमार यादव गिरफ्तार किया गया। उनके पास से कई अभ्यर्थियों के मूल प्रवेश पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र, पासबुक, ब्लैंक चेक व मोबाइल बरामद किए गए। मोबाइल में परीक्षा के विभिन्न सेटों के उत्तर व व्हाट्सएप चैट भी मिले।

इनसे है, सुर्खी है, पहली गलती पर जुर्माना नहीं, पहले मिलेगा सुधार का मौका। सरकार ने एक्ट में सुधार करते हुए कारोबारियों को दी राहत। केंद्र सरकार ने लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट में बड़ा सुधार करते हुए कारोबारियों को बड़ी राहत दी है। पहली बार होने वाली तकनीकी या प्रक्रियागत गलतियों पर कारोबारियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी, जुर्माना नहीं देना होगा या मुकदमा नहीं होगा। निर्माता, आयातक, पैकर, डीलर, रिपेयरर, व्यापारी, MSME व अन्य पंजीकृत इकाइयों को गलती होने पर नोटिस जारी कर उन्हें पहली बार सुधार का मौका दिया जाएगा। समय पर सुधार नहीं होने या दोबारा उसी तरह की गलती होने पर ही उन्हें कार्रवाई के दायरे में लाया जाएगा। उपभोक्ता मामले के विभाग ने यह व्यवस्था जन विश्वास अधिनियम 2026 के तहत लागू की है। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य ईमानदार कारोबारियों को राहत देना, अनुपालन आसान बनाना और अनावश्यक मुकदमेबाजी कम करना है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी स्थिति में उपभोक्ताओं के हित में से समझौता नहीं किया जाएगा।

और हमारी अगली सुर्खी हिंदुस्तान से है। अयोध्या के वकील चढ़ावा चोरी के आरोपियों की पैरवी नहीं करेंगे। अयोध्या बार एसोसिएशन ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में गिरफ्तार आरोपियों का मुकदमा नहीं लड़ने का फैसला लिया है। बार एसोसिएशन कार्यकारिणी की विशेष बैठक में सोमवार को सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि बार से जुड़ा कोई भी अधिवक्ता इस मामले में आरोपियों की ओर से न्यायालय में पैरवी नहीं करेगा। साथ ही अभियोजन पक्ष को मजबूत बनाने के लिए अधिवक्ताओं की एक विशेष टीम गठित करने का भी फैसला लिया गया है। कचहरी परिसर स्थित बार एसोसिएशन सभागार में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए बार एसोसिएशन अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्र ने कहा है कि यदि कोई अधिवक्ता संघ के निर्णय से विपरीत जाकर आरोपियों की पैरवी करता है तो उस पर 5 लाख रुपए का आर्थिक दंड लगाया जाएगा। तय राशि जमा न करने की स्थिति में संबंधित अधिवक्ता की बार एसोसिएशन की सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। और हमारी अगली सुर्खी प्रभात खबर से, मुंबई से दरभंगा पहुंचे विमान का टायर रनवे पर फटा, बाल बाल बचे यात्री। दरभंगा एयरपोर्ट पर सोमवार को एक बड़ा हादसा टल गया। मुंबई से दरभंगा आए स्पाइस जेट के विमान का टायर लैंडिंग के दौरान फट गया। इससे विमान रनवे पर घसीटता रहा। इस दौरान विमान में बैठे यात्रियों में कुछ समय के लिए अफरा तफरी मच गई। हालांकि पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। और इसी के साथ नमस्ते रोहतास का ये अंक यहीं संपन्न होता है।

अभी आप सुन रहे थे प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है FM 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आइए सुनते हैं समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री और वितरण पर लगे अस्थायी प्रतिबंध हटाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी। 30 लाख रुपए तक की कारों को सड़क कर और पंजीकरण शुल्क से छूट दी। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की। हमलों में 36 नागरिकों की मौत और 163 अन्य घायल। अमरीका और ईरान होर्मूज जलडमरू मध्य पर जारी विवाद को सुलझाने के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता करेंगे। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमत में बढ़ोतरी नहीं की। इससे खुदरा और थोक कीमतों में अंतर आ गया है। इसी वजह से 12 जून में अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। इसका उद्देश्य काला बाजारी और जमाखोरी रोकना तथा सभी उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला लिया गया है। अमन की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में UCC लागू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में घोषणा की कि विधेयक की मसौदा गुरुवार को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। गुजरात, उत्तराखंड और असम की तर्ज पर सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन देसाई के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि समिति विवाह, तलाक सहित कुल 9 विषय पर अध्ययन करेगी और 4 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जनजातीय, आदिवासियों, कुर्मी और प्राचीन स्वदेशी समुदाय को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2 महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिए गए। एक रिपोर्ट।
3: इन फैसलों का उद्देश्य भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना और फिल्म निर्माण के लिए बेहतर माहौल तैयार करना है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अध्ययन समूह का गठन किया है। ये समूह भारतीय सिनेमा के सामने मौजूद अवसरों और चुनौतियों का अध्ययन कर उद्योग को मजबूत बनाने के सुझाव देगा। मंत्रालय ने राज्यों के लिए आदर्श राज्य सिनेमा विनियम भी तैयार किए हैं और उन्हें अपनाने का अनुरोध किया है। सरकार का कहना है कि इससे देश में आधुनिक, मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी फिल्म उद्योग के विकास को बढ़ावा मिलेगा। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के आंध्र प्रदेश दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के 1 दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के भी प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। कृषि मंत्री किसानों से सीधे बातचीत करेंगे। श्री चौहान का वहां एक प्रदर्शनी में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें

0: और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। श्री चौहान कल अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई और जमीनी सर्वेक्षण करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सरकारी विभागों और संस्थानों को आज से आवारा कुत्तों के हमलों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। सभी संबंधित विभागों से तय समय सीमा के भीतर दिशा निर्देश लागू करने को कहा गया है। यह आदेश पिछले वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद जारी किया गया है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से बच्चों और मरीजों के लिए सार्वजनिक स्थानों को अधिक सुरक्षित बनाना है। दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कारों पर सड़क कर और पंजीकरण शुल्क नहीं लगेगा। नीति के अनुसार पुराना वाहन स्क्रैप कर नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 1 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये नीति 1 जुलाई से अगले 4 वर्षों में चरणबद्ध ढंग से लागू की जाएगी। इसका उद्देश्य 31 मार्च 2030 तक दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और शून्य उत्सर्जन परिवहन वाला शहर बनाना है। उन्होंने कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास पर 8,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
1: पूरी की पूरी पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर केंद्रित है। इस पूरी ईवी पॉलिसी के अंतर्गत हमारा 7,000 करोड़ का खर्च तो मात्र इन 4 सालों में होगा और इसके अलावा 8,000 करोड़ अन्य हम लोग इस ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में और जो साल दर साल रोड टैक्सेस जो माफ होंगे उसमें हमने कैलकुलेट किया है, तो लगभग 15,000 करोड़ का लाभ दिल्ली की जनता को इस ईवी पॉलिसी के माध्यम से होने वाला है।
0: और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मतदाताओं को गणना प्रपत्र घर घर पहुंचाने का अभियान भी आज से शुरू हो रहा है। मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक हर घर जाकर प्रपत्र वितरित करेंगे और भरे हुए प्रपत्र भी प्राप्त करेंगे। उन्होंने बताया कि दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दर्ज कराई जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत और 163 लोगों के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। मंत्रालय ने कहा कि यह पाकिस्तान के गैर जिम्मेदाराना रवैये को दर्शाता है। भारत ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भी अपना समर्थन दोहराया है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा हाल में घुसपैठ कर शिविर स्थापित करने संबंधित खबरों का खंडन किया है। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें तथ्यहीन और निराधार हैं। अमेरिका और ईरान के बीच होर्मूज जलडमरू मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी युद्ध विराम के बाद हो रही है। एक रिपोर्ट।
2: विश्व के लगभग 20% कच्चे तेल का परिवहन इसी जलमार्ग से होता है। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच मिसाइल हमलों के कारण हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही और व्यापार प्रभावित हुआ। हालांकि दोनों देशों ने कल अस्थायी युद्ध विराम पर सहमति जताई है। इस महीने हुए समझौता ज्ञापन की अलग अलग व्याख्या के कारण दोनों देशों के बीच फिर तनाव बढ़ गया था। दोनों देशों के बीच होने वाली इस वार्ता में सुरक्षित नौवहन व्यापार क्षेत्र में तनाव कम करने के उपायों पर चर्चा होने की संभावना है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: 3 जुलाई से शुरू हो रही पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 57 दिन की इस यात्रा से पहले श्रद्धालुओं का पहला जत्था जम्मू पहुंचने लगा है। जम्मू में सीसीटीवी कैमरों और आधुनिक निगरानी प्रणाली को सक्रिय कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक मॉकड्रिल भी आयोजित की है। सुरक्षा एजेंसियों ने श्रद्धालुओं से निर्धारित मार्ग का पालन करने और सुरक्षा बलों के निर्देशों का सहयोग करने की अपील की है। झारखंड में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हो, चांद भैरव और फूलो झानो के बलिदान के स्मरण में मनाया जाता है।

0: झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडी में हूल दिवस के अवसर पर हजारों लोग संथाल हूल के अमर शहीदों सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो और झानो को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 30 जून 1855 को भोगनाडी से सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन और महाजनी प्रथा के खिलाफ संथाल हूल का बिगुल फूका गया था। क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को कई मोर्चों पर कड़ी चुनौती दी और आंदोलन लगभग एक वर्ष तक चला। इस संघर्ष के दौरान चांद और भैरव शहीद हो गए, जबकि बाद में सिद्धू और कान्हू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी। झारखंड में हूल दिवस स्वाभिमान, प्रतिरोध और जनजातीय अस्मिता का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गृह मंत्री अमित शाह ने हूल दिवस के अवसर पर क्रांतिकारियों और संथाल विद्रोह के अमर वीरों तथा वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने आज देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, बिहार, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दक्षिण पश्चिम मानसून के कल गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, मराठवाड़ा, आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप में बिजली कड़कने और आंधी आने का अनुमान है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में 5 बार की चैंपियन ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए मुकाबले में गैब्रियल मार्टिनेली ने अतिरिक्त समय में विजयी गोल दागा। अब अंतिम 16 में ब्राजील का सामना आइवरी कोस्ट या नॉर्वे से होगा। एक अन्य मुकाबले में पराग्वे ने जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
2: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से छपे प्रमुख समाचार पत्रों ने आज दिल्ली में 1 जुलाई से लागू होने वाली नई ईवी नीति को अपने मुख पृष्ठ पर जगह दी है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, दिल्ली की नई ईवी नीति जारी, खरीद पर बम्पर छूट मिलेगी। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, ईवी पॉलिसी, रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन जीरो। दैनिक भास्कर ने छापा है, 30 लाख रुपए तक की ई कार टैक्स फ्री, पुरानी कार स्क्रैप करने पर 1 लाख रुपए। दैनिक जागरण ने इसी खबर पर संपादकीय आलेख में लिखा है, सर्दियों के दिनों में दिल्ली सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में शामिल हो जाती है, ऐसे में आवश्यक था कि राजधानी में प्रभावी ईवी नीति हो ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित किया जा सके। दिल्ली सरकार को ऐसे वाहन चार्जिंग प्वाइंट बनाने चाहिए जो वाहनों की बैटरी को तेजी से चार्ज करने में सक्षम हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं कक्षा के मौजूदा सत्र के विद्यार्थियों पर त्रिभाषा नीति लागू न करने का फैसला भी कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान के बोल हैं, 10वीं के मौजूदा सत्र पर त्रिभाषा नीति लागू नहीं होगी। पंजाब केसरी ने लिखा है, त्रिभाषा नीति पर छात्रों को बड़ी राहत। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में राजस्थान पत्रिका ने फैजाबाद बार एसोसिएशन का फैसला छापा है। पत्र लिखता है, वकील नहीं लड़ेंगे आरोपियों का केस, संत बोले आस्था पर आघात। वीर अर्जुन लिखता है, आरोपियों का केस लड़ने वाले वकीलों पर लगेगा 5 लाख का जुर्माना। 3 जुलाई से शुरू होने वाली पवित्र श्री अमरनाथ जी यात्रा पर भी समाचार पत्रों की नजर है। दैनिक ट्रिब्यून ने बाबा बर्फानी के प्रथम दर्शन को सचित्र प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स ने भी पवित्र दर्शन का मनोरम चित्र मुखपृष्ठ पर छापा है। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ मंदिर के सामने बड़ी संख्या में आए श्रद्धालुओं की तस्वीर भी अमर उजाला ने छापी है।
1: धन्यवाद सरफिरोजी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री और वितरण पर लगे अस्थायी प्रतिबंध हटाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी। 30 लाख रुपए तक की कारों को सड़क कर और पंजीकरण शुल्क से छूट दी जाएगी। अमेरिका और ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य पर जारी विवाद को सुलझाने के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता करेंगे। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये

0: का समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है FM 103.4 MHz पर। आइए सुनते हैं देशभक्ति गीत।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM 103.4 MHz पर। और अब प्रस्तुत है पत्र आधारित फरमाइशी कार्यक्रम पसंद आपकी। पसंद आपकी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को कुसुम का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आपके पत्रों के साथ। तो श्रोताओं, स्टूडियो में ढेर सारे पत्र आ चुके हैं और हमारे जितने भी श्रोतागण अभी तक अपना पत्र नहीं भेजा है वो हमें फटाफट पत्र भेजें, क्योंकि आपकी फरमाइश के गीत हम इस कार्यक्रम में सुनवाते हैं। और हमारे जिन श्रोताओं को और भी पत्र भेजने हैं ताकि उनको और भी गाने सुनवाए जाए, वो भी देर ना करें और हमें पत्र भेजें। तो सबसे पहले हमारा पता नोट कर ले। हमारा पता है पसंद आपकी कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी सासाराम। पिन नंबर है 821115। हमारा पिन नंबर ध्यान से नोट कर ले, 821115। तो चलिए श्रोताओं, अब बिना देर किए आपके पत्र लेते हैं और जानते हैं कि आज आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं। तो ये पत्र आया है नूर महल महसूल सीतामढ़ी बिहार से है, और हमारे जो श्रोतागण हैं वो है मुसर्रत जहानाज शिक्षिका, तलहत जहानाज, फरहत जहानाज, रिहफत जहानाज, नुहजहत जहानाज, साजिया साहीन नाज, नाजिया नूरी नाज। और ये हमारे श्रोता हैं कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से हैं, ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजन राय है गाजीपुर दुबिहा नेवादा से, और अवधेश राय, प्रीति राय, नवनीत रॉय है गाजीपुर शेरपुर कला से। उसके साथ ही हमारा ये पत्र है छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद शर्मा, किशोर कुमार शर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झाविंद्र कुमार वर्मा हमारे श्रोतागण हैं और ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म भीगी पलके से ये प्यारा सा गीत, बोल है जन्म जन्म का साथ। तो आप बिना देर किए सुनवाते हैं आपके पसंद का ये प्यारा सा गीत।

इसी गीत को सुनना चाहा है उत्तर प्रदेश मिर्जापुर से भूपेंद्र कौर, हरमीत सिंह डंग, रविंद्र सिंह डंग, बंटी सिंह डंग, किदत सिंह, गुरप्रीत सिंह सेट्टी, अमोल सिंह डंग, नवरत्न सिंह, प्रतिमा डंग, हरप्रीत कौर।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे सुनना चाहते हैं कलेर बिहार से मोहम्मद आसिफ खान, बेगम निकत परवीन, सदफ आरजू, साहिल अरमान, अजबर हामिद, मशकूर आलम, शमा परवीन।

ताजपुर मोरवा से हैं भाईकारी रायकारी मीनाकारी पुंजराज आर्यन आरती पुंज आकर्षण पुंज जयश्री पिंकी रिंकी रिक्की नीतू मोहम्मद फारूक ललन मिश्रा और जयंत कुमार बैरागी है ढोली सकरा से।

और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे सुनना चाहते हैं दतरंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाब दास मानिकपुरी, रिंगनी से दिनेश वर्मा और लक्ष्मणपुर से विश्वनाथ साहू। नरहन स्टेट से है नूतन मिश्रा, सुमन मिश्रा, अमृता, अनुपम आराध्या, विनीता मिश्रा और स्नेहलता जैन।

अभी आप सुन रहे थे अनारी फिल्म का ये प्यारा सा गीत मुकेश के स्वर में, शब्द शैलेंद्र के और शंकर जयकिशन ने धुन बनाई थी। और इसी के साथ पत्र आधारित फरमाइशी कार्यक्रम पसंद आपकी यही संपन्न होता है। तो श्रोताओं, हमें रहेगा आपके पत्र का इंतज़ार, तो दीजिए इजाज़त। यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के पटना केंद्र से।

0: समाचार आप सुनेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल क्या

पास, दिल से दिल तक, नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है, आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाए। कल से एक दिन में अधिकतम डीजल खरीदने की सीमा होगी समाप्त। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से की मुलाकात। 53,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 5 प्रमुख सड़क और पुल परियोजनाओं को मंजूरी देने पर बनी सहमति। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के तबादले के लिए अगले सप्ताह से शुरू होगी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया। और पंजाब के जालंधर में आयोजित राष्ट्रीय सब जूनियर बॉक्सिंग प्रतियोगिता में बिहार के खिलाड़ियों ने 2 स्वर्ण समेत कुल 4 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर कल से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। एक रिपोर्ट।
1: मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमत में बढ़ोतरी नहीं की। इससे खुदरा और थोक कीमतों में अंतर आ गया है। इसी वजह से 12 जून में अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। इसका उद्देश्य काला बाजारी और जमाखोरी रोकना तथा सभी उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला लिया गया है। अमन की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
0: केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन खबरों का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि पेट्रोल पंपों पर एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल

A20 के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी वाले होर्डिंग लगाए गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावे झूठे हैं। इकाई ने कहा कि पेट्रोल पंपों पर ऐसा कोई होर्डिंग नहीं लगाया गया है। राज्य की 5 प्रमुख सड़क और पुल परियोजनाओं को जल्द ही केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने की संभावना है। लगभग 53,000 करोड़ रुपए की लागत वाली इन परियोजनाओं की लंबाई 412 किलोमीटर है। नई दिल्ली में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के साथ हुई बैठक में इस पर सहमति बनी। बैठक में पटना पूर्णिया मार्ग, वाराणसी कोलकाता कॉरिडोर के 2 पैकेज, गंडक नदी पर पुल, मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी राष्ट्रीय राजमार्ग और अनिसाबाद दीदारगंज एलिवेटेड रोड सहित अन्य परियोजनाओं को शीघ्र मंजूरी देने और समयबद्ध निर्माण पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से बिहार में आवागमन सुगम होगा और पड़ोसी राज्यों के साथ व्यापार तथा संपर्क को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश में 60 मीटर से 250 मीटर लंबे 479 पुलों की भार क्षमता और संरचनात्मक स्थिति का वैज्ञानिक आकलन कराया जाएगा। पथ निर्माण विभाग ने अगले 6 महीने में सभी चयनित पुलों का सेफ्टी ऑडिट और हेल्थ कार्ड तैयार करने का लक्ष्य रखा है। विभाग के अनुसार पुलों की तकनीकी जांच IIT पटना, IIT दिल्ली तथा अन्य इंजीनियरिंग संस्थानों से कराई जाएगी। जांच रिपोर्ट के आधार पर जरूरत के अनुसार पुलों की मरम्मत और अन्य आवश्यक कार्य किए जाएंगे। गौरतलब है कि राज्य में 250 मीटर से अधिक लंबे 85 पुलों की जांच पहले से ही IIT पटना द्वारा की जा रही है। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों के तबादले का रास्ता साफ हो गया है। शिक्षा विभाग ने लगभग 5,88,000 शिक्षकों के रेशनलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी कर ली है। इसके तहत सभी 76,000 सरकारी स्कूलों में स्वीकृत पदों और कार्यरत शिक्षकों की उपलब्धता का आकलन किया गया है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बताया कि तबादला पोर्टल अगले सप्ताह सक्रिय किया जाएगा। शिक्षक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और आवेदन प्राप्त होने के बाद 2 सप्ताह के भीतर तबादला प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि रेशनलाइजेशन से यह स्पष्ट हो गया है कि किस विद्यालय में शिक्षकों की कमी है और कहां आवश्यकता से अधिक शिक्षक पदस्थापित हैं। इससे छात्रों की संख्या और विषयवार जरूरत के अनुरूप शिक्षकों की तैनाती सुनिश्चित करने में सुविधा होगी। विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन यानी BBG योजना कल से लागू हो जाएगी। इस योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को वर्ष में 100 दिनों के बजाय 125 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। रोजगार नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता और मजदूरी के भुगतान में 15 दिनों से अधिक की देरी होने पर क्षतिपूर्ति का भी प्रावधान किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने विकसित भारत चिरामजी योजना के तहत देश भर में एक समान मजदूरी दर लागू करने की मांग की है। श्री कुमार नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बिहार के लिए स्वीकृत 61 लाख आवासों की राशि शीघ्र जारी करने की भी मांग की। सम्मेलन में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बिहार में शुरू किए गए ऑन साइट जियो टैगिंग पहल को राष्ट्रीय स्तर पर श्रेष्ठ कार्य प्रणालियों में शामिल करते हुए सराहा गया। बिहार पुलिस रेडियो ऑपरेटर सिपाही के 993 पदों के लिए आयोजित परीक्षा के दौरान फर्जीवाड़ा के मामलों में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। खगड़िया में पुलिस ने सॉल्वर गैंग अभ्यर्थियों, शिक्षकों और एक परीक्षा केंद्र के अधीक्षक समेत कुल 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों के पास से वाहन, मोबाइल फोन, ब्लैंक चेक, एडमिट कार्ड और अन्य कागजात बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार अभ्यर्थियों से परीक्षा पास कराने के नाम पर लाखों रुपए की मांग की जाती थी। वहीं हाजीपुर में एक परीक्षा केंद्र के केंद्राधीक्षक और 2 वीक्षकों के खिलाफ परीक्षा में अनियमितता के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। नवादा में 2 अभ्यर्थियों द्वारा OMR शीट की कॉपी जमा नहीं करने के मामले में भी केस दर्ज किया गया है। दूसरी तरफ मुंगेर में

0: आकाशवाणी एट 90।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @news_पटना को फॉलो कर सकते हैं। राज्य के उत्तरी हिस्सों में मॉनसून की सक्रियता से कई जिलों में झमाझम बारिश हुई है। पिछले 24 घंटों में सुपौल, अररिया, वैशाली, पूर्णिया, मधुबनी, किशनगंज, दरभंगा और मधेपुरा समेत कई जिलों में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा दर्ज की गई। सुपौल के सरायगढ़ भपटियाई में सबसे अधिक 196.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग ने आज गोपालगंज और पश्चिम चंपारण जिले के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं दरभंगा, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, शिवहर, सीतामढ़ी और वैशाली जिले में भी कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इधर दक्षिण बिहार में कुछ स्थानों पर बारिश होने और बादल छाए रहने से अधिकतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की गई है। सभी जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। इस दौरान 38.1 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ शेखपुरा प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। पटना का अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राज्य में बारिश के दौरान वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो गई। सीतामढ़ी जिले में वज्रपात की घटना में 1 महिला और 1 बच्ची की मौत हो गई। वहीं मुंगेर में 1 किशोरी की मौत हुई है। पूर्वी चंपारण के रामगढ़वा में खेत में काम कर रही 3 महिलाएं वज्रपात की चपेट में आकर घायल हो गईं। इधर दरभंगा और मधुबनी में आकाशीय बिजली गिरने से 2 प्राचीन शिव मंदिरों के गुंबद और मुख्य द्वार क्षतिग्रस्त हो गए। मधुबनी के बाबूबरही में 1 पेट्रोल पंप की छत को भी नुकसान पहुंचा है। पंजाब के जालंधर में आयोजित राष्ट्रीय सब जूनियर बॉक्सिंग प्रतियोगिता में बिहार के बॉक्सरों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 4 पदक जीते। महिला बॉक्सर प्रगति ने 64 किलोग्राम भार वर्ग में शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता। वहीं 55 किलोग्राम भार वर्ग में नित्या पांडे ने भी स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पुरुष वर्ग के 49 किलोग्राम भार वर्ग में वीर ने कांस्य पदक हासिल किया। 67 किलोग्राम भार वर्ग में लक्की ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीता है। मोतिहारी की एक अदालत ने भूमि विवाद में हुई हत्या के एक मामले में 6 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही इन सभी पर 33,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। पटना की एनडीपीएस अदालत ने गांजा तस्करी के आरोप में दोषी ओडिशा के सिमलीगुड़ा निवासी दिलीप पासवान को 12 वर्ष कारावास और 1,00,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं अररिया की एक अदालत ने एनडीपीएस एक्ट में दोषी रंजीत राय को 14 वर्ष सश्रम कारावास और 1,00,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। छपरा में अधिवक्ता पिता पुत्र दोहरे हत्याकांड के मुख्य गवाह पंकज कुमार राय की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना में मृतक का भाई भी घायल हुआ है। पुलिस ने इस मामले में कई लोगों को

0: हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज में एक शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग में 3 लोग घायल हो गए। पश्चिम चंपारण जिले के बगहा पुलिस जिला अंतर्गत धना चेक पोस्ट पर उत्पाद विभाग की टीम ने एक ट्रक से 10 लाख रुपए मूल्य की 83 कार्टन प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ चालक को गिरफ्तार किया है। वहीं जिले के नरकटियागंज में रेलवे सुरक्षा बल ने सप्त क्रांति सुपर फास्ट एक्सप्रेस की पेनेट्री कार और उससे सटी बोगी से 62 बोतल शराब बरामद की है। इस मामले में पेनेट्री कार मैनेजर को गिरफ्तार किया गया है। पटना के अगमकुआं थाना क्षेत्र से उत्पाद विभाग की टीम ने एक ट्रक से 400 कार्टन शराब बरामद की है। शराब की यह खेप दवा के बीच छुपा कर लाई जा रही थी। सीतामढ़ी जिले के परिहार थाना हाजत से 25,000 रूपये का इनामी अपराधी प्रभु भगत पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में ड्यूटी पर तैनात 3 चौकीदारों को निलंबित कर दिया गया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण की सुर्खी है 53,000 करोड़ से अधिक की 5 परियोजनाएं स्वीकृत, सीएम और पथ निर्माण मंत्री गडकरी संग बैठक में सहमति। हिंदुस्तान ने लिखा है शिक्षकों के तबादले की बाधा दूर, पोर्टल पर अगले हफ्ते से आवेदन। दैनिक भास्कर लिखता है दरभंगा में लैंडिंग के दौरान स्पाइस जेट का टायर फटा, इंडिगो की फ्लाइट डाइवर्ट। प्रभात खबर की सुर्खी है 2 जुलाई से मलाही पकड़ी तक चलेगी पटना मेट्रो। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में 8 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। आज अखबार की सुर्खी है बिना परिसीमन होंगे बिहार पंचायत चुनाव, आरक्षण रोस्टर पर मंत्री दीपक प्रकाश का बड़ा ऐलान। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाए। कल से एक दिन में अधिकतम डीजल खरीदने की सीमा होगी समाप्त। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से की मुलाकात। 53,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 5 प्रमुख सड़क और पुल परियोजनाओं को मंजूरी देने पर बनी सहमति। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के तबादले के लिए अगले सप्ताह से शुरू होगी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया। और पंजाब के जालंधर में आयोजित राष्ट्रीय सब जूनियर बॉक्सिंग प्रतियोगिता में बिहार के खिलाड़ियों ने 2 स्वर्ण समेत कुल 4 पदक जीते। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

अब से थोड़ी ही देर में हम आपको सुनवाएंगे हिंदी फिल्म संगीत के तहत फिल्मी गाने गीत मलिका कार्यक्रम में। 9:30 पर चलेंगे विविध भारती और सुनेंगे आज के फनकार कार्यक्रम को। 10 बजे होगा हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से और 10:05 पर हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम आवाज़, जिसमें रोहतास जिला के सासाराम प्रखंड दरीगांव पंचायत के तेंदुआ गांव के लोगों से नाली गली बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य और कृषि कार्य के लिए मिल रही सुविधाओं पर की गई बातचीत होगी। संकलन एवं वाचन मुमताज अहमद और प्रस्तुतकर्ता होंगे संतोष कुमार।

लोक माधुरी आप सुनेंगे सुबह के 10:30 पर भोजपुरी एल्बम लोकगीत पर आधारित ये कार्यक्रम, और भोजपुरी एल्बम सॉन्ग पर आधारित कार्यक्रम रसधार हम आपको सुनवाएंगे सुबह के 10:45 पर। इसके साथ ही लोक माधुरी भोजपुरी एल्बम लोकगीत होगा सुबह के 11:00।

रंग तरंग कार्यक्रम विविध भारती के तहत हम आपको सुनवाएंगे सुबह के 11:25 पर। संध्या 5:10 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत के तहत वंदन कार्यक्रम को, और संध्या 5:30 पर होगा युवाओं का कार्यक्रम युववाणी, जिसमें आज हम बातें करेंगे जलवायु परिवर्तन से बचने का रास्ता वृक्षारोपण पर, सफलता असफलता की पहली सीढ़ी पर।

भोजपुरी लोकगीत आप सुनेंगे संध्या के 6 बजे। इसके साथ ही 6:05 पर होगा भोजपुरी समाचार बुलेटिन आकाशवाणी के पटना केंद्र से। 6:10 पर किसान भाई बहनों का कार्यक्रम लेकर हाजिर होंगे कार्यक्रम किसानवाड़ी में। इस कार्यक्रम के प्रायोजककर्ता है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

सांझ गीत संध्या के 6:40 पर, और गुड इवनिंग रोहतास आप सुनेंगे संध्या के 7:15 से। इसके साथ ही 7:25 पर होगा प्रादेशिक समाचार जिले की हलचल आकाशवाणी के पटना केंद्र से।

ईमेल आधारित फरमाइशी कार्यक्रम ई मनपसंद में हम आपको सुनवाएंगे हिंदी फिल्म संगीत संध्या के 7:50 से और रात्रि 9:00 भोजपुरी लोकगीत पर आधारित कार्यक्रम होगा लोकधारा। रात्रि 9:15 पर गजलों की महफिल सजेगी कार्यक्रम महफिल में।

रस रंग हिंदी एल्बम सॉन्ग पर आधारित कार्यक्रम होगा रात्रि के 10 बजे 10:30 पर। हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा चित्रपट तरह।

ने। इसके साथ अगले दिन के कार्यक्रम विवरणी और मौसम पूर्वानुमान के बारे में आप जानेंगे रात्रि के 10:55 पर। 11 बजे होगा हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार और अंत में सभा का समापन होगा रात्रि के 11:10 पर। तो श्रोताओं, ये थे आज के कार्यक्रम विवरणी की एक झलक। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है FM 103.4 MHz पर। लीजिए सुनिए हिंदी फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गीत मलिका के में कार्यक्रम का पहला गीत।

अभी आप सुन रहे थे फौजी कॉलिंग से ये प्यारा सा गीत शालिनी प्रतीक सिन्हा के स्वर में। शब्द शकील आजमी के और धुन बनाया था विजय वर्मा ने। और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत,

अभी आप सुन रहे थे कोई जाने ना फिल्म से ये प्यारा सा गीत नीति मोहन लखविंदर वडाली के स्वर में, शब्द मनोज मुतशिर के, शाम दीवाना के, और धुन बनाया था रोचक कोहली विक्रम नागी ने। और अब ये सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत लक्ष्मी बॉम्ब से। इस गीत को शब्द दिया है गगन आहूजा ने, गायक कलाकार है निकिता गांधी, शशि डीजे खुशी, और धुन बनाई है शशि डीजे खुशी।

अभी आप सुन रहे थे नैना फिल्म का ये गीत अमाल मलिक के स्वर में, शब्द मनोज मुतशिर के, और इसी के साथ गीत मलिका का यह कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है FM 103.4 मेगा हर्ट्स पर। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम को, कृपया करें थोड़ा सा इंतज़ार।

लेकिन कल्याण जी और आनंद जी की जोड़ी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। इसीलिए आज के इस कार्यक्रम में ज्यादा जिक्र तो कल्याण जी का होगा, लेकिन कुल मिलाकर ये बात कल्याण जी और आनंद जी पर केंद्रित रहेगी। यानी जोड़ी कल्याण जी आनंद जी की बातें होंगी आज के इस प्रोग्राम में। जो

कल्याण जी भाई दोनों भाइयों में सबसे बड़े हैं। 1929 में उनका जन्म हुआ था, जबकि आनंद जी का जन्म कच्छ में सन 1933 में हुआ था। मजे की बात यह है कि आनंद जी तो बचपन में कच्छ गुजरात में रहे, लेकिन कल्याण जी मुंबई में बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने चले आए। आगे चलकर इनका परिवार मुंबई आ गया। दोनों भाई चाल के अपने घर में पड़ोसियों के घर

कल्याण जी भाई दोनों भाइयों में सबसे बड़े हैं। 1929 में उनका जन्म हुआ था, जबकि आनंद जी का जन्म कच्छ में सन 1933 में हुआ था। मजे की बात यह है कि आनंद जी तो बचपन में कच्छ गुजरात में रहे, लेकिन कल्याण जी मुंबई में बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने चले आए। आगे चलकर इनका परिवार मुंबई आ गया। दोनों भाई चाल के अपने घर में, पड़ोसियों के घरों में रेडियो सुना करते थे, क्योंकि रेडियो तब एक लग्जरी हुआ करता था और सबके घरों में रेडियो नहीं होता था। जब घर में ग्रामोफोन आया तो दोनों भाई मिलकर सुरेंद्र, शांता आप्टे, कुंदनलाल सहगल और पंकज मलिक के गीतों को बड़े चाव से सुना करते थे। सन 1954 अचानक कल्याण जी वीर जी शाह शोहरत की ऊंचाई पर पहुंच गए। दरअसल शशधर मुखर्जी की फिल्म नागिन में उन्होंने संगीतकार हेमंत कुमार के निर्देशन में क्ले वॉयलिन पर बीन की आवाज निकाली थी। ये अपने आप में एक करिश्मा था, क्योंकि इससे पहले फिल्म संगीत में जब भी बीन के सुर सुनाई पड़ते थे तो वो असली बीन होते थे, लेकिन इस बार वाद्य बदल गया था और सुर कुछ तरोताजा हो गए थे।

इस गाने के वादक, जी हाँ वादक यानी म्यूजिशियन कल्याण जी को बड़ी प्रसिद्धि मिली। कल्याण जी वीरजी शाह ने बतौर अकेले संगीतकार फिल्म सट्टा बाजार में भी संगीत दिया था। अभी तक आनंद जी उनके साथ नहीं आए थे।

दिलचस्प बात यह है कि मनमोहन देसाई ने सन 1960 में जब छलिया फिल्म बनाई तो भी कल्याण जी आनंद जी को मौका दिया। छलिया का संगीत बड़ा ही लोकप्रिय हुआ।

0: भी तुमसे है प्यार, रुमाल हमें देके जाना।
1: सन 1958 में निर्माता निर्देशक कीकू भाई देसाई ने दोनों भाइयों को सम्राट चंद्रगुप्त नामक फिल्म में बतौर स्वतंत्र जोड़ी पहला मौका दिया। हम आपको बता दें कि कीकू भाई मनमोहन देसाई के पिता थे।

सन 1964 की बात है। मनोज कुमार फिल्म उपकार बना रहे थे। उनकी इच्छा थी कि इसका संगीत शंकर जयकिशन दें, लेकिन इस जानी मानी जोड़ी के बीच तनाव चल रहा था, इसलिए बात कुछ बनी नहीं। लेकिन जयकिशन ने कल्याण जी आनंद जी के नाम की सिफारिश मनोज कुमार से की।

उपकार वो फिल्म है जिसने कल्याण जी आनंद जी को शंकर जयकिशन के प्रभाव से मुक्त किया। यहां से वो संगीत आया जिसमें रिदम का अनूठा पैटर्न था।

सिने संगीत के कद्रदान केवल रिदम और अरेंजमेंट को सुनकर कल्याण जी आनंद जी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी का फर्क समझ लेते हैं।

काशी और बांसुरी और साथ में ग्रुप वायलिन, सब कुछ कल्याण जी आनंद जी के संगीत में अनूठा और निराला है।

प्यार वफा, कस्मे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। ये गाना मेरे छोटे भाई आनंद जी ने कई सालों पहले इंदिओ जी का लिखा हुआ वो तैयार करके रखा हुआ था। तो मनोज जी नए नए डायरेक्टर हुए थे, उपकार पिक्चर बना रहे थे, तो उनको ये गाना बहुत पसंद आ गया। उन्होंने बोला कि कल्याण जी भाई ये गाना मेरे लिए रख लीजिए, मैं उपकार फिल्म में प्राण जी के पास गाऊंगा। तो हमने सोचा कि ये उनको उस टाइम प्राण जी फिल्मों में गाया नहीं करते थे, तो हमने सोचा कि बिल्कुल नए डायरेक्टर हैं और शायद हमें भी नए कर देंगे। लेकिन मनोज जी ने उपकार फिल्म में वो गाना प्राण जी से इतना अच्छा गवाया और प्राण जी ने भी इतना अच्छा गाया है कि जब अपन फिल्म देखते हैं तो लगता

मुकेश और कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी ने कुछ बड़े अद्भुत नगमे दिए हैं। दरअसल शंकर जयकिशन के बाद अगर मुकेश की प्रतिभा को किसी ने पहचाना तो वो कल्याण जी आनंद जी ही थे।

तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार न कर। आपको शायद मालूम होगा कि ये गाने के लिए हम लोगों को सिने म्यूजिक डायरेक्टर का फर्स्ट टाइम अवार्ड मिला था। और मुझे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि कोई भी गाना मैं जब अनाउंस करता हूँ तो सब लोग चाहते हैं कि इसके साथ कोई हंसी मजाक जरूर होनी चाहिए। तो इसमें तो सही वाक्या होगा हो गया था, वो मैं आपको सुनाता हूँ। क्योंकि मुझे एक दिन एक ये गाना रिकॉर्ड होने के बाद किसी एक लड़की का फोन आया कि भाई हमें आपका मैं तो एक ख्वाब हूँ ये गाना बहुत पसंद आया और मैं चाहूंगी कि आपके मुंह से ये गाना सुनूं। तो हमने उनको म्यूजिक हॉल पे बुला लिया, तो एक दफे सुनाया। उसके बाद फिर वो दो चार दिन के बाद आई कि मुझे हमें ये फिर गाना सुनाइए। तो तीन चार दफे उन्होंने जब हमसे सुना तो मैंने

मैं उनके सामने देख रहा था। तो बाद में चौथी दफे जब मैंने ये गाना सुनाया तो मैंने ये गाना बोला कि मैं तो एक बाप हूँ, इस बाप से तो प्यार न कर, क्योंकि उसकी निगाहों से लग रहा था कि इसमें और कुछ चक्कर है।

0: कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी ने भारतीय शास्त्रीय संगीत और पाश्चात्य संगीत को मिला दिया। वे प्रगतिशील संगीतकार थे, प्रगतिशील इस मायने में कि उन्होंने संगीत के बने बनाए ढर्रे को तोड़ा, लगातार नए प्रयोग किए, नई ध्वनियां अपने संगीत में पिरोईं और बनाया अद्भुत संगीत।
1: ढोल बजा

0: चाहे उदास नगमा हो या ढमाढम संगीत, कल्याण जी आनंद जी की कोई सानी नहीं। आइए कुछ उदास नगमे सुने जाएं इस संगीतकार जोड़ी के।
1: हम

0: फिल्म समझौता।
1: समझौता कमों से कर लो जिंदगी में।
2: समझौता कमों से कर लो जिंदगी में कम भी मिलते हैं। ये गाना मेरे एक डॉक्टर दोस्त हैं, उन्होंने एक दिन मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन दिया। मैं बोले किस बात की कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहे हैं आप? बोले भाई आपका मैं गाना लेके गया था और उससे मेरा एक पेशेंट बहुत अच्छा हो गया। मतलब गाने से पेशेंट अच्छा हो गया? बोले आपके गाने के कुछ वर्ड्स ऐसे थे कि उसकी लाइफ में कुछ चेंज आ गया। तो अरे सही वाक्य है कि अगर इस गाने को करेक्ट कोई मीनिंग समझे तो जिंदगी की काफी उलझने कम हो जाती है।

आपको ये जानकर अचरज होगा कि कल्याण जी आनंद जी की इस सदाबहार और सुपरहिट जोड़ी को जीवन में केवल एक बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सन 1974 में ये फिल्म थी कोरा कागज। कल्याण जी आनंद जी की संगीत यात्रा इतनी लंबी है कि आधे घंटे के सीमित समय में हम सिर्फ ऊपर ऊपर से उनके सफर पर नजर डाल सकते हैं। कुल मिलाकर ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि ये जोड़ी लगातार हिट संगीत देती रही, लगातार लोगों के दिलों पर राज करती रही।

कल्याण जी आनंद जी की ये जोड़ी टूट गई है। टूटना शायद आपको सही शब्द ना लगे, ये जोड़ी एक दूसरे से बिछड़ गई है। आज कल्याण जी नहीं हैं, लेकिन आनंद जी हैं और है इस जोड़ी का अनूठा संग।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के कल्याण जी पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंप पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल की खुदरा

0: कीमत में बढ़ोतरी नहीं की। इससे खुदरा और थोक कीमतों में अंतर आ गया है। इसी वजह से 12 जून में अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। इसका उद्देश्य कालाबाजारी और जमाखोरी रोकना तथा सभी उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला लिया गया है। अमन की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
1: सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए दो महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिए गए। इन फैसलों का उद्देश्य भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना और फिल्म निर्माण के लिए बेहतर माहौल तैयार करना है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अध्ययन समूह का गठन किया है। समूह भारतीय सिनेमा के सामने मौजूद अवसरों और चुनौतियों का अध्ययन कर उद्योग को मजबूत बनाने के सुझाव देगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2 जुलाई को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक का मसौदा पेश किया जाएगा। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के आंध्र प्रदेश दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के भी प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कार पर सड़क कर और पंजीकरण शुल्क नहीं लगेगा। नीति के अनुसार पुराना वाहन स्क्रैप कर नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये नीति 1 जुलाई से अगले 4 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी। इसका उद्देश्य 31 मार्च 2030 तक दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और शून्य उत्सर्जन परिवहन वाला शहर बनाना है। उन्होंने कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहन के विकास पर 8000 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
2: पूरी की पूरी पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर केंद्रित है। इस पूरी ईवी पॉलिसी के अंतर्गत हमारा 7000 करोड़ का खर्च तो मात्र इन 4 सालों में होगा और इसके अलावा 8000 करोड़ अन्य हम लोग इस ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में और जो साल दर साल रोड टैक्सेस जो माफ होंगे उसमें हमने कैलकुलेट किया है, तो लगभग 15000 करोड़ का लाभ दिल्ली की जनता को इस ईवी पॉलिसी के माध्यम से होने वाला है।
1: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मतदाताओं को गणना प्रपत्र घर घर पहुंचाने का अभियान भी आज से शुरू हो रहा है। मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक हर घर जाकर प्रपत्र वितरित करेंगे और भरे हुए प्रपत्र भी प्राप्त करेंगे। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाके में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की ये कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। फुटबॉल में फीफा विश्व कप 2026 के राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में मोरक्को ने नीदरलैंड्स को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराया। 2 घंटे तक चले रोमांचक मुकाबले में दोनों टीमें 1-1 से ड्रॉ पर थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है FM 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम आवाज़।

दोस्तों नमस्कार, साप्ताहिक कार्यक्रम आवाज के इस अंक में आपका स्वागत है। हम हैं आपके दोस्त मुमताज अहमद। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी कोशिश होती है आम लोगों की आवाज़ आप तक पहुंचाने की। आज के इस अंक में हम आपको सुनवाएं

0: आएंगे रोहतास जिला के सासाराम प्रखंड के तेंदुआ गांव के लोगों से की गई बातचीत। दोस्तों, सफाई क्यों जरूरी है, इसका आकलन हम इस आधार पर कर सकते हैं कि जो इलाका साफ रहता है, नाली गली की सफाई एक अंतराल के बाद होती रहती है, उस क्षेत्र के लोग स्वस्थ रहते हैं, खुशहाल रहते हैं। इसलिए दोस्तों, हमें भी अपने आसपास के क्षेत्र की सफाई पर ध्यान देते रहना चाहिए ताकि बीमारी फैलाने वाले कीड़े को किसी भी तरह से पनपने का मौका न मिल पाए। यदि ये कीड़े पनपने लगेंगे, इन्हें पनपने का मौका मिल गया तो ये हमें किसी न किसी रूप में प्रतिकूल प्रभाव डालना शुरू कर देंगे। हम बीमार भी हो सकते हैं, बीमारी का शिकार भी हो सकते हैं। इसलिए ज़रूरी यह है कि अपने आसपास के क्षेत्र की सफाई एक अंतराल के बाद हम करते रहें। गंदगी किसी भी तरह से हमें फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती है। दोस्तों, रोहतास जिला के सासाराम प्रखंड के तेंदुआ गांव के लोगों से हमने बात की। तेंदुआ गांव दरीगांव पंचायत में पड़ता है और कैमूर पहाड़ी के बगल में बसा हुआ है। गांव के लोगों से यानी तेंदुआ गांव के लोगों से हमने जानना चाहा कि तेंदुआ गांव में नाली गली बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य और कृषि कार्य के लिए अभी तक क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। आइए सुनते हैं तेंदुआ गांव के लोग अपने गांव में मिल रही सुविधाओं के बारे में क्या बताते हैं, क्या कहते हैं। रोहतास जिला के सासाराम प्रखंड के दरीगांव पंचायत के तेंदुआ गांव के लोगों से हम बात कर रहे हैं। तेंदुआ गांव में हम आ चुके हैं और गांव के कई लोग हमारे बीच खड़े हुए हैं। जानने की कोशिश कर रहे हैं कि तेंदुआ गांव में नाली गली बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य और कृषि कार्य के लिए अभी तक क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। तेंदुआ गांव के कई लोग हमारे बीच खड़े हुए हैं। पहले आप बताइए, नाम अपना बता दीजिए।
1: राजकिशोर सिंह।
0: गांव का नाम?
1: ग्राम तेंदुआ।
0: पंचायत?
1: दरगांव।
0: आप अपने गांव के गली के बारे में बताइए, सभी गली बन चुके हैं या कुछ बाकी भी है?
1: बाकी है, बहुत गली से प्रॉब्लम है। गली के ना बनने से सवाल सुन ली की 3-4 गाँव परेशान बा, इतना ना हाथ हो गई बा, इतना उसे तबाहियत नहीं बना, बहुत दिक्कत हुआ गली के प्रॉब्लम में बहुत।
0: आपके गांव से जो गली गुजर रही है या आगे 3-4 गांव में जाती है?
1: आगे गांव नहीं है, पीछे जो गांव है वो इसी पड़े उसका रास्ता है।
0: कहां जाते हैं लोग?
1: नहर पर जाते हैं
0: खेती करने के लिए।
1: खेती करने के लिए, हर चीज करने के लिए, हर चीज की व्यवस्था
0: उसमें ठीक है
1: जी।
0: नाली बनाई गई है आपके गांव में?
1: नाला बना है, पूरा फूल नहीं बना है,
0: कुछ बाकी भी है?
1: बहुत बाकी है, आधा बना है आधा बाकी है।
0: जिन जिन गलियों में नाली बन चुकी है उन गलियों के लोगों के घर का पानी बनी हुई नाली से निकल जाता है?
1: हाँ, निकल जाता है।
0: या नाली बनने के बाद भी गली में जमा रहता है?
1: ना, निकल जाता है,
0: वो निकल जाता है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं
1: ना, उसमें प्रॉब्लम नहीं है।
0: जिन जिन गलियों में नाली नहीं बनाई गई है उन गलियों के लोग अपना पानी कैसे निकालते हैं?
1: रोड पर बहाते हैं।
0: रोड पर ही बहता है?
1: बस टोटल पानी रोड पर आ जाता है और पानी के चलते बहुत 3-4 गाँव परेशान है।
0: तब तो आने जाने परेशानी होती होगी?
1: परेशानी है, अभी भी देखिए पानी बहता है।
0: बिजली रहती है कि नहीं?
1: रहती है,
0: बिजली रहती है
1: जी।
0: बिजली का वोल्टेज कैसा रहता है?
1: ठीक है, करीब करीब रहता है।
0: ठीक रहता है,
1: ठीक रहता है।
0: मोटर वगैरह चल जाती है?
1: जी चल जाती है।
0: 125 यूनिट जो फ्री कर दी गई है, इसका लाभ आप लोगों को मिल रहा है?
1: हाँ, मिल रहा है,
0: सभी को मिल रहा है,
1: सबको मिल रहा है।
0: बिजली के तार के बारे में बताइए, तार ठीक है या जर्जर हो चुका है?
1: तार अभी तक जो नया टंगा है वो ठीक है।
0: वो ठीक है?
1: हाँ, वो ठीक है। पुराना जो तार है वो कुछ गड़बड़ी है,
0: उसको भी बदलना चाहिए।
1: हाँ, उसको बदलना चाहिए।
0: नल जल योजना के अंतर्गत नल का पानी पीने के लिए आप लोगों को मिल रहा है?
1: पानी पीने के मिल रहा है, क्योंकि कुछ ऐसा घर है ऊंचा है उसमें नहीं चढ़
0: वहाँ पानी नहीं पहुँच रहा
1: है। ना, नहीं पहुँच रहा है, कुछ दिक्कत है, प्रॉब्लम है उसमें।
0: कितनी बार पानी सप्लाई होता है?
1: दोनों टाइम।
0: दो टाइम आता?
1: हाँ, दो टाइम।
0: पानी की क्वालिटी पीने के काम में लेते हैं आप लोग?
1: हाँ हाँ, पीते हैं, हर काम वही से होता है।
0: जरूरत के हिसाब से पानी मिल जाता है
1: जी।
0: आपके गांव में कितना वार्ड है पंचायत का?
1: एक वार्ड।
0: एक ही वार्ड है
1: जी?
0: पूरे गांव में पानी की सप्लाई हो रही है?
1: हाँ हाँ,
0: कोई दिक्कत नहीं है।
1: नल जल दो है।
0: अच्छा, नल जल दो?
1: हाँ,
0: दोनों।
1: हाँ, दोनों सब ठीक।
0: दोनों से पानी सप्लाई होता?
1: हाँ, हाँ जी।
0: आपके यहाँ कोई सरकारी विद्यालय है कि नहीं?
1: नहीं है।
0: नहीं है, तो आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं?
1: मुरही।
0: मुरही जाते हैं?

0: सिंचाई कैसे करते?
1: सिंचाई धान को खेती को पानी जब नहर में आता है ना उसी से होता है, और बाकी जो सिंचाई है ओपिन से होता है, सब लगला अपना अपना ओपिन कराया है, बाकी सिंचाई उसी से होता है। धान को जो है फसल तो नहर में पानी आता है तो उसी से।
0: नहर का पानी आपके यहाँ के लगभग सभी खेतों में चला जाता है?
1: सब खेत में तो नहीं जाता है,
0: सब में नहीं जाता
1: ना, मोटर लगाना पड़ता है, नहर में मोटर लगाना पड़ता है, ऊंचा ऊंचा खेत उसमें प्रॉब्लम है, बाकी फिर भी काम अपना चला लेते हैं।
0: जब आप खेती करते हैं तो आपको बीज की जरूरत पड़ती है, खाद की जरूरत पड़ती है, दवा की जरूरत पड़ती है, ये सब आसानी से मिल जाती है?
1: आसानी से तो नहीं मिलती है, बाकी भी मिल जाता है।
0: हाँ। कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती?
1: खाद को भी दिक्कत है,
0: खाद के लिए दिक्कत होती है। दोस्तों अभी आप सुन रहे थे

0: दोस्तों, अभी आप मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी फिल्म का गीत सुन रहे थे। आवाज़ें थी कुमार सानू और अलका याग्निक की। अब आइए सुनते हैं सासाराम प्रखंड के तेंदुआ गांव के कुछ और लोगों से की गई बातचीत। तेंदुआ गांव के लोगों से हम बात कर रहे हैं, कई लोग हमारे बीच खड़े हुए हैं, एक और व्यक्ति से जानने की कोशिश कर रहे हैं। अपना परिचय दे दीजिए।
1: मेरा नाम कमता प्रसाद सिंह।
0: गाँव का नाम?
1: तेंदुआ।
0: पंचायत?
1: दरगांव।
0: प्रखंड?
1: सासाराम।
0: सासाराम प्रखंड में पड़ता है तेंदुआ गांव। आप अपने गांव की गली के बारे में बताइए। सभी गली बन चुकी है या कुछ बनानी भी है?
1: गली बनी है, लेकिन पानी बहुत काफी मात्रा में गली पर बहता है।
0: गली में पानी रहता है?
1: नाली के अभाव में।
0: जो गली बन चुकी है आपके यहाँ, उसमें आने जाने में परेशानी होती है कि नहीं?
1: कहे जहाँ पानी है वहाँ तो परेशानी होना ही,
0: वहाँ परेशानी है। नाली बनाई गई है आपके यहाँ की गलियों में?
1: नाली हर जगह नहीं बनी है, कुछ बनी है लेकिन नाली अवरुद्ध हो गई, बीच ही में रह गई है। बीच में बन करके इधर जहाँ निकासी है वहाँ तक नहीं बनी है।
0: बीच में ही पानी रुक जा रहा है, गली में पानी बहता रहता है?
1: हाँ बिल्कुल, रोड पर।
0: गांव की जो गली है, जो पतली गली है, उसमें नाली बनाई गई है कि नहीं?
1: उसमें करीब करीब मैंने, वो तो ठीक है, निकल ही जाता है करीब करीब,
0: बनी
1: साइड साइड से मैंने छोड़ा गया है, थोड़ा इसे दोनों साइड से ऊंचा करके बीच में दोनों साइड से निकल जाता है।
0: उससे कोई दिक्कत नहीं है?
1: ना, उससे कोई खास दिक्कत नहीं है, साफ ऑफ करना पड़ता है।
0: मेन जो रोड है उसमें दिक्कत है?
1: हाँ, मेन रोड में दिक्कत है,
0: पानी जमा रहता है।
1: हाँ, बहुत काफ़ी जमा रहता है, कीचड़ भी हो जाता है।
0: बिजली रहती है कि नहीं आपके यहाँ?
1: बिजली तो मैंने करीब करीब रहती ही है, ऐसे कभी तो मैंने मान लीजिए कभी कभी भाई कहीं बिगड़ा तो कटना ही जरूरी है, लेकिन बिजली रहती है करीब करीब।
0: बिजली का वोल्टेज?
1: वोल्टेज भी ठीक ही रहता है,
0: कोई दिक्कत नहीं?
1: नहीं कोई दिक्कत।
0: नल जल योजना के अंतर्गत नल का पानी पीने के लिए आप लोगों को मिल रहा है?
1: मिल रहा है, लेकिन बहुत सा ऐसा नल है कि मैंने कामयाबी नहीं है, बीच में पाइप टूट चुका है, हर जगह सप्लाई नहीं हो पाता है।
0: अच्छा, हर जगह नहीं हो पा
1: रहा, हर घर में नहीं सप्लाई हो पाता है।
0: पानी की क्वालिटी कैसी है?
1: पानी की क्वालिटी तो मैंने करीब करीब ठीक है।
0: पीने के काम में लोग लेते हैं?
1: हाँ हाँ, का है, पीने के काम में लिया जाता है।
0: कितनी बार पानी सप्लाई किया जाता है?
1: दो टाइम।
0: दो टाइम आता है। आपके यहाँ सरकारी विद्यालय है कोई?
1: अभी सरकारी विद्यालय नहीं है।
0: आंगनबाड़ी केंद्र?
1: आंगनबाड़ी केंद्र एक है।
0: आंगनबाड़ी केंद्र वो खुलता है?
1: हाँ वो खुलती है।
0: बच्चे जाते हैं पढ़ने?
1: हाँ बच्चे जाते हैं।
0: सरकारी विद्यालय नहीं है तो आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए आपके बच्चे कहाँ जाते हैं?
1: आगे की पढ़ाई के लिए वहाँ मुरही में शिफ्ट मैंने यहाँ से हुआ है, मुरही प्राथमिक विद्यालय में।
0: मुरही जाते हैं बच्चे?
1: मुरही बच्चे जाते हैं। इसे जमीन यहाँ आवंटित हो चुका है
0: स्कूल के लिए?
1: स्कूल के लिए जमीन एक आदमी दिए हैं, तो उसमें भी तो भवन नहीं बना है।
0: आपके यहाँ स्कूल थी पहले?
1: हाँ, स्कूल यहाँ वही लोहिया भवन बना था, एक सामुदायिक भवन, तो उसी में पढ़ाई कुछ दिन तक चला, इसके बाद जो है वहाँ मुरही में सब उसी में वहीं जाकर।
0: तो आपके गांव के भी वहीं स्कूल चलती
1: जी
0: है?
1: जी।
0: तो यहाँ से बच्चों को जाने में परेशानी होती होगी?
1: हाँ काहे परेशानी तो होती नहीं है, मगर गर्मी का टाइम है, बच्चा जो है छोटा छोटा बच्चा जाने में तो दिक्कत, बहुत काफ़ी दिक्कत है।
0: वहाँ 1 से 5 तक पढ़ाई होती है?
1: हाँ।
0: उसके बाद बच्चे कहाँ जाते हैं?
1: अब बच्चे दरगाँव जाएंगे, करसरुआ जाएंगे,
0: वहाँ जाना पड़ता है। खेती करते हैं आप?
1: जी जी, खेती तो हम लोग करते हैं।
0: कौन कौन सी फसल लगाते हैं?
1: अरे फसल में ही धाने गेहूँ मेन हम लोगों का खेती है, इसके बाद अपवाद में मूंग उंग लगा देते हैं तो दलहन के लिए कुछ हो जाता है।
0: पटवन का मुख्य साधन क्या है?
1: पटवन का मुख्य साधन हमारे यहाँ बोरिंग है।
0: नहर तो बगल से गुजर रही है?
1: नहर बहुत ऊंचा पर जा रही है,
0: कटिंग नहर गढ़े में है?
1: नहर गढ़े में है।
0: खेत ऊंचे पर है?
1: खेत हम लोगों का ऊंचे पर है।
0: पानी आने में प्रॉब्लम होता है?
1: पर प्रॉब्लम आता ही नहीं है, मोटर वोटर लगा करके हम लोग कभी कभी पटा लेते हैं, लेकिन ऐसे कोई
0: डायरेक्ट नहीं आ पाता है पानी?
1: डायरेक्ट नहीं आ।
0: तो नहर का पानी जाता कहाँ है?
1: नहर का पानी वहाँ से खुलता है तो मतलब अपना जाता है वहाँ,
0: तो आगे चला जाता
1: है, तक चला जाता है, लेकिन जहाँ जहाँ बहुत सा ऐसा गाँव है कि जहाँ एकदम बिल्कुल वंचिते है,
0: बहुत गढ़े में नहर है।
1: हाँ,
0: बारिश के पानी पर भी डिपेंड है आप लोग?
1: हाँ, बारिश के पानी पर।
0: आपके बगल में पहाड़ है, पहाड़ के बगल में आपका गाँव है।

0: तो पहाड़ का पानी भी आता होगा।
1: पहाड़ का पानी वही नदी से आता है तो नदी भी चारों तरफ नहीं लगता है ना, खाला देख करके निकल जाता है नदी में जो है। अब इसे बाढ़ आ जाएगा तो ये आपको सब बुड़ जाएगा, लेकिन एक घंटा के बाद काम खत्म, पानी खत्म।
0: पहाड़ के बगल में आप लोग बसे हुए हैं
1: जी, जी।
0: तो आप क्या महसूस करते हैं, पहाड़ से लाभ मिल रहा है, आप लोगों को फायदा है या घाटा है?
1: हम लोगों को इसे तो कोई लाभ नहीं है मैंने हम लोग लकड़ी पकड़ी तो कोई करता ही नहीं इधर हमारे गांव के, तो लाभ हमारा कोई उसे विशेष नहीं है। लेकिन तब है कि भाई पहाड़ है तो उसे हम लोगों को मैंने कम से कम जड़ी बूटी का हवा तो मिलता है, स्वच्छ हवा सुबह शाम में,
0: वातावरण शुद्ध रहता है।
1: हाँ, वातावरण।
0: और कुछ कहना चाहेंगे?
1: ना, हमारे यहाँ सिंचाई का बहुत दिक्कत है, समझ रहे सर? मैंने सिंचाई के लिए हम लोगों का मैंने कहीं व्यवस्था होता है, ड्रिल मशीन का हो जाता है, मैंने नहरे से ये पंपिंग सेट डलवा करके सरकार की तरफ से, तो
0: बहुत अच्छा रहा,
1: बहुत अच्छा हो जाता है। विद्यालय मुरही में चलता है, दो शिफ्ट में वहाँ पढ़ाई होती है, यहाँ विद्यालय का भवन बन जाता तो हमारे यहाँ के बच्चों को बहुत सुविधा हो जाती।
0: तेंदुआ गांव के लोगों से हम बात कर रहे हैं, तेंदुआ गांव के एक और व्यक्ति हैं, ये भी बताना चाह रहे हैं। नाम अपना बता दीजिए।
2: महेश परसवान।
0: गांव का नाम?
2: तेंदुआ।
0: पंचायत?
2: दरियाव।
0: दरिगांव। आप अपने गांव के गली के बारे में बताइए, सभी गली बन चुकी है या कुछ बाकी भी है?
2: कुछ बाकी भी है।
0: कुछ बनी है? जो जो गली बनी है उसमें परेशानी होती है कि नहीं आने जाने में?
2: परेशानी है।
0: बनी हुई है उसके बाद भी परेशानी है? कैसे?
2: पानी गली रोड पर के बहती है,
0: रोड पर पानी जमा है। जो गली नहीं बनेगी है उसके बारे में बताइए, क्या कहना चाहेंगे?
2: बन जाता है तो अच्छा होता है। ये
0: नाली बनेगी है आपके यहां की गलियों में?
2: नाली कुछ बनी है, कुछ बाकी रहे है।
0: जिन जिन गलियों में नाली बन चुकी है उन गलियों के लोगों के घर का पानी बनी हुई नाली से निकल जाता है या नाली बनने के बाद भी गली में जमा रहता है?
2: नहीं, निकल जाता है।
0: निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है?
2: नहीं।
0: जिन गलियों में नाली नहीं बनाई गई है उन गलियों के लोग अपना पानी कैसे निकालते हैं?
2: रोडे से निकल जाते ही है।
0: रोड पर ही निकलता है?
2: चारों से पानी रोड पर आते है।
0: रोडी पर निकलता है। बिजली रहती है आपके यहाँ?
2: जी जी, बिजली रहती है।
0: बिजली में कोई दिक्कत नहीं?
2: जी नहीं।
0: बिजली की बिल कैसी आती है, कम आती है, ज्यादा आती है या ठीक आती है?
2: नहीं, बिजली की बिल ठीक आती है।
0: ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है?
2: जी नहीं।
0: नल जल योजना के अंतर्गत नल का पानी पीने के लिए आप लोगों को मिल रहा है?
2: जी जी, पानी मिल रहा है।
0: मिल रहा है, कितनी बार आता है पानी?
2: तीन बार चार बार पानी
0: मिल जाता है। पीने के काम में लेते हैं आप लोग?
2: जी, पानी मिल के
0: पीते हैं। अच्छा, ठीक पानी रहता है?
2: हाँ, पानी ठीक है।
0: आपके यहाँ स्कूल है?
2: स्कूल तो सर नहीं है।
0: आप लोग अपने बच्चे को कहाँ भेजते हैं पढ़ने के लिए?
2: मुरही जाते हैं, भेजते हैं, दरियाँ भेजते हैं, कसरुआ भेजते हैं।
0: मुरहिया या दरियाँ जाना पड़ता है,
2: बच्चन के बहुत परेशानी है हम लोग।
0: आंगनबाड़ी केंद्र है?
2: आंगनबाड़ी है सर,
0: उसमें बच्चे पढ़ने जाते हैं?
2: जी, वो हम पढ़ने जाते हैं।
0: कॉलोनी का लाभ आप लोगों को मिला है?
2: जी नहीं, हम कॉलोनी के लाभ हमने के लोग नहीं मिला।
0: गाँव के और लोगों को?
2: और कोई को मिलता है और कोई के नहीं।
0: कुछ को मिला है, कुछ को नहीं मिला
2: है,
0: यही ना बात है?
2: जी जी।
0: खेती आप भी करते हैं?
2: जी, धान गेहूँ।
0: धान गेहूँ खेती करते हैं?
2: सब्जी सब्जी करते हैं।
0: पटाते कैसे हैं?
2: वो मटरे मशीन से पटाते हैं।
0: नहर तो बगल से गुजर रही है?
2: जी, नहर है तो नहर नहीं लगते है,
0: उसका पानी नहीं आता है।
2: मटर मशीन से
0: नहर बनने से कोई फायदा नहीं?
2: जी नहीं।
0: क्यों नहीं फायदा, खेत ऊंचा पर है?
2: खेत हमने की जमीन जो ऊंचे पर है, नहर भी खाल में है,
0: इसलिए पानी नहीं आ पाता।
2: मटर मशीन से अपन लोग डीजल उजल से अपन लोग पटा रहे हैं,
0: डायरेक्ट पानी नहीं आता।
2: जी नहीं।
0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे रोहतास जिला के सासाराम प्रखंड के दरिगांव पंचायत के तेंदुआ गांव के लोगों से की गई बातचीत। दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। सरकार की किसी भी योजना को सफल बनाने के लिए सरकारी मशीनरी के साथ साथ जनता की भागीदारी भी बहुत ज़रूरी होती है। आशा है सरकार की किसी भी योजना को सफल बनाने के लिए प्रशासनिक मदद के साथ साथ जनता का सहयोग भी मिलता रहेगा। दोस्तों, अब घड़ी इशारा कर रही है हमारे इस कार्यक्रम को समाप्त करने के लिए। तो साप्ताहिक कार्यक्रम आवाज का ये अंक कैसा लगा, आप पत्र द्वारा हमें सूचित कर सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम आपने लिखा द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी सासाराम, पिन कोड 821115। आप ईमेल पर भी अपनी राय भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है akashwanisasaram@gmail.com। akashvanisasaram@gmail.com। इसी के साथ आप अपने रेडियो दोस्त मुमताज को दीजिए इजाज़त। अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी कुछ नई

जानकारियों के साथ स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। नमस्कार। स्वर एवं संकलन मुमताज अहमद और प्रस्तुतकर्ता संतोष कुमार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आवाज को। यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारा अगला कार्यक्रम एक छोटे से अंतराल के बाद।

ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है FM 103.4 MHz पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है लोक माधुरी कार्यक्रम। भोजपुरी एल्बम लोकगीत पर आधारित ये कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत, बालम गईले झरिया। एल्बम से स्वर मदन राय के है और धुन भरत शर्मा व्यास के।

अभी आप सुन रहे थे मदन राय के स्वर में निर्गुण गीत, एल्बम से ये लोकगीत। शब्द संत कबीर के और धुन भरत शर्मा व्यास के, और इसी के साथ भोजपुरी एल्बम लोकगीत पर आधारित कार्यक्रम लोक माधुरी यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM 103.4 MHz पर। कार्यक्रम में आप यूं ही बने रहे, लौटते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के सासाराम केंद्र को। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:45 हुए हैं। प्रस्तुत है भोजपुरी एल्बम सॉन्ग पर आधारित कार्यक्रम रसधार। रसधार कार्यक्रम में आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत मोहब्बत पुकारे एल्बम से। इस गीत को शब्द दिया है अशोक शिवपुरी ने और धुन भी अशोक शिवपुरी के हैं। गायक कलाकार है बद्री बहार।

अभी आप सुन रहे थे प्रेम की बीमारी एल्बम से ये गीत सुनील मौर्य के स्वर में, शब्द शिव आधार जोगरी के और संगीत राजेश रजनीश के। रसधार कार्यक्रम में आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत अब की घोड़ी चढ़ जाइब एल्बम से।

0: टेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। खांग पंचायत से कौशल्या देवी बनी है यशस्वी मुखिया।
1: घर सामानी कौशल्या देवी खांग पंचायत। गांव के तो बढ़ा रहे हैं कि गली नली बना रहा है, हमको गांव ने अथी पंचायत भवन नहीं बन रहा है, बनने की कोशिश कर रहे हैं मगर नहीं हो रहा है, आगे बढ़ाने चाह रहा है। ये सामान पा के बढ़िया लगा। गांव का फायदा तो है कि हमको गांव ने पानी गिरे के साधन नहीं था, वो सब के बना रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोगकर्ता हिंदुस्तान।
2: लोक माधुरी कार्यक्रम में आइए सुनते हैं चैता चैती एल्बम से ये गीत, मुन्ना सिंह के स्वर में। गणेश दत्त किरण ने इस गीत को शब्द दिया है और यूसुफ काके की संगीत है।

0: इसी गीत के साथ रसधार कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम लोक माधुरी। कार्यक्रम के पहले आइए सुनते हैं महत्वपूर्ण संदेश।
1: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्रा

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल, अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। अमथुआ पंचायत से मिराज अहमद हैं यशस्वी मुखिया।
1: मैं मिराज अहमद, ग्राम पंचायत अमथुआ, प्रखंड काको, जिला जहानाबाद। बेहतरीन छठ घाट बनाना है तालाब किनारे जो है, और उसके बाद वहाँ पर पूरा चबूतरा बनाया बैठने के लिए जो है, वहाँ पार्क बनवाया जाए, और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर जो है बर्थिन लोग को बहुत दिक्कत होती थी कपड़ा चेंजिंग करने के लिए, वहाँ पर चेंजिंग रूम हमने बनवाया है कि जो ऐसा प्रोग्राम जिन्होंने कराया है ये काबिले तारीफ है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब, सलाम।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोग करता हिंदुस्तान।
2: मंगल भवन मंगल
3: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल, अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। राज भदगाई पंचायत से ओम प्रकाश कुमार बने हैं यशस्वी मुखिया।
4: मैं ओम प्रकाश कुमार, ग्राम पंचायत राज भटगाई, और अपने पंचायत के हर दुख सुख में रहे। हमारे पंचायत बहुत पिछड़ा हुआ पंचायत है, दलित बस्ती बहुत सारे हैं, जहां सड़क नहीं था वहां सड़क बनवाएं, स्कूल में 4 दीवारी करवाएं। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा, धन्यवाद।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोग करता हिंदुस्तान।
5: और अब आइए लोक माधुरी कार्यक्रम में सुनते हैं कार्यक्रम का अगला।

और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत आधी आधी रतिया के एल्बम से। भरत शर्मा व्यास ने इस गीत को स्वर दिया है, शब्द चंद्रभूषण तिवारी के।

इसी गीत के साथ लोक माधुरी कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है FM 103.4 MHz पर। हमारा अगला कार्यक्रम विविध भारती से, करी कुछ पल का इंतज़ार।

ये थी राजेंद्र मेहता की आवाज गुलजार का कलाम, और अब सुनते हैं मिताली सिंह और भूपिंदर सिंह की आवाज में इब्राहिम अश्क का कलाम।

राजेंद्र कृष्ण का लिखा गीत, कल्याण जी आनंद जी का संगीत, प्रोफेसर प्यारे लाल फिल्म का ये गाना आपने सुना आशा भोसले की आवाज में। और अब आपको सुनवा रहे हैं इंदिवर के बोल, कल्याण जी आनंद जी की धुन, मुकेश और कंचन की आवाजें। फिल्म का नाम है पाप और पुण्य।

नमस्कार, शुभ दोपहर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम सुरीला सफर में। आप सभी को राजुल का प्यार भरा नमस्कार। आज की इबारत पढ़कर बहुत सारे संदेश आए हैं। अगर आपने अभी ये इबारत नहीं पढ़ी है तो फेसबुक पेज पर हमने जो इबारत पोस्ट की है वो आपके लिए एक बार पढ़ देते हैं। रिमझिम में भीगी समंदर की लहरें, उठे झूमके और घड़ी भर को ठहरे। बड़ी दूर से देख आवाज देती, कभी पाँव में डोर बनकर लिपटती। किनारे पे आए, मिले, लौट जाए, कभी रेत पर लिखे नामों को छूकर। उधर जा निकलती जहां पत्थरों पर धड़कते हैं दो तिल एक ही ताल पर। गले उनसे मिलकर, उन्हें प्यार देकर, कोई गीत गाती और फिर लौट जाती। तो आपको बताना है कि कौन से शब्द हैं आज के और उन शब्दों पर कौन से गाने सुनवाए जाएंगे। बहुत सारे संदेशों में इन शब्दों का भी जिक्र है और गीतों की भी बात हुई है। तो देखते हैं कि आज कौन कौन से गाने लिस्ट से मैच हो रहे हैं आपकी लिस्ट से। इस मैचिंग के लिए बहुत सारे संदेशों का से गुजरना होगा। और एक संदेश है, कहीं समंदर की लहरों की बातें हैं, कहीं समंदर के कुछ जो एक व्यंजनात्मक रूप से लिखी गई समंदर के बारे में कुछ पंक्तियां हैं। समंदर को जीवन से भी जोड़कर देखा गया है और समंदर के किनारे टहलने की भी कई अनुभव साझा किए गए हैं। बहरहाल ये जो संदेश है इसमें

लहरों को सुरीला सफर से सजाया गया है, काव्यात्मक रूप से इस बारे में बात की गई है। समंदर की लहरें केवल पानी का उठना और गिरना नहीं बल्कि प्रकृति की सबसे उत्कृष्ट लय और ऊर्जा का नृत्य हैं। लहरों की अनवरत ध्वनि और निरंतरता किसी ध्यान जैसी अनुभूति देती है। लहरों में एक अद्भुत विरोधाभास होता है, ये जितनी प्रचंड और शक्तिशाली हो सकती हैं उतनी ही कोमल और शांत भी। जीवन में ठहराव नहीं निरंतरता का प्रतीक है ये लहरें, समुद्र का ये अनुशासन ही उसकी असली सुंदरता है। वह क्या बात है। और एक और संदेश में कहा गया है कि शाद और अवसाद में अवसर दर्शाती और साजे साजे दिलों की हसरतों तरंगों भरी दास्ता बयान करती इश्किया इबारत निसंदेह प्रेमी युगल के प्रेम विवाह के लिए संजीवनी स्वरूप है। लहरों के राजहंस रूपी प्रेमी किनारे रेत पर इंतजार करती प्रेयसी को लुभाने में कामयाब होगी। इश्किया लबोलुआब से सराबोर संगीत में सुरीला सफर का इंतजार रहेगा। तो भाई इंतजार खत्म हो गया है और हमें उम्मीद है कि आप अपने रेडियो के करीब ही हैं, चाहे मोबाइल पर सुन रहे हों। एक और संदेश में कहा है कि समंदर की लहरों के माध्यम से प्रेमियों के दिलों के धड़कने और उनके आपसी जुड़ाव को दर्शाया गया है। समुंदर की लहरों को इस तरह पेश किया गया है जैसे वे इंसानों की तरह आवाज देती हैं, प्यार करती हैं और गीत गाती हैं। यादों की अमिटता, रेत पर लिखे नामों को लहरों का छूना उस प्रेम और यादों की पवित्रता को दर्शाता है जिन्हें समंदर रूपी प्रकृति सहेज कर रखती है। लहरों का किनारे पर आना, मिलना और फिर लौट जाना जीवन और प्रेम में आने वाले मिलन और वियोग के प्राकृतिक चक्र है, चक्र का प्रतीक है। वह क्या बात है। और एक और संदेश में शब्दों के का जिक्र किया गया है, उन शब्दों का। माई प्ले लिस्ट इज लॉन्गर टूडे होपिंग टू हैव मोर चांसेस। छूकर मेरे मन को रुक जा रात ठहर जा रहे चंदा, इस तरह के कुछ गीत इन्होंने साझा किए हैं। एक और हमारे श्रोता हैं जिन्होंने कहीं से ये गज़ल हमें भेजी है, रेत पर लिख के मेरा नाम मिटाया ना करो। और बहुत खूबसूरत गज़ल है, हमें अच्छा लगेगा अगर आप अपनी बात लिखकर भेजें तो बहुत अच्छा लगता है। एक और श्रोता कह रहे हैं कि आज आप अपने साथ लहरें लाई हैं या फिर लहरों के संग आने वाली हैं और हम सब लहरों के साथ कहीं बहुत दूर, हम सबको लहरों के साथ कहीं बहुत दूर ले जाने वाली हैं, जहां हो सुकून के कुछ पल और हम जी सकें अपने मन के हिसाब से, जहां कोई रोकने टोकने वाला भी ना हो, जो ना करना चाहे वो काम भी ना हो, बस साथ हो सिर्फ लहरें, फिर तो उनके साथ गुनगुनाना अपने आप ही हो जाएगा, नहीं भी आता होगा तो भी। क्या बात है भाई, ये बात तो है ही कि गीत संगीत और जब मनचाह साथ हो या अपने मन की बात हो तो फिर कितना खूबसूरत वक्त गुजरता है, ये तो हम सभी जानते हैं। तो चलिए हम गीतों की शुरुआत करते हैं। रिमझिम शब्द को लेकर बहुत सारे गीतों के कयास आए हैं, तो चलिए एक झलक उन सभी की सुन लेते हैं।

तो भाई ये कुछ गीत हैं जो हमने आपकी पसंद से चुने और उनके थोड़े थोड़े अंश आपको सुनवा दिए। हमने ये गीत चुना है और इसे भी बहुत सारे श्रोताओं ने पसंद किया है। लेकिन पहले सवाल पूछ लेते हैं। एक तो आपको बताना है कि ये गीत किस फिल्म का है और किन कलाकारों पर फिल्माया गया है। और जो सबसे पहला रिमझिम का गीत था, उसे एक फीमेल वॉइस में भी आपने सुना होगा, तो बताइए कि वो किसकी आवाज़ में आपने सुना है। गायिका का नाम आपको बताना है जो सबसे पहला गीत आपने रिमझिम

बड़ा खूबसूरत तराना छेड़ देता है ये गीत। शैलेंद्र का लिखा, सचिन देव बर्मन का संगीतबद्ध किया हुआ, बिल्कुल सही नाम हमारे श्रोताओं का आया। बहुत बहुत शुक्रिया काला बाजार, देवानंद, वहीदा रहमान और रिमझिम गिरे सावन बरसात का जो गाना हमने आपको सुनाया था, सबसे पहला गाना मंजिल फिल्म का लता मंगेशकर की आवाज में। वाह क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह से प्रॉम्प्ट जो जवाब आते हैं ना, उनमें बहुत कार्यक्रम की को एक गति मिल जाती है और इस गति के साथ जो संदेश आते हैं वो तो बिल्कुल सोने में सुहागा हो जाते हैं। जैसे हमारे एक श्रोता कह रहे हैं कि आज की भारत में एक अजीब सी तड़प भी है और अपनापन भी, लहरों के माध्यम से प्रेम मिलन विरह और प्रकृति के अद्भुत तालमेल को बयां किया गया है। शब्दों का चयन इतना कोमल और संगीतमय है कि पढ़ते ही मन शांत और रूहानी एहसास से भर जाता है। आंखों के सामने बारिश की बूंदों के बीच नाचती झूमती लहरों का दृश्य सजीव हो उठता है। लहरों का उठना ठहरना और फिर लौट जाना प्रकृति के शाश्वत नियम को दिखाता है। और एक और संदेश में कहा गया है कि कुछ लहरें समंदर से नहीं, यादों से उठती हैं। वे जब भी दिल के किनारे आती हैं, अपने दूर गए साथी से मिला जाती हैं, उनकी कई यादें याद दिलाकर। एक और संदेश में तो रिमझिम के तराने से लेकर बहुत सारे गीतों का जिक्र हो गया है। पिछली रात से रिमझिम के तराने लेकर आई बरसात के आगमन से हमारे दिल के समंदर में भीगी भीगी ठंडी ठंडी लहर सी दौड़ रही है। घड़ी घड़ी मोरा दिल धड़के, हाय धड़के क्यों धड़के, आज सुरीले सफर के मिलन की बेला में। जैसे दो दिल धड़क रहे हैं और आवाज एक है सांसों के तार पर, देश की सुरीली धड़कन के ताल पर। जब गीत गाया समंदर की लहरों ने, तब लहरों की तरह यादें टकराती हैं, तूफान उठाती हैं। रेत पर लिखे नाम भले ही मिट जाएं, दिल पर एक अमिट छाप छोड़ जाते हैं, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। और एक और संदेश में कहा गया है कि विविध भारती के सुरीले सफर में आज समंदर की लहरों के साथ खेलते हैं, ऐसे गीतों का लुत्फ उठाते हैं जिसमें नायक नायिकाएं बेखौफ समंदर किनारे बेतहाशा दौड़ते लहरों के साथ मस्ती करते हैं। कभी रेत पर ताजमहल बनाते हैं तो कभी उसे मिटाकर फिर समंदर के उथले पानी में एक दूसरे को भिगोते लोटपोट हो जा रहे हैं।

चलिए इसी से सवाल निकल आया, हमें बताइए कि क्या आपने कभी समंदर की सैर की है, किसी समंदर के किनारे घूमे हैं या वहाँ से सीपियाँ इकट्ठी की हैं? अगर ऐसा किया हो तो हमें ज़रूर बताएं, और कहाँ गए हैं? अलग अलग तटों पर हमारे देश के अलग अलग समुद्री तट हैं, जहाँ का पानी और जहाँ के समुद्री किनारे अलग अलग होते हैं, तो हमें ज़रूर बताएं कि आपका वो अनुभव कैसा रहा और कहाँ गए थे आप। और अब ये जो गाना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, बताइए पर्दे पर कौन गा रहा है और संगीत किनका है?

कन्याकुमारी की बात की है जो कि तीन तरफ से समुद्र से घिरा है, बहुत रोमांच होता है, ऐसी अनोखी दुनिया होती है, यह हमारे एक श्रोता ने बताया है उस सवाल के जवाब में जो हमने पूछा था कि समुद्र के किनारे आप कहाँ गए हैं। और हमारी एक और श्रोता ने लिखा है कि मुंबई गए हैं। बाकी जवाबों का भी इंतजार हो रहा है, ज़रूर आप लोग कहीं घूमने गए हैं और जल्दी से बताइए। एक श्रोता कह रहे हैं कि आपने जैसे ही रिमझिम के तराने छेड़े वैसे ही हमारे यहाँ भी रिमझिम फुहारें पड़ने लगी हैं, मौसम बहुत ही सुहाना हो गया है। वाह क्या बात है। एक और श्रोता कह रहे हैं हम तो दीघा पश्चिम बंगाल गए थे। अब दूसरे सवाल की बारी, वैजयंती माला फिल्म मधुमती, घड़ी घड़ी मोरा दिल धड़के, ये जो गाना भी आपने सुना, सलील चौधरी का संगीत निर्देशन था, ये जवाब भी आ गया है। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथियों ने बताया है कि ना बाबा मुझे तो पानी से बहुत डर लगता है, तो मैं जयपुर से ना अजमेर नाव में बैठी ना जल महल और पानी से दूर ही रहती हूँ। ओहो अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि पानी का डर जो है वो बहुत सी चीज़ों से दूर रहना के लिए मजबूर कर देता है। आप ये बताइए कि

समुद्र के किनारे बहने वाली हवाओं का भी एक बड़ा खास अहम भूमिका होती है, तो क्या कभी उन हवाओं के साथ आपकी कुछ मुलाकात हुई है जो तेज तेज हवाएं बहती हैं बारिश के समय में? अगर याद हो तो वो ज़रूर बताएं। और हाँ, अभी जिन श्रोताओं ने नहीं बताया है कि वो किस समुद्र के किनारे टहले हैं या क्या बनाया है उन्होंने, जो घरौंदे बनते हैं उन घरौंदों को कई बार बच्चे भी बनाते हैं और आजकल तो बहुत सुंदर सा सेट भी मिलता है बच्चों के उन घरौंदों को बनाने वाला, वो अगर सेट किसी बच्चे को गिफ्ट किया हो तो ये भी बताएं। अब अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं। इस गीत को सुनने के लिए आपको बताना होगा कि ये गाना किस फिल्म का है। संदेशों की बात करें तो हमारे एक श्रोता ने बताया कि एक और रिमझिम का गाना याद दिला दिया, नैना बरसे रिमझिम रिमझिम, लता मंगेशकर की आवाज़। वैसे तो रिमझिम शब्द वाला पहला सुना गीत मराठी है। रिमझिम पाउस पड़े सारखा, यमुनेला हुपूर चढ़े, पाणी चपाणी चहुड़ के चहुकड़े। वाह क्या बात है। और ये एक और श्रोता ने कहा है कि रिमझिम के तराने की गीत मालाएं बुन रहे हैं और सभी मुखड़े उम्मीद के अनुसार मंजिल ढूंढता गाना शुरू हुआ और काला बाजार पर रुक गया। क्या बात है। एक और श्रोता कह रहे हैं कि सागर की अपनी शांत गुफाएं हैं, गहरी शांत और एकांत, यद्यपि लहरों में उग्रता हो लेकिन उसके नीचे कोई शांति नहीं है। शायद कोई टाइपो एरर हुई है, अशांति लिखते हुए इन्होंने अशांति लिखना चाहा होगा। एक और श्रोता ने कहा है कि वैसे हम अपनी कुछ दिन पहले की एक बात बताते हैं आपके साथ साथ सभी हंसेंगे सुनकर, तो हुआ यूं कि हमारी बेटी ने कुछ पंक्ति लिखकर अपनी एक पोस्ट डाली स्टेटस पर समुद्र के किनारे की पिक के साथ, तो हमने उसे लाइक किया और लिखा कि हम लिखते तो कुछ ऐसा लिखते, तो जवाब में उसने लिखा आप दिल से सोचती हैं और हम दिमाग से, फिर हमने लिखा अरे नहीं हम विविध भारती सुनते हैं ना, तो उसका रिप्लाई सारा क्रेडिट मम्मी ने विविध भारती को दे दिया। फिर उसने ये बात सब दोस्तों को बताई, सब इतना हंसे ऑफिस में, तो सोचो एक छोटी सी बात ने कितनों को हंसाया। बस यही तो हम चाहते हैं, सब खूब हंसे वरना परेशानियां तो सबके साथ हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। एक और श्रोता ने कहा है कि जीवन दर्शन समंदर की भांति ही गहरा ही नहीं अपितु रहस्यमय भी है, भले ही हम उसके अंदर अपने कौशल विकास से केबल बिछाकर पूरी दुनिया को ही मुट्ठी में भर लेने की होड़ में लगे हुए हैं, फिर भी ये समंदर अब भी रहस्यमय ही है, क्योंकि बहुतेरे तो किनारे के सीप घोंगों से ही खुश हो जा रहे हैं, लेकिन ध्यान रहे कि एक कुशल गोताखोर ही समंदर में गोते लगाते हुए उसमें छुपे जीवन दर्शन स्वरूप हीरे मोतियों तक अपनी पहुंच बना पाते हैं। आगे भी लिखा है लेकिन यहीं से एक सवाल का जन्म होता है, और वो सवाल ये है कि इस लाइन पर एक बड़ा प्रसिद्ध मुहावरा है कि गोताखोर लंबी जब अंदर तक जाते हैं समुद्र में तभी वो हीरे मोतियों को पा लेते हैं, तो एक दोहा है, अगर वो दोहा याद आ रहा हो तो वो भी हमें बताएं और इस फिल्म का नाम बताएं जो गीत आप सुन रहे हैं।

बहुत शुक्रिया सही जवाब के लिए। एक तोहफे की तरह आया ये जवाब। और मुकेश और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें, इंदीवर के बोल, कल्याण जी आनंद जी की धुन, समंदर की भी बातें हमारे साथियों ने बताई हैं। वैसे एक सवाल आ रहा है मन में कि तोहफों को चुनते वक्त सबसे ज़्यादा किस बात का ध्यान रखा जाता है जेब के अलावा? ये जो हमारे साथियों ने बताया समुद्र की यात्रा के बारे में, तो एक श्रोता कह रहे हैं कि हम तो समुद्र कनाडा में इन्होंने देखा था कई बार, और बहुत देर तक वहाँ बैठकर आती जाती लहर को देखा, जो बस यही कह रही थी काश हमारे साथी को कुछ जीवन और मिल जाता तो आज वो भी हमारे साथ इस प्यारे से नज़ारे को देख पाते। पर बड़ी मस्ती की छोटी सी अपनी परी के साथ छोटे छोटे पत्थर, रंग बिरंगे पत्थर पानी में डाले और पानी में पैर डालकर बैठे रहे। कन्याकुमारी दीघा छूट गया लिखने में, ऐसा हमारे एक श्रोता कहते हैं। और मुंबई में तो अक्सर ही जाना होता है, वहां चौपाटी पर कई बार गए, चेन्नई में भी जाना हुआ, कन्याकुमारी भी गए हैं, ये हमारे एक और श्रोता ने बताया है। एक और श्रोता कह रही है कि वैसे तो हमारा शहर समुद्र के पास ही है, अक्सर हम वहां जाया करते हैं, डुमस बीच, सवाली बीच और गोवा दो बार गए, पर सबसे अलौकिक अनुभव हमें धनुषकोडी और कन्याकुमारी का रहा। दक्षिण भारत की यात्रा का अनुभव बेजोड़ था। क्या बात है, मुंबई के जुहू बीच दो तीन बार, अक्सा बीच और गुरई बीच का जिक्र किया है हमारे एक श्रोता ने। द्वारकाधीश और सोमनाथ गया हूँ समुन्दर के पास, ये हमारे एक और श्रोता बता रहे हैं। एक श्रोता ने साझा किया है एक दुर्घटना होते होते बचने का जो अनुभव था इनका। हम लोग पूरा ग्रुप करीब 80 लोग उड़ीसा गए हुए थे, वहां पर समंदर की सैर करते हुए अचानक समंदर में तूफान आ गया और हमारी बोट गोते खाने लगी। तभी एक अन्य बोट वाले ने तूफान के सामने अपनी बोट लगाकर हमारी बोट को सुरक्षित स्थान तक पहुंचा दिया। एक और श्रोता कह रहे हैं कि जुहू चौपाटी मरीन ड्राइव दोनों जगह पर दो तीन बार गई हूं, पर वहां का पानी जो अजीब सा पानी की जो अजीब सी गंध होती है मैं अपने को अच्छा महसूस नहीं कर पाती, इसलिए मैं पानी के किनारे पर जाना पसंद नहीं करती हूं। और एक और श्रोता बता रहे हैं कि पुरी के समुद्र में रस्सी पकड़कर लहरों का आनंद ले रहे थे, पर एक बहुत बड़ी लहर ने उठाकर पटक दिया और मोबाइल में पानी लग गया, थोड़ी सी लापरवाही की बड़ी सजा मिल गई। और समझौता फिल्म का ये गाना हमारे साथियों ने बताया, साथ ही अनिल धवन और शत्रुघ्न सिन्हा का भी नाम का जिक्र हो गया। अब संदेशों की बात करें तो और भी कई संदेश आए हैं। हमारे एक श्रोता कह रहे हैं कि मुंबई की कुछ बारिश आप ऑनलाइन

ट्रांसफर करके हमारे शहर अजमेर में भेज दें प्लीज, क्योंकि यहाँ तो दूर दूर तक बारिश की कोई उम्मीद नहीं लग रही है। अभी यहाँ तापमान 36 डिग्री सेंटीग्रेड है, ऑफिस के बाहर तेज धूप है। ओहो, ये तो बहुत खतरनाक है। चलिए जल्दी ही हम दुआ करते हैं बारिश आएगी। एक और श्रोता कह रहे हैं कि वीबीएस सर्विस मुंबई में मानसून के आगमन के साथ पानी बरसना शुरू हो गया, ऐसे में समंदर किनारे हवाओं के साथ लहरें अटखेलियां करती नजर आ रही हैं। पहली रिमझिम बारिश में धरती को छूती हुई पानी की बूंदें मिट्टी की सूंधी खुशबू बिखेरती हैं, तो वहीं समंदर किनारे किसी चट्टान पर बैठकर बीती यादें मस्तिष्क को दूसरी ही दुनिया में ले जाती हैं। और बताया है कि समुद्री लहरों के आसपास फिल्माए गए गाने बच सकते हैं। एक और संदेश में कहा गया, शांत लहर में कुछ खामोशियां भी गीत होती हैं, उन्हें सुनने के लिए कान नहीं बस समझने वाला दिल होना चाहिए। क्या बात है। चलिए अब इसी बात पर अगला गाना, इस गाने को सुनिए और हमें ये बताइए कि ये किस फिल्म का गाना है और गीतकार कौन है।

आवाज पर ये गाना तो हो गया और इसके साथ ही बहुत सारी आवाजें, भावनाएं आवाज बनकर हम तक पहुंच गई हैं। सच में ऐसा लग रहा है जैसे हम आमने सामने बैठकर बातें कर रहे हैं। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मुझे तो पानी से बड़ा डर लगता है, मैं तो तालाब में भी नहाता हूं तो साथ में बाल्टी या मग ले जाता हूं, समुद्र में जाना तो दूर की बात।

वैसे हमारे साथियों ने ये जरूर बता दिया जो हमने एक दोहे का जिक्र किया था कि जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न दरा रहा किनारे बैठ। कबीर दास की का ये दोहा हमारे साथियों ने बताया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और श्रोता कह रही हैं कि समंदर से बड़ा गहरा नाता है मेरा, क्योंकि समंदर के काफ़ी नज़दीक रहती हूँ। अपनी हर खुशी के पल में समंदर के किनारे पहुँच जाते हैं, टहलना हो तो भी वहीं जाते हैं। लहरों से अपनी दोस्ती है, समंदर की हवाओं से यारी है अपनी। क्या बात है, वैसे बहुत बातें करती हैं हवाएँ जब आप समंदर के किनारे हों। एक और श्रोता कह रहे हैं कि गुजरात के दमन दीव बीच और सोमनाथ विजाग बीच, चेन्नई के मरीना बीच और रामेश्वरम के धनुषकोडी और कन्याकुमारी केरला के कोवलम बीच की सैर करके आई हूं, पर जो चौपाटी की बात है वो सबसे निराली है क्योंकि उसमें बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। क्या बात है। एक और श्रोता ने बताया है कि रेत पर नाम लिखने का किस्सा, कि बचपन इनका मुंबई में ही गुजरा था, समुद्र से गहरा लगाव है। जब भी हम मुंबई आते हैं तो जुहू चौपाटी, गिरगांव चौपाटी या अन्य बीचेस में ज़रूर जाते हैं। धर्मपत्नी जब बच्चों के साथ होती हैं तो मैं चुपके से हर बार रेत पर दिल का शेप बनाता हूँ, धर्मपत्नी का नाम लिखकर आई लव यू भी लिखता हूँ और सबको बुलाता हूँ, तो धर्मपत्नी और बच्चों के चेहरे की मुस्कुराहट ही मेरा तोहफा होता है और वहाँ का वीडियो भी सेव करके रखता हूँ। हाँ, हम यही बात कहने वाले थे कि ऐसे नज़ारों की तो फोटो तुरंत खींच लेनी चाहिए। क्या बात है। एक और श्रोता कह रही हैं कि मैं वो खुश नसीब हूँ जो समंदर के किनारे रहती हूँ। मेरा बेटा रोज शाम को खिलौने लेकर रेती में खेल खेल के खेलते खेलते बड़ा हुआ है। मैं भी सीपियाँ इकट्ठा करके उनसे अलग अलग डेकोरेटिव चीज़ें बनाती थी, लेकिन अब समंदर किनारे बहुत गंदगी रहती है, सीपियाँ मिलना भी बंद हो गया है। सच में ये एक बहुत ही दुखद बात है, और इसलिए समंदर को साफ रखें। अगर समंदर के किनारे आप जा रहे हैं तो थोड़ी बहुत जिम्मेदारी हमारी भी बनती है। एक और श्रोता कह रहे हैं कि मुंबई चेन्नई जगन्नाथपुरी रामेश्वरम कन्याकुमारी जाना हुआ, हर बार का रोमांच अलग अलग रहा। मेरी बिटिया का बेटा पुरी में पिछले साल हमारे साथ था, उसके साथ समंदर के किनारे लहरों से खेलते खेलते वो अचानक किसी लहर के साथ बह निकला। बस थोड़ी दूर जाते ही हमने लपक कर उसे पकड़ लिया, वो तो मज़े लेता रहा पर हम सबके तो हाथ पैर जम से गए थे। कन्याकुमारी में सनराइज की वो झलक का अनुभव इतना सुंदर और आत्मिक अनुभव से भरा हुआ है, वो नज़ारा वीडियो में आज तक कैद है, जिसे हम यदा कदा देखते रहते हैं। एक गीत सुलक्षणा पंडित का गाया हुआ, तू ही सागर है तू ही किनारा। और अब वो सवाल जो हमने पूछा था, प्रेम गीत फिल्म का गाना अनीता रास का जिक्र किया, इंदीवर का लिखा हुआ ये गीत था, ये भी हमारे साथियों ने बता दिया। और अब हम अगले गाने की तरफ चलें, उसके पहले एक संदेश है। प्रकृति और मनुष्य आदिकाल से सहचर हैं, जब रिमझिम बारिश की बूंदें समंदर की लहरों पर पड़ती हैं तो मानो बिछड़े हुए प्रेमियों का मिलन हो रहा हो। यह दृश्य और अदृश्य का मिलना मानव मन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। इस माहौल में मनुष्य के भीतर की तार्किकता मौन हो जाती है और संवेदनशीलता जागृत हो जाती है। क्या बात है। एक और संदेश में कहा है कि सुख का सुंदर चैतन्य आत्मा है, उसमें से आनंद की तरंगें उठती हैं, खुशी की लहरें उठती हैं और फिर उसी चैतन्य समुद्र में समाती भी हैं। एक और श्रोता ने कविता साझा की है, कहीं पढ़ी हुई ये कविता साझा की है इन्होंने। बादल बरसे धुल गई मन पर बैठी धूल, सब कुछ अपने हो गए समंदर नाव और मस्तूल, खिली जुलाई खुल गया बारिश का स्कूल, बस्ता लेकर सज रहे गुलमोहर के फूल। क्या बात है। तो चलिए अब अगले गीत की बारी है, बताइए कि गीत संगीत किनका है और फिल्म में कौन से कलाकार हैं।

भाई, हमारे श्रोताओं ने शशि कपूर और मुमताज का तो जिक्र किया, चोर मचाए शोर का नाम भी बता दिया, लेकिन गीत संगीत नहीं बताया। चलिए हम बता देते हैं, गीत संगीत रविंद्र जैन का था। और एक श्रोता ने बताया है कि चेन्नई के मरीना बीच की वे यादें केवल एक सैर की याद नहीं बल्कि परिवार के साथ बिताए गए उन अनमोल पलों की धरोहर हैं जिन्हें याद करके आज भी मन मुस्कुरा उठता है। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि एक बार गोवा गए थे तो उनका फोन जो था पानी में गिर गया और उसके बाद सैंड में दब गया, ढूंढने पर भी नहीं मिला, इनका ट्रिप खराब हो गया। वैसे बहुत एहतियात के साथ इस दौरान रहना पड़ता है, समुंदर कई बार आपके साथ अटखेलियां करते करते कुछ ऐसा कर जाता है कि आपने उम्मीद भी नहीं की होती है। एक और श्रोता ने बताया कि भोपाल में आज सुबह से ही बादल और हल्की बारिश का सिलसिला चल रहा है, मौसम बहुत सुहाना है, कभी बरसात के मौसम में आप यहाँ आए तो आपको बहुत मजा आ जाएगा। क्या बात है, हम दुआ करेंगे कि हम जरूर आए। और एक और श्रोता बता रहे हैं कि सूरत में बारिश हो गई, कल रात 10:30 बजे के बाद शुरू हुई, सुबह 10 बजे तक जारी थी, लेकिन मैं राजस्थान में हूं, अभी जमकर बारिश नहीं हुई। एक और श्रोता ने अंडमान निकोबार जाते हुए बे ऑफ बंगाल समंदर हवाई जहाज से 2.5 घंटे का सफर पूरा किया, ये बताया है, नीचे देखो तो नीला समंदर था, मन में डर लग रहा था लेकिन थ्रिल भी लग रहा था। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि आप लोग मुंबई में पानी की बारिश से भीग रहे हैं, सुनकर ही बहुत अच्छा लग रहा है। हम यहाँ बनारस में भी पानी से भीग रहे हैं लेकिन सेल्फ सर्विस पसीने से, दुआ कीजिए जी। बिल्कुल, हम तो हाथ जोड़कर दुआ कर रहे हैं कि जल्दी से ये बादल पहुँचें। मेघदूतों को के बारे में आपने सुना है ना, हमने मेघदूत से कह दिया है कि जल्द से जल्द हमारे सभी साथियों तक पहुँचें। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि आंध्र प्रदेश कर्नाटक और गोवा के समुद्र तटों को छोड़कर शेष सभी समुद्र तटों पर हो आए हैं, यहाँ तक कि गंगा सागर भी हो आए हैं, क्या बात है। और एक और श्रोता बता रहे हैं कि अभी इन्होंने वृंदावन की यात्रा की और यमुना की सैर की।

सागर के साथ पूरा भारत देखा, दादर की चौपाटी याद आती है। अच्छा, वैसे समुद्र जो है वो कई जगह बड़ा रिझाता है और कई जगह चेतावनी भी देता है। एक और श्रोता कह रहे हैं कि रामेश्वरम के धनुषकोडी और कन्याकुमारी में स्वामी विवेकानंद स्मारक पर तेज हवाओं का सामना करना पड़ा था। और एक और श्रोता ने बताया कि हमारे शहर कटक से पूरी नजदीक होने के कारण अक्सर जब मूड किया चल दिए समंदर की सैर को। क्या बात है। और अब अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, इस गीत को सुनिए और हमें ये बताइए कि ये किस नायिका पर फिल्माया गया है।

हमारे एक साथी कह रहे हैं कि हेर आई शब्द का मतलब बुंदेलखंडी में ढूंढ आई। वैसे हेराई यहाँ पर प्रयोग हुआ है खो आई। और हमारे श्रोताओं ने तुरंत जवाब दिया कि अभिमान फिल्म का गाना नायिका जया भादुड़ी। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। मजरू दादा की रचना, सचिन दा का संगीत, ऐसा हमारे एक और साथी बता रहे हैं। और मुंबई में अरब सागर पर बना हुआ सीलिंग देखने जाना है एक श्रोता की ये ख्वाहिश है, और ये ख्वाहिश, उनकी ये ख्वाहिश जल्दी से जल्दी पूरी हो, हम तो यही दुआ करेंगे। एक श्रोता ने बताया है कि हम लोग समंदर के किनारे, हमने काम भी किया है और अच्छा घूमे भी हैं। एक बार नीलोफर तूफान भी आया था, दो बार रहा, दोनों बार तूफान था। एक तीन चार

लगातार लाइट भी नहीं थी, फिर भी आज भी किनारे रहने की बहुत इच्छुक हूं। एक और श्रोता ने एक दोहा साझा किया है, समुद्र तट के वर्णन के बारे में। रामचरितमानस का दोहा है, बांध्यो बन निधि नीर निधि जलधि सिंधु बारीस, सत्य तोय निधि कंपति उदधि पयोधि नदीस। समुद्र के ये 10 नाम हैं जो वाकई बड़ी खूबसूरती से तुलसीदास जी ने पिरोए हैं इस दोहे में। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि बदलते मौसम में जब रिमझिम की बूंदें बरसती हैं तो रेत पर लिखे वो अधूरे नाम भी भीग जाते हैं, लेकिन जहां समंदर की लहरें इन पथरीली चट्टानों से टकराती हैं वहां आज भी दो दिल एक ताल पर धड़कते हैं। मानो कह रही हूं कि कुछ सफर कभी खत्म नहीं होते। एक और श्रोता ने कहा है कि एक सुंदर स्वप्निल काव्य शिल्प यानी आज की इबारत, समुद्र की लहरों पर जो बिखरा रही है रिमझिम की दौलत, क्या बात है। कल कल फेनिल सागर लहरें किनारे को जो छुए, धड़कते प्रेमी दो दिलों पर प्रणय रस वो छिटकाएं, आते जाते मधुर सुरीले प्रेम गीत वो गुनगुनाएं। और कुछ गाने भी इन्होंने साझा किए हैं। और एक और श्रोता ने कहा है कि सागर के अनंत विस्तार में उठती गिरती ये लहरें, कभी शांत कभी उग्र, जैसे जिंदगी की ही कोई अनकही दास्तान कहें। कुछ दूर क्षितिज में उठकर किनारों को छूकर ये बिखर जाती हैं, हार नहीं मानती, बस एक बार एक नया हौसला लेकर आती हैं। कभी थपेड़ों से चुभती हैं तो कभी मखमली स्पर्श सी हो जाती हैं। लहरें जिंदगी के सफर में बहुत कुछ सिखा जाती हैं। हर लहर हमें ये बताती है कि गिरना तो बस उठने की तैयारी है, ठहरना नहीं, निरंतर बहते जाना ही इस बहते हुए जीवन की बाजी है। क्या बात है। और अब ये गीत सुनिए और बताइए स्वर किनका है,

लता जी और भूपेंद्र सिंह, ये हमारे साथियों ने लिखकर भेजा है। फिल्म किनारा बहुत गंभीर फिल्म और बहुत सारे श्रोताओं ने जिक्र किया है। लता दीदी बिल्कुल सही, इनकी आवाज़ ही पहचान है। और अभिमान फिल्म के गाने के लिए भी जया भादुड़ी, अमिताभ बच्चन, लता मंगेशकर, एसडी बर्मन का जिक्र हुआ है। संदेश बहुत सारे हैं और मुझे लगता है कि मुझे सारे संदेश कैसे पढ़ने होंगे। सागर के अनंत विस्तार में उठती गिरती ये लहरें, कभी शांत कभी उग्र, जैसे जिंदगी की ही कोई अनकही दास्तान कहें, ये हमारे एक श्रोता लिखते हैं। और एक और श्रोता ने कहा है कि आज दरिया समंदर नदियों की उनके अविरत बहती लहरों का जिक्र होगा, बिना भीगे मन को प्रसन्न करने वाली लहरों का वो अनहद संगीत शोरगुल में भी कर्णप्रिय लगता है। मैं घंटों तक समंदर के किनारे किनारों से चलता हुआ लहरों का आनंद लेता हूँ, थकान मिट जाती है। शाम को ढलते हुए सूरज की किरणों का दृश्य मनोहर होता है। और इन्होंने कुछ गीत भी लिखे हैं। एक और श्रोता कह रहे हैं कि सागर परम चेतना है, जिसमें बहुत गंभीर स्थायित्व और गहराई है, और उसकी गहराई ज्ञान का प्रतीक है। लहरें चंचलता, भाव और उमंग को दर्शाती हैं, जो कुछ कुछ अहंकार का रूप लगती हैं। मानो ये कहना चाहती हैं कि उन्होंने ही सागर का निर्माण किया है, यथार्थ में तो वो सागर का अंश मात्र ही हैं। काफी गहरा संदेश है ये। और अब ये गीत सुनिए और बताइए कि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के मित्र की भूमिका किन्होंने निभाई है।

हमारे श्रोताओं ने कहा है, जवाब बिल्कुल सही दिया है। अमिताभ बच्चन के मित्र हैं अमजद खान, किशन और बिशन। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि कॉलेज काल की ये फिल्म है। एक और श्रोता ने कहा है कि किशन चाचा के अमजद खान ने ये गीत गाना, याराना के संगीत राजेश रोशन का संगीत, इन्होंने ये लिखा है। और एक और श्रोता ने अमजद खान उर्फ गब्बर सिंह को याद किया है। एक संदेश है कि आज सोशल मीडिया दिवस है। सोशल मीडिया ऐसा मंच जहां व्यक्ति अपने स्वतंत्र रूप से विचार रख सकता है और प्रतिक्रिया दे सकता है। हमें चलिए आपके विचारों के साथ हमने आज का ये कार्यक्रम का ये सफर तय किया, सुरीला सफर। और अब इस कार्यक्रम को यहीं पर दे रहे हैं विराम। तो दीजिए राजुल को इजाजत, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राज्य में 53,000 करोड़ रुपए की लागत से 5 प्रमुख सड़क और पुल परियोजनाओं का निर्माण किया जाएगा। इस प्रस्ताव को जल्द ही केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने की संभावना है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की कल नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के साथ हुई बैठक में इस पर सहमति बनी है। केंद्र सरकार ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के सामने अपील करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय के अनुसार पिछले वर्ष सितंबर में जारी अधिसूचना में अपील दायर करने की अंतिम तिथि इस वर्ष 30 जून निर्धारित की गई थी। विभिन्न हितधारकों न्यायाधिकरण में अपील दायर करने की भारी संख्या के कारण आई तकनीकी बाधा का हवाला देते हुए सरकार से अंतिम तिथि बढ़ाने का अनुरोध किया था। सरकार ने करदाताओं को भी सलाह दी है कि वे समय रहते अपील दायर कर दें और अंतिम तिथि का इंतजार न करें। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज कहा कि भारतीय सेना को अपनी शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी आज सेना प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं। अपनी विदाई समारोह के तहत सेना प्रमुख द्विवेदी ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 4 दशकों से अधिक समय तक भारतीय सेना में सेवा करना उनके लिए सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर कल से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। गौरतलब है कि पश्चिम एशिया संकट के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों पर बिक्री पर 12 जून से अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने भोजपुर कथित फर्जी पुलिस मुठभेड़ मामले की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति शीला नागू की अवकाशकालीन पीठ ने याचिकाकर्ता को इस मामले में पहले उच्च न्यायालय का रुख करने को कहा है। यह याचिका अधिवक्ता विशाल तिवारी ने दाखिल की थी। ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने वाली महत्वाकांक्षी योजना विकसित भारत जीराम जी कल से प्रदेश भर में लागू की जाएगी। इसके तहत हर वयस्क व्यक्ति को वर्ष में 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाएगी। ग्राम पंचायतें योजना का निर्माण करेंगी और श्रमिकों के बैंक खातों में मजदूरी का सीधा और समयबद्ध भुगतान किया जाएगा। जीराम जी योजना वर्तमान में चल रही मनरेगा योजना का स्थान लेगी। राज्य के उत्तरी हिस्सों में मानसून की सक्रियता से कई जिलों में झमाझम बारिश हुई है। मौसम विभाग ने आज गोपालगंज और पश्चिम चंपारण जिले के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं दरभंगा, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, शिवहर, सीतामढ़ी और वैशाली जिलों में भी कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। इधर पटना समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम भागों में कुछ स्थानों पर बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। पटना और आसपास के क्षेत्रों में आज भी बादल छाए हुए हैं। सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव की तबीयत खराब होने के कारण उन्हें पटना के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राज्य सरकार के कई मंत्री, विधायक और पार्षद ने अस्पताल पहुंचकर उनका हालचाल लिया। अररिया जिले की महिला थाना पुलिस ने एक मामले के अनुसंधान के दौरान वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। पश्चिम चंपारण संसदीय क्षेत्र से लोकसभा सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने आज बेतिया अतिथि गृह में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की जानकारी साझा की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

यह आकाशवाणी पटना है। अब आप इमरान सगीर से इलाकाई खबरें सुनिए। रियासत में 53,000 करोड़ रुपए की लागत से 5 अहम सड़क और पुल प्रोजेक्टों की तामीर होगी। इस तजवीज़ को जल्द ही मरकजी काबीना की मंजूरी मिलने का इम्कान है। वज़ीर आला सम्राट चौधरी की कल नई दिल्ली में मरकजी वजीर रोड ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी के साथ हुई मीटिंग में इस पर इत्तफाक़ राय हुआ। मरकजी हुकूमत ने GST अपील ट्रिब्यूनल के सामने अपील करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। वजारत मालियात के मुताबिक गुज़श्ता साल सितंबर में जारी नोटिफिकेशन में अपील दायर करने की आखिरी तारीख इस साल 30 जून मुकर्रर की गई थी। मुख्तलिफ स्टेक होल्डर ट्रिब्यूनल में अपील दायर करने की बड़ी तादाद के सबब आई तकनीकी रुकावट का हवाला देते हुए हुकूमत से आखिरी तारीख बढ़ाने की दरख्वास्त की थी। हुकूमत ने टैक्स दहिंदगान को भी सलाह दी है कि वह वक्त रहते अपील दायर कर दें और आखिरी तारीख का इंतज़ार न करें। आर्मी सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज कहा है कि हिंदुस्तानी अफवाज को अपनी कुव्वत की एक फ़र्ज से नहीं बल्कि अपने फौजियों, कमांडरों, साबिक फौजियों, उनके ख़ानदानों और मुल्क के शहरियों के अटूट एतमाद से मिलती है। जनरल द्विवेदी की मुद्दतकार आज ख़त्म हो गई। अलविदाई तकरीब के मौके पर उन्होंने कहा कि 4 दहाइयों से ज़्यादा वक्त तक हिंदुस्तानी अफवाज में खिदमत करना उनके लिए सबसे बड़ी खुशकिस्मती रही। आर्मी सरबराह जनाब द्विवेदी ने नई दिल्ली वाक़े नेशनल वार मेमोरियल पर खिराज अकीदत पेश किया। नए आर्मी सरबराह जनरल धीरज सेठ ने अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है। मरकजी हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की फरोख्त पर लगाई गई आरजी पाबंदी हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और कुदरती गैस वजारत ने आज कहा कि अवामी जुमरे की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर कल से यह पाबंदी लागू नहीं रहेगी। गौरतलब है कि मगरबी एशिया बहरान के दौरान हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त पर 12 जून से आरजी पाबंदी लगाई थी। इसके तहत एक ग्राहक या गाड़ी को एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 200 लीटर डीजल देने की हद तय की गई थी। वजारत ने कहा कि मुल्क में पेट्रोल और डीजल की फराहमी मामूल पर आ गई है।

इसलिए अवामी मफाद में इन आर्जी पाबंदी को वापस लेने का फैसला किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भोजपुर मुबैना फर्ज इनकाउंटर मामले की सीबीआई जांच की मांग करने वाली अर्जी पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस शील नागू की तातील की मुद्दत वाली बेंच ने अर्जी गुजार को इस मामले में हाई कोर्ट का रुख करने को कहा है। यह अर्जी एडवोकेट विशाल तिवारी ने दायर की थी। दही तरक्यात को फरोग देने वाली जामे स्कीम विकसित भारत जी राम जी कल से पूरी रियासत में लागू की जाएगी। इसके तहत हर बालिग शख्स को साल में 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाएगी। ग्राम पंचायतें मंसूबे बनाएंगी और मजदूरों के बैंक खातों में मजदूरी की सीधी और बरवक्त अदायगी की जाएगी। जी राम जी योजना मौजूदा में चल रही मनरेगा योजना की जगह लेगी। रियासत के शुमाली हिस्सों में मानसून की सरगर्मी से कई ज़िलों में अच्छी बारिश हुई है। मकमे मौसमियात ने आज गोपालगंज और मगरबी चंपारण ज़िले के लिए शदीद बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं दरभंगा, मशरकी चंपारण, मधुबनी, शिवहर, सीतामढ़ी और वैशाली ज़िले में भी कुछ मकामात पर शदीद बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इधर पटना समेत रियासत के जनूब मगरबी हिस्सों में भी कुछ मकामात पर बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। पटना और आसपास के इलाकों में आज भी बादल छाए हुए हैं। वजीर कोऑपरेटिव रामकृपाल यादव की तबीयत खराब होने के सबब उन्हें पटना के निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। रियासती हुकूमत के कई वज़रा अराकिन कानून साजिया ने अस्पताल पहुंचकर उनकी इयादत की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।

आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है, लीजिए अब रोजगार सूचना सुनिए। कर्मचारी चयन आयोग SSC 10+2 कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल के कुल 3522 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता, उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। इसके लिए आयु सीमा उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 27 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 जुलाई 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.ssc.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड NIACL अप्रेंटिस के कुल 550 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता, उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से किसी भी विषय में स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। इसके लिए आयु सीमा उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जून 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 6 जुलाई 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.vfsissc.com से प्राप्त किया जा सकता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI प्रोविजनरी ऑफिसर PO के कुल 1500 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है।

इसके लिए शैक्षणिक योग्यता, उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। आयु सीमा, उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अप्रैल 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 8 जुलाई 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.sbi.bank.in से प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी एक बार फिर से सुन लें, www.sbi.bank.in से प्राप्त किया जा सकता है। रोजगार से संबंधित सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। इस समय 2:15 होने को हैं। दोपहर समाचार के लिए आइए अब हम आपको दिल्ली केंद्र लिए चलते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। यूरो बैंक ने यूनान से भारत के लिए यूपीआई के माध्यम से धन भुगतान की सेवा शुरू की। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे भारत के डिजिटल भुगतान विस्तार में मील का पत्थर बताया। दिल्ली सहित चार राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू। पाकिस्तान के ग्रे सूची निगरानी की आलोचना के बाद भारत ने वित्तीय कार्यवाही कार्य बल के लिए अपना समर्थन दोहराया। ईरान के दोहा में बैठक से इंकार के बाद अमेरिका ईरान के बीच शांति वार्ता पर अनिश्चितता बरकरार। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले दो दिन तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और जर्मनी पैराग्वे से पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हारकर फीफा विश्व कप से बाहर। मोरक्को ने नीदरलैंड को हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। यूरो बैंक ने यूनान से भारत में सीमा पार धन भुगतान के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरो बैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक विस्तार में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि यूनान में यूपीआई के शुरू होने से ग्राहक तुरंत सुरक्षित और निर्बाध रूप से धन हस्तांतरण कर सकते हैं। इससे लेन देन लागत पारंपरिक हस्तांतरण लागत के मुकाबले काफी कम हो गई है। श्री गोयल ने यूपीआई की बढ़ती वैश्विक स्वीकृति की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दृष्टिकोण में विश्वास को भी दर्शाता है जिसके तहत प्रौद्योगिकी आधारित समाधान विकसित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: दिल्ली सहित चार राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। दिल्ली में घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य शुरू किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ अगले महीने की 29 तारीख तक हर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे ताकि मतदाता सूची का सत्यापन और अद्यतन किया जा सके। कल मतदाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। उन्होंने बताया कि मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली के सभी पात्र मतदाता

0: मतदाताओं से इस संशोधन प्रक्रिया में भाग लेने की अपील की है। कर्नाटक में ब्लॉक स्तर के अधिकारी बीएलओ विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के अंतर्गत घरों का दौरा कर रहे हैं। इस कार्य के लिए राज्य भर के सभी 31 जिला निर्वाचन कार्यालयों में 59,000 से अधिक बूथ स्तर के अधिकारी तैनात किए गए हैं। 4 अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी, 224 मतदाता पंजीकरण अधिकारी, 336 सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी और 7,556 बीएलओ पर्यवेक्षक भी पुनरीक्षण प्रक्रिया में शामिल हैं। झारखंड में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: बूथ लेवल अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर मतदाताओं को आंशिक रूप से भरे हुए इन्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध कराएंगे और सत्यापन करेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध, पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाना है, ताकि कोई भी पात्र भारतीय मतदाता सूची से वंचित न रहे और कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो। श्री कुमार ने मतदाताओं से अपील की कि फॉर्म प्राप्त होने पर आवश्यक जानकारी भरकर हस्ताक्षर सहित शीघ्र बीएलओ को वापस करें, ताकि उनका नाम 5 अगस्त को प्रकाशित होने वाली प्रारूप मतदाता सूची में शामिल किया जा सके। आज राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने खूंटी जिले के तोरपा विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 84, 87 और 89 का निरीक्षण कर बीएलओ और बीएलए 2 के साथ बैठक की और विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की तैयारियों और कार्य योजना की समीक्षा की। विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर 2026 अभियान को गति देने के लिए #झारखंडएसआईआर के साथ सोशल मीडिया जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से महवेश रहमान की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स के उपायुक्त अभिलाष बरनवाल ने बताया कि 1021 बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ जिले के सभी 1021 मतदान केंद्रों पर 29 जुलाई तक घरों का दौरा करेंगे और उन मतदाताओं को पहले से भरे हुए स्वगणना प्रपत्र वितरित करेंगे जिनके नाम 2025 की मतदाता सूची में पहले से ही शामिल हैं। इस बीच केरलम में जनगणना 2027 के लिए स्वगणना प्रक्रिया आज समाप्त हो रही है। राज्य में रहने वाले सभी लोग आधी रात तक पोर्टल पर अपना विवरण दर्ज कर सकते हैं। आगे की जानकारी एकत्र करने के लिए जनगणना कर्मी कल से घरों का दौरा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आंध्र प्रदेश के केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए विशाखापट्टनम पहुंची। उनका स्वागत आईएनएस देगा में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने किया। इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज कहा कि सरकार ने देश में स्वास्थ्य सेवा, अवसंरचना और कुशल चिकित्सा, मानव संसाधन दोनों को मजबूत करने पर समान रूप से जोर दिया है। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज के 10वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि ILBS जैसे संस्थान देश के स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं।
2: ILBS ने नहीं सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में अपना नाम स्थापित किया है। ऐसे समय में 10th कॉन्वोकेशन हो रहा है ये सेलिब्रेट करने की। स्टूडेंट्स जिनको आज डिग्री मिल रही है उनके लिए भी ये सेलिब्रेशन का मौका है, पर उनके सेलिब्रेशन है उनकी सैक्रिफाइस, उनका डिसिप्लिन, उस सब के कारण आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि उनको ये डिग्रियां हासिल हो रही हैं। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। हरियाणा के हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है जो मिट्टी और उसमें आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। उन्होंने किसानों को जैविक खेती अपनाने की भी सलाह दी।
3: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल, सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहां भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
0: ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन RGVVS 2026 का आयोजन किया है। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के

0: ग्रामीण परिवर्तन के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए किया गया, जिसका समापन हाल ही में हुआ है। इसके अंतर्गत केंद्र राज्य के मजबूत सहयोग, समुदाय आधारित विकास और प्रौद्योगिकी आधारित शासन के माध्यम से विकसित ग्राम विकसित भारत के दृष्टिकोण को गति देने की साझा प्रतिबद्धता को ध्यान में रखा गया। सरकार ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के सामने अपील करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय के अनुसार पिछले वर्ष सितंबर में जारी अधिसूचना में अपील दायर करने की अंतिम तिथि इस वर्ष 30 जून निर्धारित की गई थी। विभिन्न हितधारकों ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर करने की भारी संख्या के कारण आई तकनीकी बाधा का हवाला दिया था। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्ष में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
1: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: जनरल द्विवेदी आज नई दिल्ली में सेना प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं। नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपते हुए जनरल द्विवेदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जनरल सेठ के नेतृत्व में भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं, व्यावसायिकता और दृढ़ संकल्प को कायम रखते हुए और भी ऊंचाइयों को छुएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। भारत ने वित्तीय कार्रवाई कार्य बल को आतंकवाद को धन मुहैया कराने और धन शोधन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई का अविभाज्य अंग बताते हुए इसके लिए अपना पुरजोर समर्थन फिर से व्यक्त किया है। संगठन की ग्रे लिस्ट में शामिल किए जाने के बाद पाकिस्तान ने FATF की आलोचना की थी, जिसके बाद भारत ने FATF के प्रति अपना समर्थन दोहराया। संयुक्त राष्ट्र में आतंकरोधी सप्ताह से अलग एक समारोह में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि FATF की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने का प्रयास जायज चिंताओं के बजाय जांच के दायरे में आने का भय अधिक दर्शाता है। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए चल रहे कूटनीतिक प्रयासों में बाधा आ रही है। दोहा में होने वाली अगले चरण की वार्ता को लेकर अमेरिका और ईरान विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दोहा में नई वार्ता आयोजित किए जाने के संकेत के बाद अमेरिका ईरान संबंधों के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को दृढ़तापूर्वक अस्वीकार करते हुए कहा कि फिलहाल अमेरिका के साथ किसी भी प्रकार की बातचीत की योजना नहीं है। ईरान के अधिकारियों का कहना है कि अभी उनका ध्यान 14 सूत्री समझौता ज्ञापन को लागू करने पर है, जिसके बाद वे किसी व्यापक या अंतिम समझौते पर चर्चा करने पर विचार करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने भी यह स्पष्ट किया है कि ईरान अपने वादों को तभी पूरा करेगा जब अमेरिका भी अपनी जिम्मेदारियां निभाएगा। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने आपदा से प्रभावित लोगों के लिए चिकित्सा सहायता, आपातकालीन सहायता पर विशेष ध्यान देते हुए राहत कार्यों का विस्तार किया है। मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय बचाव और चिकित्सा दल वेनेजुएला के अधिकारियों के साथ मिलकर आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में बहुत तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। सिक्किम, असम, मेघालय, केरलम और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में भी आज इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के दौरान कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कल तक छिटपुट स्थानों पर तेज सतही हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस के अवसर पर सभी निर्वाचित अधिकारियों और विश्व के लोकतांत्रिक संस्थानों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि संसद जनता की आकांक्षाओं, अधिकारों और विश्वास की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, जहां विचारों का मंथन होता है, नीतियां बनती हैं और राष्ट्र के भविष्य की दिशा तय होती है। झारखंड में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है।

0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हो, चांद भैरव और फूलो झानो के बलिदान के स्मरण में मनाया जाता है।
1: झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडी में हूल दिवस के अवसर पर हजारों लोग संथाल हूल के अमर शहीदों सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो और झानो को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 30 जून 1855 को भोगनाडी से सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन और महाजनी प्रथा के खिलाफ संथाल हूल का बिगुल फूका गया था। क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को कई मोर्चों पर कड़ी चुनौती दी और आंदोलन लगभग एक वर्ष तक चला। इस संघर्ष के दौरान चांद और भैरव शहीद हो गए, जबकि बाद में सिद्धू और कान्हू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी। झारखंड में हूल दिवस स्वाभिमान, प्रतिरोध और जनजातीय अस्मिता का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: जर्मनी फुटबॉल फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 से बाहर हो गया है। बोस्टन में खेले गए मैच में पैराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया। विश्व कप में पेनल्टी शूटआउट में जर्मनी की यह पहली हार है। मोरक्को और ब्राजील भी अंतिम 16 में पहुंच गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यूरो बैंक ने यूनान से भारत के लिए यूपीआई के माध्यम से धन भुगतान की सेवा शुरू की। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे भारत के डिजिटल भुगतान विस्तार में मील का पत्थर बताया। दिल्ली सहित 4 राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू। पाकिस्तान के गृह सूची निगरानी की आलोचना के बाद भारत ने वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के लिए अपना समर्थन दोहराया। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिन तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुनते हैं महल फिल्म का गाना किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में। आनंद बख्शी का लिखा गीत है, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

0: फिल्म तपस्या का ये गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार और आरती मुखर्जी का गाया हुआ। एमजी हशमत के बोल थे और रविंद्र जैन का संगीत था।
1: जिनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है।

0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
1: आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में मेरा साया फिल्म का ये सदाबहार नगमा। राजा मेहंदी अली खान के बोलों को संगीत से सवारा है मदन मोहन ने।

0: उनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।

वासना फिल्म का ये गाना आपने सुना मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर का गाया हुआ, साहिल लुधियानवी के बोल थे और चित्रगुप्त का संगीत था। और अब आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति जब जब फूल खिले फिल्म से, मोहम्मद रफी और नंदा की आवाज़ें हैं आनंद बख्शी का लिखा गीत, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

इस गीत के साथ ही अब आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए राजुल को इजाजत। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

0: की सहेली
1: सभी सखी सहेलियों और सखाओं को राजुल का नमस्कार और साथ में है सोनाली, आपको भी नमस्कार।
2: राजुल जी आपको और सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। क्या हाल चाल है राजुल जी?
1: बस बढ़िया है, आप सुनाइए कैसे हैं?
2: मैं भी बहुत मजे में हूँ। और ये जो बारिश है ना, ये किसी छोटे नटखट बच्चे की तरह हो गई है, बीच में से झमाझम बरस जाती है और फिर चुपचाप से छुप जाती है, तो इतनी ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है तो हम फिर परेशान हो जाते हैं, और जब हम परेशान होते हैं तो फिर से झमाझम बारिश हो जाती है।
1: तो ये कहो ना कि दरअसल ये जो बारिश है वो आपको परेशान नहीं देख सकती, बस जैसे ही परेशान देखती है कि अरे सोनाली परेशान हो रही, तुरंत आ जाती है। वैसे एक बात बताएं कि हमारे वो मित्र जो कि हमसे दूर हैं, जहाँ पे अभी बारिश नहीं शुरू हुई है, उनके लिए ये चीज बड़ी ही सुन के उनको बहुत वो होता है कि यहाँ तो बहुत तेज गर्मी पड़ रही है और बारिश तो हो नहीं रही है, तो उनको ये बात सुन के बड़ा ही अजीब सा लगता है। लेकिन भाई जहाँ बारिश हो रही है और जहाँ बारिश नहीं हो रही है, वहां पर भी बारिश शुरू हो जाए हम तो यही कहेंगे।
3: बस इंतजार करना जरूरी है, क्योंकि इंतजार का फल मीठा होता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मीठा होता है। और इसके साथ ही साथ एक बात ये है कि आज जो हम लोग बातें करने वाले हैं ना, उसमें जो बातें हैं वो बिल्कुल रिमझिम की तरह बरसती हुई एकदम शांत कर देने वाली बातें हैं।

0: जैसे कि हम आज बात करेंगे बुजुर्गों के अकेलेपन के बारे में।
1: अकेलापन जो है ना, ये एक ऐसी अवस्था है जो बहुत परेशान कर देती है, पर जो घर वाले हैं उनकी थोड़ी जिम्मेदारी है कि उनके जीवन में सुकून के पल आए, तो उनसे मिलजुल करना बहुत जरूरी है, उन्हें अपने अपने साथ शामिल करना बहुत जरूरी है। तो बुजुर्गों का अकेलापन ये एक विषय है, साथ ही जैसे मैंने बच्चों का जिक्र किया तो बातें हल्की फुल्की, तो इसमें छोटे बच्चों की शरारतें, तो छोटे बच्चे जो इतने शरारती होते हैं, तो बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने इस विषय पर कमेंट्स लिखे भी हैं, पर उन्होंने आमतौर पर बच्चे शरारती होते हैं इस बारे में लिखा है, पर आपके घर में भी अगर शरारती बच्चे हैं तो उन्होंने क्या शरारती की है? कभी कभी ऐसा था ना राजुल जी कि उन्होंने किसी कुर्सी में है ना अपना सिर फंसा लिया है,
0: हाँ,
1: या फिर उन्होंने जो सीढ़ी के बगल में जो ग्रिल लगी होती है उसमें अपना पैर फंसा लिया है, या फिर बहुत सारी कोल्ड क्रीम है वो सर में लगा ली है, लिपस्टिक मम्मी
0: एक
1: के
0: एक संदेश मैंने ऐसा पढ़ा था कि उसने खूब सारी कोल्ड क्रीम पोत ली थी।
1: हाँ, तो
0: तो
1: ऐसी शरारतें होती है, कभी कभी हम परेशान भी हो
0: अरे
1: जाते
0: कुछ
1: हैं।
0: बच्चे तो वो जो रसोई के बर्तनों से खेलते हैं,
1: हाँ
0: और उसके बाद पता चला कि बर्तन तो आप ढूंढ रहे हैं, उस समय चिमटा ढूंढ रहे हैं या कुछ ढूंढ रहे हैं, और वो
1: उनके
0: पता चला
1: खिलौने में
0: खिलौने की बास्केट में पड़ा हुआ है।
1: और कभी कभी बच्चे ऐसी शरारतें करते हैं जो हमें तकलीफ में ले जाते हैं, जैसे कि पैसा निगल लिया है, सिक्का
0: हाँ,
1: निगल लेते हैं। तो इस तरह की शरारतें आपके घर में क्या हुई है वो हमें लिखकर भेजिए। साथ ही उद्यमी महिला के बारे में हम जानकारी देते हैं हर मंगलवार को, तो आज हमने चुना है अदिति गुप्ता को, और साथ ही मोहरों की दुनिया, इसमें पानी पानी होना
0: ऊपर से पानी पानी हो रहा है आसमान, और हम पानी पानी होने की बात करेंगे जब स्थितियां ऐसी हो जाती हैं। और आज हम छोटे बच्चों की शरारतों के बारे में भी बात कर रहे हैं, तो मतलब
1: जी
0: कई बार स्थितियां ऐसी भी हो जाती हैं कि उनकी शरारतों के सामने वो कुछ ऐसी बातें कह देते हैं कि हम पानी पानी हो जाते
1: माता
0: हैं।
1: पिता पानी पानी हो जाओ, यानी यूं कह लीजिए राजुल जी कि वो हमारी पोल खोल देते हैं
0: पोल खोल देते हैं, सही
1: सबके।
0: बात है। वैसे ये सब जो बातें होती हैं ना, इनके बीच में अगर थोड़ा थोड़ा गीत भी चलता रहे तो
1: तो मजा आ जाता है।
0: मजा आ जाता है।
1: सुनते हैं गीत।
2: अरे अरे ए,

0: भाई सोनाली अपनी सवारी तो चल दी है और चलते चलते पहुंच गई है वहां पर जहां पर हम उद्यमी महिला के बारे में बताते हैं।
1: यानी झारखंड पहुंच गए आप।
0: हाँ।
1: तो झारखंड से है अदिति गुप्ता, जो भारत की उन प्रेरणादायक महिलाओं में से एक है जिन्होंने महामारी से जुड़ी हुई झिझक और गलत धारणाओं को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। इन्हें मेंस्ट्रुअल पीरियड्स कहते हैं, महामारी कहते हैं, मासिक धर्म कहते हैं। इस बारे में लोग खुलकर नहीं बात करते,
0: टैबू है ये एक, और इस बारे में ज्यादातर लोग खामोश रहना। एक जमाना था जब नहीं बताया जाता था, कहते भी नहीं थे। उन्होंने ही महिलाओं और किशोरियों के मासिक धर्म और स्वच्छता जागरूकता पर काम किया और इसे शिक्षा और संवाद का विषय बताया। मतलब ये शर्माने की, घबराने की, मुंह छिपाने की या सबसे कोने में बैठकर की बात नहीं है, बल्कि ये अपने शरीर के प्रति जागृत रहने की, सचेत रहने की और इससे जुड़ी जितनी सतर्कताएं हैं उन्हें इस्तेमाल में लाने की चीज है, ये बताने वाली हैं अदिति गुप्ता। बाकी बहुत बड़ा काम है
1: और ये तो बहुत नेचुरल प्रोसेस है ना। और महिलाओं को यानी बच्चियों को ये हम उस बारे में डरा देते हैं या कुछ बुरा बुरा कह देते हैं, बल्कि उन्हें इस बारे में बताना चाहिए कि जब पीरियड्स आते हैं तभी कोई महिला माँ बन सकती है। तो ये प्रकृति का दिया हुआ उपहार है, बल्कि हम उसे कहते हैं अभिशाप समझ बैठते हैं कि अरे क्या हमारे नसीब में है, पर उसे बहुत अच्छे से, बहुत प्यारे अंदाज के साथ अगर हम बच्चियों को समझाएं तो ये बहुत वरदान साबित तो हो ही चुका है, तो उसे हम बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं
0: और शरीर की एक आवश्यक क्रिया है
1: जी। तो अदिति गुप्ता का जन्म झारखंड में हुआ था। बचपन से ही उन्होंने देखा कि कई लड़कियां मासिक धर्म को लेकर सही जानकारी के अभाव और सामाजिक संकोच का सामना करती है और इस विषय पर घर और समाज में खुलकर बात नहीं की जाती, जिसके कारण कई सारी लड़कियों में डर और भ्रम पैदा हो जाता था।
0: और अपने जीवन के इन्हीं अनुभवों से अदिति को ये समझ में आया कि केवल चुप रहने से समस्या खत्म नहीं होती, बल्कि सही जानकारी से और इस बारे में बात करके, इस बारे में जानकारी पहुंचा कर ही बदलाव लाया जा सकता है। वैसे उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और बाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन से डिजाइन की शिक्षा प्राप्त की,
1: लेकिन उनकी रुचि केवल करियर बनाने तक सीमित नहीं रही राजुल जी, बल्कि वे समाज की वास्तविक समस्याओं को समझकर उनका समाधान खोजने में विश्वास रखती थी और इसी के मद्देनजर उन्होंने मेंस्ट्रुपीडिया नामक कॉमिक बुक की शुरुआत की।
0: अपने पति तुरहिन पाल के साथ मिलकर उन्होंने मेंस्ट्रुपीडिया की शुरुआत की थी और इसका उद्देश्य था कि लड़कियों को मासिक धर्म के बारे में सरल भाषा में वैज्ञानिक और सही जानकारी मिल सके।
1: अब सरल भाषा बच्चों के लिए यानी छोटी बच्चियों के लिए कॉमिक से बढ़कर क्या होगा?
0: क्या होगी, बहुत अच्छी पहल है
1: जी। तो उन्होंने कॉमिक बुक, चित्रों और आसान तरीके से समझाने वाली सामग्री का उपयोग किया ताकि किशोरियां बिना डर बिना झिझक के इस विषय को समझ सके।
0: और इनके प्रयासों से कई परिवारों और स्कूलों में इस विषय पर बातचीत को बढ़ावा मिला। अदिति ने यह संदेश दिया कि स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर जानकारी छिपाने के बजाय जागरूकता फैलानी चाहिए
1: जी। और उनका काम केवल महिलाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने समाज को ये सोचने के लिए प्रेरित किया कि किसी भी समस्या को समझने और हल करने के लिए संवाद का होना कितना जरूरी है।
0: बिल्कुल। और

0: आदिति गुप्ता को उनके सामाजिक कार्यों के लिए कई मंचों पर सम्मान मिला। उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों में अंडर 30 की सूची में स्थान मिला और वो बीबीसी की प्रभावशाली महिलाओं की सूची में भी शामिल रही।
1: और अदिति गुप्ता का जीवन बताता है कि समाज में परिवर्तन लाने के लिए किसी बड़े पद की आवश्यकता नहीं होती, एक छोटी सी समस्या को गंभीरता से समझकर सही दिशा में प्रयास करके बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। और अदिति गुप्ता ने एक ऐसे विषय पर आवाज उठाई है राजुल जी, जिस पर लोग चुप रहते थे, उनकी सोच ने चुप्पी को जागरूकता में बदल दिया।
0: और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये जागरूकता आई तो कम से कम बच्चियों में ये एक विश्वास आया, क्योंकि बहुत सारे घरों में अभी भी ये होता है कि इन दिनों ये छूना नहीं है या दूर रहना है, या बहुत सारे घरों में अगर बेटे भी हैं तो ये बताया जाता है कि अभी ये गंदी हो गई है
1: या चिड़िया ने छू लिया।
0: हाँ, तो इस तरह की बातें सुन के बेटों के मन में पहले से बात आती है कि ये गंदी होती है, ये गंदी, मैं गंदा नहीं होता हूँ,
1: ये गंदी।
0: तो एक चीज वो जो वैषम्य पैदा होता है वो भी एक उन्होंने दूर करने की कोशिश की है, तो ये बहुत बड़ी बात है और इस विषय पर बातचीत होने लगी है। अब देखो ना, हमारे कार्यक्रम में एक ब्रेक लेने का वक्त हो गया है,
1: तो लेते हैं ब्रेक।

0: तो सोनाली, पूरा हुआ अंतराल और हम लौट आए हैं। विषय हम लोग बहुत गंभीर था जिस पर बात कर रहे थे,
1: जी
0: मासिक धर्म की बात कर रहे थे, तो आप कुछ कह रही थी इसके बारे में।
1: जी राजुल जी, ऐसा है ना कि इसके पीछे भी जैसे पुराने जमाने में आपने जैसे कहा कि महिलाओं को दूर बिठाया जाता था या फिर घर में छूना नहीं है, तो उस जमाने में काम भी महिलाएं बहुत भारी भरकम किया करती थी। जैसे कुएं से पानी निकाल कर लाना है, फिर चक्की से आटा पीसना है, फिर खेतों में काम करना है, तो उस वक्त महिलाओं को थोड़ा आराम की जरूरत होती थी, इसलिए उस जमाने में इस तरह से उन्हें अलग बिठाया जाता था। पर अब हम हल्का फुल्का काम करने लग गए, फिर भी हम उन्हीं बातों को, उन्हीं रूढ़ी वादी बातों को लेकर चले हैं। और तो और स्वच्छता के प्रति भी हम जागरूक नहीं है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि उन दिनों में नहाना नहीं है, पर कितनी गलत बात है। उस वक्त स्वच्छता का, हाइजीन का तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, तो हमें रोज नहाना चाहिए, नहाना चाहिए, स्वच्छता का कपड़े बदलना चाहिए और जो पैड्स वगैरह उसे भी समय समय पर बदलना।
0: और अब तो इसके विषय में सरकार की तरफ से भी, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी बहुत पहल हो रही है, मुफ्त में पैड्स गांव में दिए जाते हैं। और एक बात और है, ये भी कहा जाता है, जब कई बार कोसते भी देखा है, पढ़े लिखे बच्चियों को भी इस बात को कोसते हुए देखा है कि अरे ये क्या है, तो ये वो समय होता है जब कहा जाता है कि स्त्री सबसे ज्यादा, उसके अंदर जो शक्ति शक्ति कहा जाता है ना, तो शक्ति उसके अंदर सबसे ज्यादा इस समय होती है। और इस बारे में कई, अगर हम गौर से देखें तो बहुत सारे हमें उदाहरण और कई सारी ऐसी रीतियां भी मिल जाएंगी जो इस बात को बिल्कुल
1: प्रूव करती हैं,
0: प्रूव करती, प्रमाणित करती हैं कि भाई ये बहुत खास समय होता है। तो इस खास समय को खास तरीके से बिताने के लिए अलग बिठाया जाता था, ना कि इसलिए क्योंकि गंदे हो जाते हैं। तो गंदगी की यहाँ पर सिर्फ तभी तक रहती है जब तक हम नहाते नहीं हैं या कुछ भी दूसरी तरह की गंदगी से अपने आप को साफ करने की कोशिश करते हैं, तब गंदगी नहीं रहती। जब हमें कहीं पर आराम करने के लिए छोड़ा जाता है या अच्छे से खाने के लिए कहा जाता है, बहुत जगह ये भी होता है,
1: उस वक्त हमें पौष्टिक आहार लेना चाहिए, बहुत आराम करना चाहिए। इस तरह से हम देखभाल कर सकते हैं अपने घर वाली, जो घर की जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, उन्हें इस तरह से आराम दिया जा सकता है, ना कि उन्हें घृणा की दृष्टि से देखा जाए और उन्हें इस तरह से व्यवहार किया जाए कि अरे दूर रहो, छुओ ना, बल्कि उन्हें बहुत आराम और बहुत प्यार से उस वक्त अगर संभाले तो ये दिन भी बहुत आसानी से निकल जाते हैं।

0: चांद कहाँ खोया है ये ढूंढने भी कुछ बच्चे बहुत जिद करते हैं। जब अमावस्या होती है या जिन रातों में चांद नहीं निकलता, तो कई बार ऐसा भी होता था कि जैसे मेरे घर के पड़ोस में एक छोटा बच्चा था, तो वो ये बात कहता था कि आप तो कहते हो कि रोज चांद निकलता है, रोज सूरज और चांद तो रोज आते हैं। देखो तुम्हें भी जैसे हम लोग बच्चों को बताने के लिए कहते थे ना कि देखो भाई सूरज चांद रोज समय पे आ जाते हैं, तुम्हें
1: तुम
0: भी सब
1: समय से
0: काम।
1: जाया करो ट्यूशन
0: हाँ,
1: स्कूल।
0: तो उसने कहा कहाँ आते, देखिए चांद तो आ जाया ही नहीं है। तो भाई हमने कहा ये हाजिर जवाबी बच्चों की तो बिल्कुल पानी पानी ही कर देती है।
1: ये जो बच्चे होते हैं हमें बहुत बार शर्मसार कर जाते हैं। ये आज बच्चों की शरारतों के बारे में हम बातें कर रहे हैं, बातें हल्की फुल्की में। तो इसमें एक सखी ने हमारे लिखा है कि मेरे बेटे ने 4 साल का था तब एक कप में मिस्त्री लोग काम कर रहे थे, केरोसिन तेल रखा था, वहां पहुंच गया उसके पास और उसने केरोसिन तेल पी लिया पानी
0: अरे
1: समझ
0: बाप
1: कर।
0: रे।
1: फिर उसको हम लोग को अस्पताल लेकर भागना पड़ा, 2 दिन अस्पताल में भर्ती रहा, फिर ठीक हो गया। यानी देखिए कितने परेशान हो जाते हैं ना माता पिता दादा दादी जब इस तरह से बच्चे ये कर देते हैं। और एक लिखते हैं कि छोटे बच्चों की शरारतें, छोटे बच्चों की शरण हमारे जीवन में खुशियां भर देती है, उनकी शरारती जब याद आती है तो आप ही चेहरा खिल उठता है। मेरा नाती 2 साल का है, वो सारी छोटी छोटी चीजें छोटी जगह पर छिपा देता है, उसे याद भी रहता है कि कौन सी चीज उसने कहाँ रखी है। पूछो तो बताता है कि जब मैं गुस्सा करती हूँ तो मुझसे कहता है कि नानी मैं पुलिस बोल रहा हूँ, प्रिंस नाम है, और मुझे डांट लगाओगे तो आपको जेल में बंद कर दूंगा।
0: अरे
1: मैं कहती हूँ तुम नानी कहकर किसे बुलाओगे, तो कहता मैं पहले दरवाजा खोलूंगा फिर आपको नानी कहकर बुलाऊंगा फिर बंद कर दूंगा। बहुत ही लटके झटके से बोलता है, बच्चे तो बच्चे होते हैं, घर भरारा भरा रहता है। हमें सुन के ही इतनी हंसी आ रही है।
0: हाँ, तो
1: तो
0: इनके
1: और
0: मतलब
1: जो
0: इन्हें तो डांटना भी

0: मुश्किल हो जाता होगा। एक संदेश में बताया है कि हमारे पड़ोस में रहने वाले दंपति का बेटा अंशु भी बहुत शरारती है। अभी वो 3 वर्ष का है, उसने अभी साइकिल चलाना सीखा है और उसके दादाजी ने छोटी सी सुंदर साइकिल खरीद कर दी है। कुछ दिन पूर्व वो अपने मम्मी पापा के साथ नाना नानी के घर गया था, तो अपनी साइकिल की चाबी अपनी दादी के तकिए के नीचे छुपा कर गया था और दादी को पोल कर गया था कि दादी ध्यान रखिएगा कहीं दादाजी उसकी साइकिल लेकर ऑफिस ना चले जाए।
1: कितनी मासूमियत है कि उन्हें ऐसा लगा कि इतने लंबे चौड़े इतने ऊंचे दादाजी इतनी छोटी सी ट्राइसिकल कैसे चलाएंगे। हाँ, हाँ।
0: और कितना ये भाव भी होता है ना बच्चों में कि ये मेरी चीज है,
1: हाँ
0: ये पता नहीं अभी ये ले लेंगे
1: नहीं। और उन्हें ऐसा लगा ना कि पापा के पास में बाइक है या कार है या फिर मम्मी के पास तो पूरा किचन है, उनकी सारी चीजें मम्मी की, तो ये मेरी साइकिल है या मेरे खिलौने ये मेरे हैं।
0: बिल्कुल।
1: एक साथी ने लिखा है कि मेरा बेटा जब छोटा था तो पूरा दिन उधम मचा कर रखता था। छोटे बच्चों की शरारतें घर आंगन में हंसी खुशियां बिखेर देती है और उनकी मासूम हरकतें नटखट बातें और भोली मुस्कान सभी का मन मोह लेती है। कभी वो खिलौने बिखेर देते हैं तो कभी नई नई बातें सीख कर सबको चौंका देते हैं। उनकी शरारतों में मासूमियत छिपी होती है, इसलिए उन्हें प्यार और सही मार्गदर्शन के साथ समझना चाहिए।
0: और एक हमारे साथी ने एक बड़ी खतरनाक समस्या की तरफ इशारा किया है कि भाई आजकल तो छोटे बच्चों में भी इंटरनेट ने अपने गिरफ्त में ले लिया है और इसके चलते अपनों के आज्ञाओं का उल्लंघन सार्वजनिक रूप से ही देखा जा रहा है और उनके शैतानी भरी शरारत से ना ही उनकी आंखों पर ही चश्मे चढ़े हुए हैं और हम लोग अपने आंखों पर चश्मे चढ़ाए हुए हैं। जाने कैसा ये आश्चर्य है जो उनके द्वारा किए जाने वाली शरारतें ही अब स्क्रीन पर ही देखा जा सकता है। मतलब वो वही शरारतें कर रहे हैं जो वो देख रहे हैं।
1: वही एक साथी लिखते हैं कि बच्चों की शरारत बेहद पसंद आती है, तो कभी हंसी भी आ जाती है, तो कभी कभी नाक में दम भी हो जाता है, तो कभी माहौल एकदम खुशनुमा हो जाता है। हमारे घर में कई छोटे बच्चे थे, एक बार VCR के अंदर उन लोगों ने न्यूज़पेपर के छोटे छोटे टुकड़े करके उसमें डाल दिए। अब VCR चलना बंद हो गया। जब मैकेनिक को बुलाया तो उसने इतने सारे कागज निकाले, पूछने पर किसी ने भी नहीं बताया कि किसने काम किया था।
0: सच में ये शरारतें तो खत्म होने का मतलब
1: नाम नहीं लेती
0: और लगता है कि चलती भी रहे, बाद में याद करके कितनी हंसी आती है। अच्छा, अब एक मुस्कुराहट और सज जाएगी अगर हम एक गीत सुन लें।
1: सुनते हैं गीत।
2: मेरी

0: सोनाली, ब्रेक पूरा हुआ और हम लौट आए हैं ब्रेक के बाद।
1: कार्यक्रम है सखी सहेली। और एक साथी ने लिखा है कि बचपन में मैंने भी एक शरारत की थी। 1960 के आसपास हमारे घर बिजली का कनेक्शन आया था और उन दिनों कुतूहल वश वायर से जुड़े होल्डर में लैंप लगाकर वायर को सीधा प्लग में डालकर स्विच ऑन करके जो स्पार्क हुआ उससे मेरी उंगली को झटका लगा। पर चीखने के बाद मेरे बड़े भैया ने स्विच ऑफ कर मुझे छुड़ा तो लिया, लेकिन उंगली पर स्पार्क के निशान के साथ काली पड़ गई थी उंगली, और ऊपर से डांट के साथ मार भी पड़ी थी वो भी झटका अलग से लगा था। साथ ही एक साथी ने लिखा है कि खुद को ट्रंक के अंदर, वुलन कपड़े का जो ट्रंक होता है उसमें सारे कपड़े निकाले और खुद को ट्रंक के अंदर बंद कर
0: ये
1: दिया।
0: बहुत खतरनाक शरारत होती है जो बच्चे करते हैं, क्योंकि कई बार इससे उनकी जान को भी खतरा हो सकता है, चोट भी बहुत गहरी लग सकती है। एक बड़ी मासूम सी शरारत हमारे एक और साथी ने साझा की है कि सर्दियों के दिन में हमारे घर में परिवार और बच्चे आए थे। वो देख रही थी कि सभी बॉडी लोशन और क्रीम का प्रयोग अपने शरीर पे करते हैं। उसने अपने टेडी बियर को पूरा कोल्ड क्रीम निकाल कर टेडी लगा दिया, और बहुत बहुत ज्यादा लगा देने पर उसे संभाला नहीं तो उसने उसे बेड के नीचे छुपा दिया। घर में महक आ रही थी और जहाँ फर्श पर भी गिरा तो पैर में चिपक रहा था। तो बच्ची की बड़ी बहन ने बताया कि इसने कुछ किया है, तो पूरे बेड पर उसने फैला दिया था। जब उसकी माँ ने डांटा तो बोली कि टेडी को ठंड लग रही थी तो इसलिए उसे मालिश कर रही थी, जैसे नानी मुझे करती है तो मैं टेडी को कर रही थी। तो फिर उसे समझाया गया कि भाई तुम डैडी को मत करो, तुम बच्ची हो, तुम्हारी मालिश होगी, तुम नाना नानी की कर दिया।
1: कितना कितना मासूमियत भरा सवाल था और जवाब भी बड़ा ही मासूमियत भरा था। एक ने लिखा है कि एक बच्चा बहुत देर से एक घर की बेल बजाने की कोशिश कर रहा था लेकिन पहुंच नहीं पा रहा था, तो हमने सोचा कि उसकी मदद कर दे, हमने बेल बजा दिया। फिर बच्चों को वॉशरूम जाना था तो बोला अंकल अब भागो, वो घर का मालिक आ जाएगा तो हमें बहुत डांट देगा। यानी उन्हें ऐसा लगा कि किसी उसे जाना है अंदर, तो बच्चा तो शरारत कर रहा था। उसके बाद में एक ने लिखा है कि मेरे बहन के छोटे बेटे ने उनके घर के बोरिंग यानी बोरवेल में पाना, पंचेश और ना जाने सारे औजार उसमें डाल दिए थे और सारे नए खरीदने पड़े।
0: क्या क्या तो गजब गजब शरारते हैं। और बच्चों की

0: ये जो मासूम शरारतें होती हैं इन पर बिगड़ते भी हैं हम कई बार, लेकिन अगर इन्हें अगर इससे कोई नुकसान नहीं हो रहा है तो उन्हें ये शरारत करने देनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं शरारतों से उनके दिमाग का भी विकास होता है, उनके व्यक्तित्व का भी विकास होता है, और वो मिलजुल कर या किसी कठिन समय में अपने आप को कैसे निकालना है ये
1: जी
0: भी सीखते हैं। तो बस नजर रखनी पड़ती है बच्चों पे कि क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि एक बच्चा था, नया खिलौना जैसे ही उसको मिला तो वो तुरंत उसका सब ऊर्जा
1: खोल लिया
0: पुर्जा बराबर कर देता था।
1: उसने।
0: उसको बहुत शौक था मोटर कार का, हेलीकॉप्टर का, तो बस वो देखते ही तुरंत उसको
1: खोल
0: उसको
1: देता
0: चाहिए
1: था।
0: पेचकस, पेचकस से उसने तुरंत खोला वोला और सब अलग। तो भाई लोग कहते थे कि क्या करना है तुम्हें, तो कहता था मैं कोशिश कर रहा हूं मैकेनिक बनने की, और बाद में आगे चल के वो वास्तव में
1: बहुत बड़ा इंजीनियर
0: इंजीनियर बना।
1: जी।
0: तो
1: तो
0: भाई ये कुछ
1: यानी
0: चीजें
1: उन्हें
0: होती हैं।
1: रोके टोके मत कि आपको लगता है कि भाई इतना महंगा खिलौना खरीदा और इसने तो दूसरे दिन तोड़ दिया, पर क्या पता उसकी जो क्रिएटिविटी है उससे उसे एक दिन बहुत बड़ा इंसान बना दे। साथ ही जो बच्चे ना क्रेयॉन होते हैं ना उससे दीवारें गंदी करते हैं, तो बहुत सारे लोग डांटते हैं, पर उन्हें डांटे ना एक छोटा सा कोना उन्हें दे दे, क्योंकि क्या होता है ना जो क्रेयॉन उंगलियों में पकड़ते तो उनकी उंगलियों के मसल मजबूत होते हैं, तो उन्हें गोदने दीजिए। ऐसा नहीं है कि हाँ पूरा ही घर गंदा मत करने दीजिए, पर उन्हें कह दीजिए कि ये जो है ना ये कोना तुम्हारा है, जहां जो या फिर व्हाइट बोर्ड आते हैं, ब्लैक बोर्ड आते
0: वो
1: हैं
0: लगा सकते
1: वो
0: हैं,
1: लगा सकते
0: बिल्कुल
1: हैं, या फिर ऐसे इसको
0: कागज लगा दे, एक जो बड़े बड़े चार्ट पेपर्स आते हैं वो
1: हाँ वो
0: लगा
1: लगा
0: दे, और
1: दे।
0: कहें कभी कभी कोई कोई आए तो दिखाए भी कि देखिए भाई ये इसने बनाया है, देखिए कितना सुंदर बनाया है। बच्चों की अगर इस तरह से तारीफ भी करते रहें कि गोदने वाले बच्चे, ये गोदने वाली शरारतें बहुत होती हैं,
1: बहुत
0: तो
1: होती है।
0: बस ये कह दिया जाए कि भाई देखो तो कितने सुंदर सुंदर इसने कलर्स, देखा आपने कैसा इस्तेमाल किया है, तो बच्चे को लगता है कि हाँ कुछ बड़ा काम किया, और अगली बार जब वो गोदना शुरू करता है तो उसका ध्यान उन रंगों पर भी जाता है, कहीं ना कहीं उसके अंदर की वो रचनात्मकता विकसित हो रही है।
1: पर एक बात और है कि अगर उसने कुछ गलत शरारत की है, जैसे कि कैंची से काट दिया है, खुद के बाल ही काट देते हैं कभी कभी, कभी तो पलकों के बाल भी काटने से नहीं चूकते हैं
0: या
1: बच्चे,
0: छोटे भाई बहनों के काट देते
1: हाँ,
0: हैं।
1: तो उसकी ना बहुत बार बार लोगों को बता बता के तारीफ ना करे, तो उन्हें लगता है मैंने तो बहुत बड़ा तीर मार दिया। तब उन्हें समझाए कि भाई अगर ये आंख में लग जाती तो आंख हमेशा के लिए चली
0: चली
1: जाती,
0: जाती।
1: तो ये इन बातों का हमें बस ध्यान रखना
0: हाँ
1: चाहिए।
0: मतलब ऐसे चुभने वाली चीजें बच्चों की पहुंच से दूर ही रहे तो अच्छा है, नरम नरम से खेल, अच्छे अच्छे खिलौने, ये सब देकर बच्चों का बचपन ऐसा ही बना रहे जैसे कि
1: ये गाने में है।
0: हाँ।

0: सोनाली, देखिए शरारतों की बात चल रही है तो कैसे कैसे कच्चे चिट्ठे खुल रहे हैं। हमारी एक सखी बता रही है कि मेरा बेटा जब 6 साल का था तो एक दिन अकेले खेलते हुए किचन के स्लैब के नीचे छुप गया और सो गया। कुछ देर बाद जब उसके दादा दादी उसको ढूंढने लगे तो वो सोने के कारण रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। वो घबरा गए। मैं दूसरे शहर में थी, मुझे पता चला तो मैंने सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग में चेक किया तो पता लगा जनाब कहाँ छुपे थे। मैंने तुरंत उसके दादाजी को कॉल किया। जब वो वहां गए तो पता चला कि सो रहा है आराम से। खैर, जान में जान आई।
1: यानी दादाजी नाना जी रहे तो
0: हाँ
1: उसका भी कितना फायदा है ना।
0: बिल्कुल, मतलब बच्चों की शरारतों के बीच में एक अंकुश भी रहता है। वैसे दादा दादी को भी अच्छा लगता है,
1: और एक है
0: अकेलापन
1: ना,
0: नहीं
1: ये
0: लगता।
1: नहीं, परिवार में पुल का काम करते हैं ना, ब्रिज का काम करते हैं,
0: बिल्कुल
1: कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो दादा दादी ब्रिज का काम करते हैं कि उनकी बदौलत पूरा परिवार जुड़ा रहता है।
0: मूल से सूद ज्यादा प्यारा
1: प्यारा
0: होता
1: होता
0: है
1: है।
0: कहा भी जाता है। तो भाई वो अपने बच्चों को प्यार भी देते हैं, भरपूर प्यार भी देते हैं, और जो अनुभव होता है ना उनका अपने बच्चों को पालकर वो भी काम आता है।
1: बहुत काम आता है, पर अभी परिस्थितियां थोड़ी विकट
0: अलग हो
1: होने
0: गई
1: लग
0: है।
1: गई है।
0: हाँ
1: एक साथी लिखते हैं कि बुजुर्ग दादा दादी नाना नानी के साथ हम बहुत समय बिताते थे, अभी बच्चों में शायद वैसा समय नहीं है और न ही उतने शौक है उनसे कहानी सुनने के, किस्से सुनने के। सब कुछ तो उनको फोन में और टीवी में मिल जाता है, दादा दादी के साथ समय बिताना पसंद भी नहीं आता उन्हें। इसका नतीजा ये होता है कि अधिकतर बुजुर्ग अकेलेपन में ही समय बिताते हैं, जबकि बुजुर्गों के पास तो सजीव अनुभव और ज्ञान होता है, संस्कार देने की काबिलियत होती है और सोशल मीडिया अब टीवी से जुड़ गए हैं। उस जमाने में कहाँ था सोशल मीडिया और टीवी।
0: बिल्कुल
1: तो ये एक थोड़ी सी समस्या है, परेशानी है ये।
0: परेशानी है। और इस बारे में हमारी एक सखी लिख रहे हैं कि आजकल के समय में ये बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि परिवार बहुत छोटे हो गए हैं। हमारे घर में ये समस्या नहीं है, हमारा संयुक्त परिवार है, 13-14 लोग अभी साथ में हैं, तो बड़े बुजुर्गों को अकेलेपन की भावना नहीं आती है, चहल पहल हमेशा रहती है। मुझे लगता है कि एकल परिवार भी एक कारण है अकेलेपन का।
1: बहुत ही बड़ा कारण है अकेलेपन का, एकल परिवार। और सच मुझे ना, पुराने जमाने की बात की जाए ना राजुल जी, तो उस वक्त प्राइवेसी नाम की ऐसी चीज ही नहीं हुआ करती थी जो आजकल लोगों को चाहिए। लोगों को बस लगता है कि हमें बस हमारा स्पेशल यानी बेडरूम, उसमें अटैच टॉयलेट बाथरूम उनका हो, उसमें किसी को डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, बच्चों को भी सब प्राइवेसी की जरूरत है। पर पुराने जमाने में सब एक दूसरे की चीजें इस्तेमाल करते थे, एक घर में रहते थे, लड़ते झगड़ते भी थे पर फिर एक हो जाते थे, तो एक बहुत सुंदर दिखता था ऐसा घर। पर अभी ये थोड़ा सा इसकी कमी नजर आ रही है। एक साथी लिखते हैं कि बुजुर्ग अगर घर में है तो ये बात का सबसे हमें ध्यान रखना चाहिए कि उनके पास थोड़ी थोड़ी देर जाकर समय देना चाहिए, बैठना चाहिए, उनकी जरूरत का ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ हमारी सेवा और समय ही नहीं, उन्हें हमारा थोड़ा सा प्यार भी दे देना चाहिए तो वे बड़े खुश हो जाते हैं।
0: हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि जब रेडियो पर आपके कार्यक्रम सुनते हैं तो अकेलापन नहीं लगता। हार्ड कॉपी में किताब पढ़ते हैं जिससे मन के तूफान शांत होते हैं। सोशल मीडिया कम वापरता हूँ, कसरत करके तंदुरुस्त जीवन जीने का प्रयास है। डॉक्टर ने रिपोर्ट्स देखकर कहा खाओ पियो और मौज करो, सादा जीवन, किसी को मदद करने से भी अकेलापन महसूस नहीं होता।
1: क्या बात है। एक साथी लिखते हैं एकल परिवारों में बुजुर्गों का अकेलेपन की समस्या बहुत ज्यादा है। बुजुर्गों का अकेलापन केवल एक भावनात्मक समस्या नहीं है बल्कि उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी गंभीर रूप से प्रभावित करता है। इसके कारण उनमें डिप्रेशन और याददाश्त कमजोर होने की जैसी समस्याएं बढ़ सकती है। उनके इस खालीपन को दूर करने के लिए बातचीत, जुड़ाव और नियमित दिनचर्या बहुत जरूरी है। दो प्यार के

0: बोल, सुविधा सुविधापूर्ण उनकी दिनचर्या, इस उम्र में उनके अकेलापन दूर करने के लिए मेल मिलाप बहुत जरूरी है, जो आजकल बेहद कम हो गया है।
1: और ये एक हमारे श्रोता ने अंग्रेजी में संदेश भेजा है। आई एम अ सीनियर सिटीजन रिटायर्ड फ्रॉम बैंक एंड स्टार्टेड अ न्यू जर्नी इन रेडियो एज आरजे ऑन कम्युनिटी रेडियो, इंजॉइंग अ लॉट। आई लव रेडियो सिंस माई चाइल्डहुड। विविध भारती साथ हो तो बोर होने का सवाल ही नहीं है।
0: क्या बात है।
1: तो भाई, इस तारीफ के लिए शुक्रिया, विविध भारती के साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। और एक बात और इनके संदेश से पता लगती है कि अगर बुजुर्ग कोई अपना शौक डेवलप
0: जो
1: कर
0: रह
1: लेते
0: गया है।
1: हैं, हाँ डेवलप कर लेते हैं उस समय भी, ये सोचकर नहीं कि ये जिंदगी का अवसान है, बल्कि ये एक नया पड़ाव है, एक नई यात्रा है,
0: जी
1: और अगर वो एक कोई शौक अपना शुरू कर लेते हैं तो उससे निश्चित रूप से उन्हें अकेलापन कम महसूस होगा। ये तो सही बात है। एक हमारे पढ़ रही थी तो भी एक संदेश में शायद ये भी कहा गया है कि आजकल बच्चों के पास समय नहीं होता। सही बात है, समय नहीं होता, बड़े जब होने लगते हैं तो कम समय रहता है
0: पर
1: उनके
0: अगर
1: पास।
0: ऐसा है ना कि बच्चे नहीं बात कर रहे हैं, तो बुजुर्ग खुद भी जाके बोल सकते हैं कि कैसे हो बेटा, क्या हाल चाल है, पढ़ाई में ध्यान लगाओ। नहीं तो ऐसा लगता है ना कि अरे वो बात नहीं कर रहे, वो नहीं जा रहे, तो पहल दोनों तरफ से होनी
1: दोनों
0: चाहिए।
1: तरफ से होनी चाहिए। और अगर मान लीजिए कि बच्चे बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, तो अगर बच्चे को उस समय उसको जो चाहिए, मान लीजिए कि बहुत व्यस्त है, पढ़ाई कर रहा है या किसी प्रोजेक्ट में अपने बिजी है, और आप सिर्फ इतनी सहायता कर रहे हैं कि मान लीजिए प्रोजेक्ट बनाने में उसको कुछ काटने की जरूरत है, आप काट कर उसे वो पकड़ा देते हैं, वही बहुत बड़ी बात हो जाती है।
0: उन्हें भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगता है।
1: और हमें गीत सुनना भी बहुत अच्छा लगता है।
0: सुनते हैं गीत।

0: भाई देखो, हमारे एक श्रोता ने अपनी दिनचर्या साझा करके बताया है कि सुबह पूजा पाठ, फिर शिवालय, फिर भोजन, फिर 1 बजे सुरीला सफर सफर, फिर सखी सहेली, फिर 5 बजे फिर आराम, और फिर 5 बजे 5 किलोमीटर वॉकिंग, फिर भोजन, फिर टीवी प्रोग्राम, फिर 5 या 6 घंटे नींद। यही है 70 साल के बुजुर्ग की दिनचर्या।
1: क्या बात है, ये तो किसी 17 साल के जो है ना युवा को भी शर्म आएगी, इतनी परफेक्ट दिनचर्या है आपकी।
0: हाँ, सही बात है।
1: वैसे पानी पानी मुहावरे का मतलब है शर्म से पानी पानी होना। तो हमारे एक साथी ने लिखा है कि पानी पानी होना, इस मुहावरे से एक बात याद आ गई। तब मेरा बेटा बहुत छोटा था और उसे लेकर मैं एक परिचित के घर गई। बातचीत के बाद मेरी परिचित चाय बनाने के लिए उठी तो मैंने बोल दिया मैं चाय नहीं पीती, और मेरे बेटे से पूछा दूध पियोगे, तब भी मैंने मना कर दिया क्योंकि मेरा बेटा भी दूध नहीं पीता था। लेकिन जैसे ही मैंने मना किया, मेरा बेटा तुरंत बोल पड़ा कि मुझे खूब गर्म दूध दीजिएगा। और आंटी सुनिए ना, मेरी मम्मा चाय नहीं कॉफी पीती है। इसलिए मम्मा के लिए कॉफी बना दीजिए। मुझे उस समय बहुत शर्म आई और शर्म से पानी पानी हो गई।
0: ये सही बात है, बच्चे पोल खोल देते हैं,
1: पोल खोल।
0: एक बच्चे ने कहा कि जब उसके पिताजी ने कहा कि भाई हम घर पर नहीं हैं, जाओ क्या दो अंकल आए, क्या दो घर पे नहीं है, तो उसने जाके कहा, पिताजी ने कहा है कि वो घर पर नहीं है। अब मतलब पिताजी बिल्कुल पानी पानी, वो झक मार के फिर बाहर निकले और मिले अपने मित्र से, क्योंकि बच्चे ने बता दिया था कि पिताजी ने कहा है कि हम घर पे नहीं है।
1: एक बार एक व्यक्ति थे, उनके मित्र आए थे, तो उन्हें अंदर से आने में थोड़ा टाइम लग रहा था, उनकी छोटी सी बेटी थी। तो अब क्या बात करें बच्चे से, तो उन्हें पूछा कि बेटा तुम्हारे पापा क्या काम करते हैं, पहले नाम पूछा क्या नाम है आपका, फिर आपके पापा क्या काम करते हैं, तो उन्होंने बताया कि मेरे पापा तो घर में झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, कपड़े धोते हैं।
0: सब पोल खोल दी
1: अंदर से पापा ने सुना, अरे ये मैं तो वो पानी पानी हो गए।
0: अच्छा वो बच्चा भी बेचारा क्या करे, उसने काम का मतलब यही समझा कि हम, माँ कहती होगी कि हम काम कर रहे हैं, तो काम का मतलब झाड़ू लगाना। तो कभी कभी अगर पिताजी ने झाड़ू लगा भी दी तो उसने कह दिया कि ये भी काम करते हैं, ये भी काम करते हैं, मतलब वो तो बड़ा ही कर रहा था।
1: और एक बार ऐसे हुआ कि बैठे हुए थे लोग, तो छोटी बच्ची भी थी साथ में, तो उसकी मम्मी बोले कि चलो टाइम हो रहा है हम घर जा रहे हैं, तो बोले नहीं नहीं मम्मी रुको रुको, अंदर से कप प्लेट की आवाजें आ रही है, शायद चाय बनने वाली।
0: सच में ये स्थिति जो है बड़ी खतरनाक होती है, उस समय माँ बाप को समझ में नहीं आता कि देखें रुके क्या करें। और कभी कभी ये भी कहना पड़ता है भाई बड़ा शरारती है, जैसे कह दे कि कई बार ऐसा होता है कि माएं कहती हैं बच्चा खाता ही नहीं, कुछ नहीं खाता, और इधर बच्चे ने जैसे ही नाश्ते की प्लेट आई और उसने खाना शुरू किया,
1: सब खा लिया।
0: तो ऐसे में एक बात बस यही कहेंगे कि अगर बच्चे हैं तो बच्चे हैं, और हो सकता है कि सामने प्लेट में जो हो वो उन्हें पसंद आ रहा हो इसलिए वो खा रहे हो, तो घर में ऐसा रूल बनाए ना कि बहुत सी बार ऐसा होता ना कि बच्चे, हम बाहर जाके नहीं खाने देते बच्चों को, तो ऐसा रूल अगर आपने बनाया है कि बाहर जाके किसी के यहाँ खाना मत, तो बच्चे का मन फिर मचलेगा।
1: जिसके लिए हम खूब मना करते हैं।
0: हाँ, खूब मना करते हैं, बल्कि इसके बजाय ये कर दें कि भाई अगर बच्चे को कोई चीज पसंद आ रही है, जैसे अगर बच्चे ने, छोटे बच्चे ने, मान लीजिए एक मैंने देखा था कि एक बच्चे घर गया, बच्चे छोटी बच्ची थी उनके साथ, और उन्होंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लाकर उसमें रखे और उन्होंने कहा कि खाओ। अब जगह ऐसी थी कि जो माँ गई थी तो उसको लगा कि नहीं खाना चाहिए, तो वो उसने एक ले लिया और कुतरना शुरू कर दिया। बच्ची ने एक किशमिश उठाई, माँ ने देखा, फिर दूसरी किशमिश उठाई, माँ ने देखा, फिर तीसरी किशमिश उठाने वाली थी तो उसे लगा कि टोकना चाहिए, फिर उसे लगा कि अगर हम टोकेंगे तो बच्ची को गलत मैसेज जाएगा, तो उसने क्या किया कि कहा कि अच्छा तुम्हें किशमिश अच्छी लग रही है, और दो चार किशमिश बीन कर उसको अलग से दे दी, बच्ची अपना वो खाती रही, और इस तरह से उसको भी पानी पानी नहीं होना पड़ा और बच्ची की भी शरारत या जो बाल स्वभाव है वो पूरा हो गया।
1: और जैसे पानी पानी होने की बात है, इसके तो कई उदाहरण हैं कि कई बार ऐसा होता है ना कि किसी को कुछ चीज खाने की मनाही होती है, और भाई इच्छा तो होती है, अब मिठाई खाने की मनाही है, घर वाले कहने की भाई डायबिटीज है खाओ मत मीठा खाओ, अब बहुत ललचाया हलवाई के यहाँ जाके खा लिया, घर वालों ने किसी ने देख लिया
0: तो पानी पानी हो गए।
1: वैसे लज्जित होना स्वाभाविक सी बात है, पर लज्जित हो गए हैं ना तो उसके बाद में अपराध बोध से ग्रसित नहीं होना है, उसे वही छोड़ देना है कि ठीक है ना।

0: गलती हो जाती है, बड़े हैं बूढ़े हैं कोई भी उम्र के लोग हैं, अगर गलती हो गई है तो उसको हंस के स्वीकार कर ले, उसका दिल पर बोझ ना रखे, उन्हें जिंदगी को हल्के में लेना चाहिए।
1: और देखो हमारे एक श्रोता ने बड़ा प्यारा सा संदेश हमारे साथ साझा किया है कि वो जो विविध भारती के कार्यक्रम होते हैं जिनमें वो अपने संदेश साझा करते हैं, जैसे सखी सहेली या सुरीला सफर, तो उसमें वो अपनी और अपनी धर्म पत्नी के प्रेम के बारे में अगर कभी कुछ संदेश देते हैं तो वो पढ़कर पत्नी पानी पानी हो जाती है शर्म से। वो तो ऑफिस में देते हैं, पत्नी वहां घर में पानी पानी हो जाती है। तो भाई लेकिन ये कितनी सुंदर यादें स्मृतियां आप लोग साथ साथ संजो रहे हैं।
0: सचमुच। और ये यादें हैं ना, ये बहुत सुंदर यादों को हमें संजो कर भी रखना चाहिए कि ये पल ये क्षण जो है फिर से नहीं आते,
1: फिर से नहीं आएंगे। जो बीत गया वो बीत गया, लेकिन हम ये समय नहीं बीतने देंगे, हम गाना सुनेंगे।
0: बिल्कुल सुनते हैं गीत।

0: भाई बड़ी रोचक रोचक बातें हो गई। हम लोगों ने काफी किस्से सुन लिए और उन पानी पानी होने वाली स्थितियों के बारे में भी जान लिया जो कई बार एकदम ऐसा कर देती हैं कि समझ में नहीं आता इधर जाएं कि उधर जाएं, क्या करें कैसे करें।
1: तो बहुत मजा आया, सारे श्रोताओं को दिल से धन्यवाद, इतने सुंदर सुंदर कमेंट्स लिख कर भेजे। तो विविध भारती से जुड़े रहिए और हमें दीजिए इजाजत। तो आप सभी को सोनाली पाठक
0: और राजुल का
1: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: एक जानी मानी शायर, एक जानी मानी गीतकार। वो कहते हैं, खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिश हो तो भीग जाया कर। दर्द हीरा है, दर्द मोती है, दर्द आंखों से न बहाया कर। शकील आजमी जो कहते हैं, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। कई मशहूर फिल्मों के गाने उन्होंने लिखे। आर्टिकल 15 फिल्म मुल्क,
1: सब में है और सब सुनारा,
0: और फिल्म थप्पड़,
2: एक टुकड़ा।
0: जाने माने शायर शकील आजमी से बातें की हैं ममता सिंह ने। ये है इस कार्यक्रम का दूसरा भाग।
3: बेखबर दोस्तों, नमस्कार। रेडियो सखी ममता सिंह की ओर से आज शायरी की दुनिया, गीतकारी की दुनिया और अदब की दुनिया की खास शख्सियत की आमद है विविध भारती के स्टूडियो में, जिन्हें हमने बड़े एहतराम से विविध भारती के स्टूडियो में आमंत्रित किया है। उनका हम इस्तकबाल कर रहे हैं। वो शायर हैं, गीतकार हैं, शकील आजमी साहब। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी बैठ के क्या आसमान देखता है। घटाएं उठती हैं, बरसात होने लगती है, जब आंख भर के फलक को किसान देखता है। यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था, यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था, यही वो शहर जो मेरी जबां देखता है। शकील आजमी साहब, विविध भारती के स्टूडियो में आपका हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार।
4: नमस्कार, बहुत शुक्रिया ममता जी, और बहुत शुक्रिया विविध भारती।
3: इन आपके ही चंद अल्फाज के साथ हमने आपका स्वागत किया, तो हमें बताइए कि ये जो अनुभव सिन्हा जी देर से मिले, लेकिन मिले तो दुरुस्त मिले।
4: हाँ,
3: बहुत सारी फिल्मों की आमद हुई आपकी फिल्में दुनिया में, आर्टिकल 15, भीड़ और इन सब में गाने लिखे, थप्पड़ के सारे गाने आपने लिखे।
4: हाँ, मुल्क के सारे गाने।
3: तो मुल्क के, तो मैं चाहती हूँ कि मुल्क फिल्म का गाना, फिर आर्टिकल 15 का, क्रमवारा आप बताएं और रचना प्रक्रिया बताएं।
4: मुल्क का गाना आप वो सुनाए, पिया समाए।
3: जी,
4: बहुत अच्छा गाना है,
3: बहुत पसंदीदा कव्वाली।
4: हाँ,
3: कव्वाली है।
4: यस यस,
3: कव्वाली की शक्ल में है ये गाना। और हम आपको बताएं कि विविध भारती
4: उसमें हमारा पूरा हिंदुस्तान है उस गाने
3: जी में। बिल्कुल। हाँ, पूरी फिल्म बड़ी बेहतरीन है। हाँ, इसमें अनुभव सिन्हा जी को बधाई जाती है
4: जी,
3: सबकी ओर से, विविध भारती परिवार की ओर से।
4: मैं समझता हूँ कि जो मुल्क फिल्म है
3: जी,
4: ये आर्टिकल 15 है, ये ऐसी फिल्म है जो हमारे हिंदी सिनेमा में, जो ऐसी फिल्में बनी

0: हैं जो याद की जाएंगी,
1: बिल्कुल जिनका जिक्र किया जाए,
0: जिक्र
1: ये
0: किया
1: दर्ज
0: जाए।
1: होती हैं आज के समय में।
0: हाँ, वो ऐसी फिल्मों में ये फिल्में हमेशा जिंदा रहेंगी, जैसे थप्पड़ है, मुल्क है, आर्टिकल 15 है। और मेरी खुशनसीबी है कि मैं इन फिल्मों का हिस्सा हूँ।
1: शकील साहब, ये मुल्क फिल्म की बेहद मकबूल कवाली और विविध भारती से एक प्रोग्राम होता है सुबह चित्रलोक, पहले ये भारत की गूंज के नाम से प्रसारित होता था, इसमें अक्सर हम विविध भारती से प्रसारित किया करते थे और उसमें आपका नाम लेते हुए बड़ा फक्र महसूस होता था कि शकील आजमी ऐसे शायर गीतकार हैं जिन्हें हम निजी तौर पर भी जानते हैं। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि बात अनुभव सिन्हा जी की चली है, तो आर्टिकल 15, भीड़, कई फिल्में हैं आपके खाते में, तो क्रमवार इनका जिक्र करें, रचना प्रक्रिया बताएं इन गानों का। आर्टिकल 15, इंतजारी, जिसे आयुष्मान खुराना ने गाया भी है।
0: जी हाँ जी, इंतजारी सुनवा सकते हैं आप
1: जी,
0: बिल्कुल।
1: तो
0: आर्टिकल 15 से,
1: तो कैसे वो गाना बना, वो बनने की क्या कहानी?
0: उस गाने की कहानी ये है कि
1: कोई दिलचस्प बात हो।
0: हाँ, दिलचस्प बात है। अनुभव सिन्हा साहब ने मुझे ये कहा, कहने लगे यार सिचुएशन मैं नहीं बता रहा हूँ, आप यूं समझ लीजिए कि वो गुलजार साहब का वो एक गीत था, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास
1: पड़ा है इजाजत फिल्म
0: लौटा दो। हाँ, तो इसका उल्टा गाना चाहिए मुझे।
1: अरे क्या बात है।
0: हाँ, उल्टा मतलब कि
1: तो, सामान देना है।
0: हाँ, वो कह रहे लौटा दो।
1: हाँ,
0: और मुझे ऐसा चाहिए कि ले जाओ।
1: हाँ,
0: ठीक है,
1: संचय करना। हाँ, है यहाँ पर।
0: हाँ, तो उसमें जो गाना है वो मैंने लिखा है कि मोहब्बत में जो दो लोगों के आपसी जो मोमेंट्स होते हैं, है ना, हंसी है, गम है, रोना है, मुस्कुराना है ना, साथ में कुछ कहीं खा रहे हैं, कहीं चाय पी रहे हैं, कहीं आइसक्रीम खा रहे हैं, और कहीं किचन में थोड़ा झगड़ लिए हैं, तो ये सारे जितने भी मोमेंट्स हो सकते हैं, तो अब हम बिछड़ गए हैं और मैं इसको अकेला जी रहा हूँ।
1: अच्छा, क्या बात है, ये सारा कुछ एक गाने में आना।
0: हाँ, तुम तो बिछड़ गए हो और खुश हो।
1: हाँ,
0: लेकिन मैं वहां से निकल नहीं पा रहा हूँ। वो साझा जो चीजें हैं हमारी, मैं उसको अकेला जी रहा हूँ और मैं दुखी हो रहा हूँ, तो तुम एक काम करो, ये आओ और इसको ले जाओ। तो ये मैंने एक मतलब स्टोरी बोर्ड बनाया और इसको मैंने शायरी में लिखा और वो इस तरह से गाना बना, इंतजारी
1: जी।
0: हाँ,
1: तो वो शायरी कैसे बनी वो बताइए, मतलब वो शेर अगर याद है तो।
0: हाँ, इसी तरह से बनी वो कि आना आ भी जाना इंतजारी है तेरी।
1: क्या बात है, वाह।
0: ले जा जो रिश्तों की रेजगारी है तेरी।
1: वाह वाह, बहुत सुंदर
0: है ना।
1: तो
0: अच्छा, पहले इसमें ले जा जो रिश्तों की रेजगारी है तेरी, ये लाइन पहले नहीं थी।
1: हाँ,
0: उसमें कुछ खुमारी राइमिंग की लाइन थी।
1: हाँ,
0: तो अनुभव सिन्हा साहब ने कहा कि शकील भाई ये इंतजारी लफ्ज बड़ा यूनिक है, इंतजार होता है, इंतजारी लोग नहीं लिखते हैं। तो हमारे बचपन में हम गांव में सुनते थे, अरे हम तुहरी इंतजारी देखत रहे हैं, है ना, इंतजारी कर नहीं रहे थे, इंतजारी देखत रहे हैं, पुराने लोग बोलते थे। तो अब हमारा जो मुल्क है ना, वो बहुत विशाल, बहुत बड़ा मुल्क है,
1: रंगी है,
0: और बहुत मतलब भाषाएं बहुत हैं, तो कोई भी शब्द कुछ अलग से आता है तो वो कानों को भला लगता है,
1: बिल्कुल,
0: है ना, कुछ नया लगता है। तो मैंने इंतजारी जानबूझ के, और बोले ये इंतजारी और रेजगारी बड़े कमाल, अरे इंतजारी बड़ा कमाल लग रहा है, ये खुमारी जो है इसको चेंज करो यार, कुछ नया लफ्ज ले आओ। तब उसकी जगह पे ये आया, आना आ भी जाना, ये ट्यून पे लिखा हुआ गाना
1: जी,
0: और अनुराग साइकिया ने म्यूजिक किया है इसका। आना आ भी जाना इंतजारी है तेरी, ले जा जो रिश्तों की रेजगारी है तेरी, वो जो हम रोए साथ थे वो सब आके लेके जा। तो वो उसका उल्टा गाना था, जो गुलजार साहब का था ये उसके बरक्स था। तो ये सारा मैंने एक स्टोरी बोर्ड बना लिया कि इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं, और फिर मैंने इसको लिखा और गाना इस तरह से बना।

0: जो गाना हम सुनते हैं बहुत एंजॉय करते हैं हम स्टूडियो में बैठकर और हमारे श्रोता स्टूडियो के बाहर, लेकिन उस गाने के बनने के पीछे कहानियां होती हैं और कई बार मुश्किलात भी होती हैं कि आप जैसे बता रहे हैं कि अनुभव सिन्हा जी आपको दृश्य बता रहे हैं और आप लिख रहे हैं फिर चेंजेस, तो एक कितना आसान नहीं होता है सफर। तो फिल्म मुल्क में जो कव्वाली है बड़ी हिट, पिया समय हम सबका पसंदीदा कव्वाली हम सबकी, इस गाने की बनने की क्या कहानी थी?
1: ये तो बहुत ही मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने, और वो तो चले गए शूटिंग करने। मेरे साथ अक्सर होता है यही, उनकी फिर उनके गानों को लेके कि हाँ हाँ कर लेंगे, और ऐसा फिर वो शूटिंग पे चले जाते हैं और फिर जब जरूरत होती है तब कहते जल्दी करो गाना चाहिए। तो अब वो शूटिंग कर रहे हैं उधर लखनऊ के पास मलिहाबाद वगैरह में, और
0: ये अभी गाना लिख दो जल्दी।
1: हाँ, और हम जो हैं मैं और अनुराग साइकिया ने ये इसका किया था म्यूजिक वो, और
0: थप्पड़ में भी अनुराग साइकिया का संगीत था। हाँ, आर्टिकल 15 में भी
1: थप्पड़ सोलो था
0: और मुल्क में,
1: और मुल्क में एक ही गाना था उनका ये, बाकी प्रसाद साष्ठे ने दो गाने किए थे।
0: जी जी।
1: हाँ, तो हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है, वो रूट पता नहीं चल रहा है कि जाना किधर है।
0: यहाँ पर अनुभव सिन्हा जी का भरोसा भी आप पर अटूट है।
1: हाँ,
0: कि वो गाना देकर चले गए हैं।
1: हाँ, अब मैं फोन कर रहा हूँ कि इसमें लिखना क्या है। अब वो क्योंकि उधर बिजी है शूटिंग में, ध्यान उधर लगा हुआ है,

0: अरे मैं बताता हूँ। अब हम इंतज़ार कर रहे हैं, फिर उनका फ़ोन आया, कह रहे हैं मैंने आपको एक वीडियो भेजा है, वो देख लीजिए आप, सुन लीजिए। मैंने कहा सर आप बताइए ना कि उसमें क्या है और आप क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा कि साइंस ये कहती है कि जब सारे रंगों को हम मिलाते हैं तो सफ़ेद रंग बनता है, सारे रंगों को मिलाने से सफ़ेद रंग बनता है। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है सर?
1: बिल्कुल सही बात है, सफेद रंग तो अपने आप में सफेद रंग है, उसको कोई भी रंग मिलाएंगे तो वो तो दूसरा हो जाएगा।
0: तो हाँ, तो बोले नहीं ऐसे ही होता है, यही थॉट है। और ये गाना मुझे देशभक्ति इसमें होनी चाहिए और कौमी यकजहती होनी चाहिए, ठीक है, पूरा देश एक साथ चलना चाहिए इस गाने में। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने उसको लिखा। मुश्किल गाना था बहुत
1: जी,
0: मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी,
1: बेहतरीन फिल्म थी,
0: डिफिकल्ट सिचुएशन थी जी। तो मैंने लिखा उसमें के पिया समाए जिया में मोरे पिया समाए, ये हुक है, उससे पहले लाइन आती है सात रंग हैं सातों पिया के,
1: सात रंग हैं सातों पिया के,
0: सात रंग होते हैं
1: जी।
0: अब मुझे सफेद पर खेलना है और उसको ऐसा बनाना है उसमें पूरा देश एक साथ जुड़ना चाहिए, ठीक है, सारे समुदाय जो हैं वो एक साथ जुड़ने चाहिए, तो वो सारे जो हैं एक साथ जुड़ने चाहिए। तो अच्छा, अभी इसमें जो पिया है ये वो भी पिया है जो मतलब जो जमीन पे है ना, और वो भी पिया है जो खुदा है, ईश्वर है, भगवान है,
1: खुदा है,
0: हाँ, और महबूब भी है हमारा, ठीक है, डबल मीनिंग है। इस तरह के बहुत सारे लागा चुनरी में दाग और फलाना, वो
1: छुपाऊं कैसे,
0: है ना, घर जाऊं, घर जाने का मतलब वो मरने के बाद की जिंदगी,
1: बिल्कुल,
0: है ना,
1: बिल्कुल, दो अर्थी,
0: तो हाँ, तो ये दो अर्थी ये भी मैंने इसको करके आगे बढ़ाया। सात रंग हैं सातों पिया के, देख सखी कभी तू भी लगा के,
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया।
0: तो ये दूसरे वाले को वो कटाच कर रही है कि तू भी कभी लगा के देख, तुझे भी वो सब पिया के ही लगे
1: रंग दिखाई,
0: हाँ, अलग अलग मत देख, हम सब एक हैं, सात रंग हैं सातों पिया के, देख सखी कभी तू भी लगा के, सातों से मिलके भई मैं उजली,
1: वाह क्या बात है,
0: सातों से मिलके
1: भाई
0: में उजली,
1: वा वा।
0: कोई हरा कोई गेरुआ बताए,
1: क्या बात,
0: पिया समाए जिया में मोरे पिया समाए। अभी देखने वालों की नजर है कि कोई मुझे हरा बता रहा है कोई गेरुआ बता रहा है, लेकिन मैं तो सातों से मिलके उजली हो गई हूँ
1: जी जी,
0: और तू भी लगा के देख कभी। तो ये बड़ा ही मतलब टेढ़ा गाना था और ऐसा वो सटीक आया है, ऐसा कि एक लाइन भी चेंज नहीं हुई, बड़े खुश हुए, बोले आगे बढ़ो।
1: तो ये जो फिल्म है वो एक संदेश देती है, ये गाना भी संदेश देता है, एक सब एकजुटता का संदेश है, और बेहतरीन फिल्म का बेहतरीन गाना ये सुनवाते हैं हम।

0: शकील साहब, अभी आपकी जर्नी के बारे में बहुत सारी बातें करनी है। अब यहाँ हम आते हैं आपकी फिल्म धोखा में। फिल्म धोखा,
1: हाँ,
0: MM करीम साहब ने गाया है और कंपोज भी किया है गाना, इसके बारे में एकदम संक्षेप में बताएं, क्योंकि
1: मतलब आप भट्ट साहब के दरवाजे पर पहुंची
0: पहुंच गए, दस्तक दे रहे हैं, और महेश भट्ट साहब के साथ आपने बहुत सारा काम किया है, और आपकी फिल्मी दुनिया में उनका बहुत बड़ा योगदान, कह ले योगदान भी है, और काफी दोस्ती मित्रता है।
1: हाँ, प्यार रहा बहुत उनका भट्ट साहब का उस जमाने में। तो ये फिल्म उनकी जो बेटी
0: पूजा भट्ट
1: उन्होंने डायरेक्ट की थी, और ये गाना जो है MM करीम साहब के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, मेरे पसंदीदा कंपोजर हैं वो, और उनको हिंदी नहीं आती।

0: ठीक से, है ना। तो भट्ट साहब के ऑफिस में उन्होंने मुझे धुन दी, ट्यून बताई हारमोनियम प्ले करके। मैंने उसको तब वो छोटे वाले जो टेप चलते थे मैंने रिकॉर्ड किया उसमें, और वहीं बैठ के मैंने गाना लिखा वो। और गाना लिखा जब उन्होंने उसको गाना शुरू किया, कहीं कहीं अटके लेकिन फिर वो रवां हो गया। जब उनके मीटर में पूरी तरह से रवां हो गया वो गाना
1: जी।
0: तो मुस्कुराहट उनके चेहरे की बढ़ती गई।
1: क्या बात है।
0: हाँ, वो जो ट्यून में पूरी तरह से वो गाना, तो वो गाना जो है वो पूजा को भी बहुत पसंद था, बहुत खुश थी उस गाने से वो। लेकिन इससे पहले भट्ट साहब के यहाँ मेरी पहली जो फिल्म थी वो थी जहर।
1: हाँ, जिसका गाना बहुत मशहूर हुआ था, फिल्म का गाना, इनकी आवाज, श्रेया घोषाल की आवाज में जो गाना था, अगर तुम मिल जाओ, बहुत बहुत मशहूर हुआ था।
0: जी जी। तो ये गाना दरअसल पाकिस्तानी गाना था, ये उसको यहाँ पर अनु मलिक साहब ने रिक्रिएट किया था। रेशमा की आवाज में भी आपको मिल जाएगा वो गाना, कई लोगों ने गाया हुआ है, पुराना गाना है। और ये फिल्म मोहित सूरी की भी पहली फिल्म थी। मोहित सूरी थे इसके डायरेक्टर, वो भी मतलब उनके भट्ट साहब के भांजे होते हैं
1: जी।
0: और ये फिल्म बड़ी कामयाब रही, इसके सारे गाने सुपरहिट हुए और सारे गामा म्यूजिक कंपनी ने इसके गाने रिलीज किए थे। और हमें जो है वो पहली बार आउटस्टैंडिंग म्यूजिक सेल नाम से हमें ट्रॉफी बांटी गई। उसका एक फंक्शन हुआ, एक तकरीब हुई उसकी, और बड़े खुश थे वो लोग, क्योंकि म्यूजिक बहुत बड़ा हिट था और फिल्म भी हिट हो गई थी। सिल्वर जुबली का भी उसका ट्रॉफी मिला था हम लोगों को
1: जी।
0: तो उसमें गाना था वो के ने गाया था वो, ऐ बेखबर ऐ बेखबर
1: जी जी जी।
0: तो वो भी बहुत बेहतरीन गाना था। और एक गाना वो था जाने जा जाने जा, तुझसे बिछड़ के मैं जाऊं कहां, वो भी बहुत, सारे गाने ही बहुत हिट हुए थे उसके, और बड़ी कामयाब फिल्म रही वो। तो वो पहली फिल्म थी मेरी भट्ट साहब के यहाँ
1: जी। जी, तो यहाँ पर कौन सा गाना सुनवाया श्रोताओं को?
0: आई बेखबर
1: सुनते हैं। हाँ, ये गाना।

0: रूप कुमार राठौड़ के साथ आपने और भी काम किया है, और भी गाने उन्होंने गाए हैं, वो उनके बारे में।
1: हमारी शुरुआत ही साथ में हुई थी
0: जी।
1: रूप कुमार राठौड़ साहब के बारे में मैं बताऊं, जब मैं यहाँ नया नया आया था तो जो कामयाब म्यूजिक डायरेक्टर थे, बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे, वो पकड़ में नहीं आ रहे थे। रूप कुमार राठौड़ साहब से मेरी मुलाकात हुई
0: जी,
1: तो वो गजल सिंगर होते थे
0: जी जी,
1: और प्लेबैक सिंगर भी होते थे
0: जी, बिल्कुल
1: है ना। फिल्मों में उन्होंने कम गाया, लेकिन एज ए गजल सिंगर उनको ज्यादा
0: नाम शोहरत
1: और इज्जत है उनकी। लेकिन कुछ गाने भी उन्होंने गाए हैं और उसमें से कई गाने बड़े हिट हैं, जैसे ऐ जाते हुए लम्हों
0: जी, जी, जी,
1: संदेशे आते हैं, या वीर जारा का गाना है ना। इस तरह के कई गाने हैं जो उनके बड़े हिट हैं। तो जब मैं आया तो मेरी मुलाकात हुई तो वो मेरी गजलें सुनते थे और उसमें से चूज करते थे और गजलों को कंपोज करते थे। लेकिन वो गजल का टाइम भी जा रहा था। जब मैं आया हूँ उससे पहले गजल का एक बड़ा दौर आया था, जिसमें जगजीत जी की गजलें और पंकज उदास साहब की गजलें, हरिहरन साहब, रूप कुमार राठौड़ साहब, मतलब नए गजल सिंगर भी आते थे, उनके एल्बम भी खूब चल रहे थे
0: जी जी।
1: लेकिन जब मैं आया हूँ तो ये दौर खत्म हो रहा था
0: जी जी,
1: गजल का मार्केट डाउन हो रहा था जब मैं आया था। तो मेरे सामने ही वो रूप भाई ने कैफी आजमी साहब का एल्बम किया मेरे सामने, मीर तकी मीर का एल्बम किया मेरे सामने, तो मेरी वो गजलें कंपोज करते थे। अच्छा, मेरे पास कोई बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर नामी नहीं था, तो मैंने सोचा कि रूप भाई इतने अच्छे कंपोजर हैं, तो ये अगर फिल्म के गाने कंपोज करें और मैं लिखूं तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, और उनका नाम भी है। तो मैंने उनसे कहा कि आप फिल्म के गाने क्यों नहीं करते। उन्होंने कहा भाई मैं इसलिए नहीं करता कि लोगों को पता चलेगा दूसरे म्यूजिक डायरेक्टरों को, तो जो गाने गवा रहे हैं वो भी बंद कर देंगे। ठीक है, ऐसा होता है हर प्रोफेशन में। तो थोड़े दिन तक तो वो इस बात पर टिके रहे, और मैं उनके अंदर वो म्यूजिक कंपोजर को, जो फिल्म का म्यूजिक कंपोजर होता है, उसको मैं जगा चुका था, मगर
0: जी जी,
1: है ना, कहीं ना कहीं उनके भीतर भी था वो, क्योंकि हर म्यूजिशियन का वो सपना होता है
0: जी जी,
1: वो म्यूजिक डायरेक्टर बनने का। तो एक दिन उन्होंने कहा चलो ठीक है यार, लाओ मुखड़े कंपोज करता हूँ। तो मैंने लिखने शुरू किए, उन्होंने कंपोज करने शुरू किए, और हमारा आज भी 500 गानों का बैंक है जो हमारे गाने रूप कुमार राठौड़।

0: साहब के बैंक में मेरे लिखे हुए
1: दर्ज है।
0: हाँ, और 400-500 गाने होंगे।
1: बहुत सारे नॉन फिल्म एल्बम भी हैं आपके नाम, एक जोगिया हमें याद आ रहा है।
0: हाँ हाँ हाँ,
1: जोगिया मन, तो वो कैसे बना वो गाना?
0: जोगिया मन तो अभी बात का है, वो एक नया कंपोजर है और बहुत अच्छा सुरीला है, हरीश सगा ने
1: जी
0: उनके साथ किया था मैंने, बहुत अच्छा लड़का है। और हरीश सगने के साथ हमने एक फिल्म की थी, विक्रम भट्ट साहब की एक फिल्म थी, उन्होंने मुझे फोन किया कि शकील भाई मैं फिल्म शुरू कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ आप गाने लिखें, तो मैं गया उनके यहाँ, तो उन्होंने मुझे हरीश सगने से मिलवाया।
1: जी जी।
0: और उनकी एक फिल्म आई थी 1921 जिसमें जरीन खान थी हीरोइन, और वो फिल्म भी बहुत अच्छी चली, हिट हुई पिक्चर, और उसके सारे गाने आप सुनेंगे, बहुत अच्छे गाने।
1: थोड़ा सा हम पीछे क्यों चलते हैं, 2004 में जब आपकी पहली फिल्म आई थी, तो वो फिल्म कैसे मिली आपको, पहली फिल्म तक आप कैसे गए? वो तेरा नाम था?
0: वो तेरा नाम था, बिल्कुल।
1: तो यहाँ मतलब फिल्मी दुनिया में आपका प्रवेश कैसे हुआ? हम तो एंटर कर चुके हैं लेकिन आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि शायरी की दुनिया से फिल्मी दुनिया में एंट्री कैसे हुई आपकी?
0: ये बात तब की है, 2000 का जो सन है उससे पहले की बात है।
1: अच्छा।
0: तब मैं सूरत में रहता था।
1: जी जी।
0: और सूरत से मैं बॉम्बे आता जाता था, पैसे जब तक होते थे यहाँ रहता था, पैसे खत्म होते थे फिर सूरत चला जाता था।
1: अच्छा।
0: फिर पैसे इकट्ठा करता था फिर आता था। तो इस आने जाने में मेरी मुलाकात दिलीप सेन समीर सेन से होगी। हाँ, दिलीप सेन।

0: वाइफ थी और उनके साले, तो इंदर कुमार साहब ने कहा कि यार इसका नाम बदल दो, मदहोशी कर दो, ये जो गाना रिकॉर्ड किए हो ये टाइटल सॉन्ग बन जाएगा। तो इस तरह से मुमकिन हटा के मुमकिन नाम से उसका प्रचार भी शुरू हो गया था, बाद में वो मुमकिन हटा के मदहोशी किया गया। तो इस तरह से वो टाइटल आया वो तेरा नाम था। फिर उसमें मेरे दो गाने लिए गए और उसमें कतील शिफाई साहब का भी गाना है, निदा फाजली साहब का है, मतलब दो बड़े शायर और गीतकारों के साथ मेरी शुरुआत हुई फिल्म में। उसमें एक गाना था जो मेरी जिंदगी का पहला गाना, वो ये था कि सुबह हो रही है, भोपाल का माहौल है, 1947 मुल्क आजाद हुआ है और भोपाल जो है वो मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया जा रहा है, ये उस टाइम की कहानी थी। और समद खान कोई वहां के बड़े क्लासिकल सिंगर थे, तो सुबह हो रही है और पूरा उस जमाने की एक्टिविटी थी वो सब हो रहा है और समद खान वो छत पे रियाज कर रहे हैं अपने महल के और उनकी बेटी जो फिल्म की हीरोइन है वो कहीं वादियों में गा रही है, तो ये सिचुएशन थी
1: जी।
0: और फिल्म इसी गाने से शुरू होती है, तो वो मैंने लिखा था, मुझे पसंद है वो जो राइटिंग है। और वो गाना इतना, मतलब अलका जी ने गाया उसको और उनको इतना अच्छा लगा, उन्होंने अपनी माता जी को फोन करके बुलाया और उनको सुनाया कि देखो आज भी ऐसे गाने लिखे जाते हैं। फिर वो गाना रिकॉर्डेड रूप भाई ने ले जाके लता जी को सुनाया, है ना दीदी, मैंने ये मेरी पहली फिल्म शुरू हुई है ये गाना रिकॉर्ड किया मैंने, तो उन्होंने गाना सुना लता जी ने, तो डांटा उन्होंने प्यार से
1: कि मुझे,
0: अरे ये गाना तो मेरा था, तूने मुझसे क्यों नहीं गवाया,
1: बड़ा कॉम्प्लीमेंट था।
0: हाँ, तो ये गाने में जो एक तो कंपोजिशन और दूसरे जो इसके लिरिक्स हैं के पूरे साहित्यिक, उसका मैं मुखड़ा सुनाता हूँ आपको
1: जी।
0: सुबह हुई दिन निकल रहा है, सुबह हुई दिन निकल रहा है, नदी के तट पर नहा के सूरज सुनहरे कपड़े बदल रहा है,
1: क्या बात है,
0: सुबह हुई दिन निकल रहा है।
1: वाह, बहुत
0: आपके उदयपुर के रेडियो स्टेशन पर ये सुबह इसी गाने से होती है, डेली ये गाना बजता है।
1: हम यहाँ पर कौन सा गाना सुनवाए,
0: मदहोशी का टाइटल सॉन्ग सुना दे, मदहोशी है, मदहोशी है।

0: शकील साहब, एक बहुत ज़रूरी सी बात है और आपके करियर में भी बहुत ये उम्दा बात है, ख़ास बात है, अपने श्रोताओं को बता दें कि आपने कहीं बहुत सारी जगहों पर, आपके बारे में पता है कि बहुत ऊंचे दर्जे की तालीम नहीं ली, स्कूल में जाने का मौका नहीं मिला आपको, लेकिन एक ऐसी तालीम है जो आपके भीतर है, आपने खुद से ली होगी। राम के वनवास पर आपकी बहुत सारी नज़्में हैं, जिस पर किताब भी आई है और जिसका आप अक्सर जिक्र करते हैं, तो ये कहाँ से आइडिया आया, कहाँ से खोज की आपने, इतने बड़े फलक पर आपने कैसे कुछ कोशिश की, बताइए।
1: मेरी उर्दू में 8 किताबें हैं।
0: जी,
1: मैं साहित्य से, उर्दू साहित्य से ही फिल्मों में और मंचों पर आया। 20 साल तक मैंने सिर्फ साहित्य लिखा, साहित्य के मैगजीन में छपता रहा। मैं बाद में इधर आया फिल्मों की तरफ और मंचों की तरफ। तो ये जो काम है मेरा, ये मैं जंगल पर लिख रहा था, जंगल पर लिख रहा था, और लिखते लिखते उसी दरमियान उर्मिला का जो किरदार है वो कहीं से मेरी जिंदगी में आया। उर्मिला जो लक्ष्मण की बीवी है, लक्ष्मण की जो पत्नी है, उस किरदार ने मुझको झकझोर के रख दिया, मुझे हिला दिया उस किरदार ने, उसके बलिदान ने, उसके कुर्बानी ने,
0: कि वनवास होता है लक्ष्मण को 14।
1: हाँ, और अहिल्या, ये दो ऐसे किरदार हैं जिन्होंने मुझे बहुत परेशान किया, बहुत बेचैन किया मुझे। और उसी जमाने में जब मैं अहिल्या के दर्द से दो चार था, उसको जी रहा था, और जब ये नज्म हुई उर्मिला, जब ये नज्म मैं लिख चुका, तो मुझे लगा कि यार जो रामायण है
0: जी,
1: वो पूरी घटना जो है वो जंगल में है, वनवास जो राम जी का है 14 बरस का, तो क्यों ना रामायण के किरदारों पर नज़में लिखी जाए। तो मेरी जो रामायण है वो वाल्मीकि जी से लेके अब तक जितनी भी रामायणें लिखी गई हैं, तुलसीदास की जी, हाँ, तो और भी हमारे दूसरे लोगों ने लिखी हैं, मैथिली शरण गुप्त जी का काम है इस उर्मिला पे,
0: उर्मिला सखी वे मुझसे कहकर जाते,
1: हाँ,
0: बहुत बढ़िया।
1: तो सभी ने मतलब कहानी के माध्यम से कहानी कही है। मैंने एक नया रास्ता निकाला, पात्रों के जरिए से, किरदारों के जरिए से मैंने रामायण कही है, मैंने कहानी। तो मैंने तकरीबन सभी किरदारों पर नज़में लिखी, एक के बाद एक, जीता गया और लिखता गया, इस तरह से वो पूरी एक अलग सी रामायण हुई। और पहले मैंने उसका नाम सोचा था जंगल यात्रा, उस किताब

0: का, क्योंकि जंगल पे काम कर रहा था ना, तो उस किताब का एक बड़ा हिस्सा जंगल भी है, रामायण और जंगल दोनों है उसमें, तो वो मेरे लेखन क्षेत्र में आता था, मेरा जो टॉपिक था जंगल उसमें वो वनवास आता था वो। तो जब ये रामायण उसमें शामिल हो गया तब मुझे मैंने सोचा कि यार क्यों ना इसका नाम वनवास रख दिया जाए, उससे बेहतर क्या नाम हो सकता है, अगर जंगल पर किताब है रामायण पर किताब है, तो वो जो है इस तरह से उसका नाम वनवास रखा गया। और वो किताब इतनी सराही गई है, उर्दू में उसको कई अवार्ड मिले, और उर्दू के जितने भी बड़े क्रिटिक्स और पोएट हैं उर्दू साहित्य में, तकरीबन सभी ने उस किताब पर आर्टिकल्स लिखे हैं, लेख लिखे हैं, मजामीन लिखे हैं। तो किताब पर किताब का आ जाना बहुत बड़ी बात होती है, मतलब उस किताब पर इतने आर्टिकल लिखे गए कि वो अलग से एक किताब आई है, उसको प्रोफेसर कौसर मजहरी साहब हैं जो जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं उर्दू के, उन्होंने वो किताब कंपाइल की है।
1: क्या बात है।
0: हाँ, तो इस तरह से उस किताब पर किताब आई, और सिर्फ हिंदुस्तान नहीं पाकिस्तान के राइटरों को भी उस किताब ने बहुत इम्प्रेस किया। वहां पर एक बड़े राइटर थे, अभी उनकी डेथ हुई है, जो फिल्म के भी राइटर थे, साहित्य के भी थे और मंचों के भी थे, जिस तरह हमारे यहाँ जावेद साहब है, गुलजार साहब है, इस तरह का वो नाम थे, अमजद इस्लाम अमजद साहब, अभी इंतकाल हुआ उनका। उन्होंने इस पर आर्टिकल लिखा है और किस तरह से, मतलब हिंदू माइथोलॉजी और रामायण को लेके जो उनकी मालूमात थी वो भी कमाल है, वो जो लिखा है उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। ये किताब हिंदी में जब आई तो पिछले 3 सालों से बेस्ट सेलर है, कविता की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में एक है ये।
1: क्या बात है।
0: पिछले 3 साल से लगातार, और अभी को दैनिक जागरण ने बेस्ट सेलर अवार्ड दिया गृह मंत्री अमित शाह जी के हाथ से मुझे।
1: क्या बात है।
0: तो हाँ, बहुत शुक्रिया।
1: और बहुत बढ़िया बात कही है। और आपके मुशायरों का जिक्र तो हुआ, शुरुआती मुशायरों का, लेकिन बाद के मुशायरों में हमने खुद देखा है, मेरी खुशनसीबी है कि हमने आपको खुद देखा है, और कलिंगा फेस्टिवल में देखा, प्रयागराज में हमने आंखों से देखा था जहां अनुभव सिन्हा जी भी उपस्थित थे, और आपकी जो शायरी थी वो आपके खजाने से निकल रही थी और पूरा हॉल खचाखच भरा था। ऐसे तमाम अनुभव हैं, तमाम वाक्यात हैं जिनकी बातें हम आपसे और फिर कभी करेंगे। आज तो बस इतना हम कहना चाहते हैं, धुआं धुआं है फजा, रोशनी बहुत कम है, सभी से प्यार करो, जिंदगी बहुत कम है। आपके ही अल्फाज हैं, आप क्या कहेंगे, आप विविध भारती के श्रोताओं को क्या पैगाम देंगे, क्या कहेंगे चलते चलते?
0: मैं यही कहूंगा कि अभी आपने जो सुनाया है, सभी से प्यार करो, जिंदगी बहुत कम है, तो प्यार बहुत जरूरी है, और दुनिया में कुछ भी हो जाए, ये जो मोहब्बत का जज्बा है ये हमेशा बड़ा रहेगा, बड़ा था, बड़ा है, बड़ा रहेगा। तो मोहब्बत कीजिए, सबसे पहले तो खुद से मोहब्बत कीजिए।
1: कुछ शायर आप एक शायर से हम उम्मीद करते हैं शायरी में ही कुछ बोले शेर के साथ
0: जी,
1: कोई अशार।
0: मैं अभी इधर एक नई गजल कही है मैंने, उसके 2-3 शेर सुना देता हूँ, और उसमें एक शेर है खास तौर से उसके लिए मैं ये शेर सुना रहा हूँ कि उसमें ये भी एक शेर है, सीख है कि भाई ठीक है ऊंच नीच होती है, कुछ हमारे अलग अलग सोच होती है, लेकिन उस सब को हटा के आगे की तरफ बढ़ते रहो।
1: क्या बात है।
0: मोहब्बत करते रहो। कि आबाद मेरी बाहों का घेरा नहीं हुआ, आबाद मेरी बाहों का घेरा नहीं हुआ।
1: क्या बात है।
0: मैं हो गया हूँ उसका, वो मेरा नहीं हुआ।
1: वाह वाह वाह।
0: मैं हो गया हूँ उसका, वो मेरा नहीं हुआ। वो शेर ये है जो मैं कह रहा हूँ कि ठीक है वो आप आगे बढ़ें। सांपों को मैंने रहने दिया उनके हाल पर।
1: क्या बात है।
0: सांपों को मैंने रहने दिया
1: उनके हाल पर।
0: उनके हाल पर मंत्र भी सीख कर मैं सपेरा नहीं हुआ।
1: वाह वाह वाह।
0: ठीक है, मैंने उसे बदला नहीं लिया, मैंने मंत्र आता था मुझे, लेकिन ठीक है यार, तुम तुम्हारे रास्ते मैं अपने रास्ते। इसका एक शेर आखिरी खास तौर से कि देखिए ज्ञान जो है ना
1: जी,
0: शायरी में ज्ञान की बहुत जरूरत नहीं होती, लेकिन जब आपके पास ज्ञान भी होता है अलग अलग, तो वो शेर में आता है रचना के तौर पर, रचनात्मक तौर पर आता है, तख्लीकी तौर पर, तो बहुत असर करता है। तो एक महाभारत का एक इल्म है, एक ज्ञान है जो इस शेर में आता है, मैं सुनाता हूँ। ये जिंदगी भी एक महाभारत का

0: युद्ध है।
1: क्या बात है, ये जिंदगी भी एक महाभारत का युद्ध है, वाह।
0: ये सीख है हम सबके लिए, ये जिंदगी भी एक महाभारत का युद्ध है,
1: जी
0: लड़ते रहो शकील, अंधेरा नहीं हुआ।
1: क्या बात है, वाह वाह वाह। तो अब अपने श्रोताओं से, हमारा तो दिल नहीं कर रहा है कि हम इजाजत लें, और लग रहा है कि आपसे गुफ्तगू जारी रहे, और बहुत सारी अभी बातें हैं जो बाकी हैं आपसे पड़ताल करनी। आजमगढ़ जैसे छोटे से शहर से आप मुंबई जैसे महानगर में आकर और इतना नाम रोशन किया है, शायरी की दुनिया में, फिल्मों की दुनिया में आपने नाम रोशन किया है, इसके लिए आपको पूरे विविध भारतीय परिवार की ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद हम दे रहे हैं, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया शकील साहब।
0: आप भी बहुत
1: नमस्कार।
0: शुक्रिया ममता जी।
2: जाने माने शायर और गीतकार शकील आजमी से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा और आखिरी भाग अभी आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन रीमा जोशी और प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
3: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
2: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

0: नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। भारतीय तटरक्षक बल के जहाज सचेत ने मंगलुरु तट के पास एक समुद्री खोज और बचाव अभियान में मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका मंजू माथा से 6 मछुआरों को बचाया है। बल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि कल खराब मौसम में इस नौका को नुकसान पहुंचने और उसमें पानी भर जाने के बाद सभी जीवित बचे लोगों को रिमोट से संचालित लाइफ बॉय की मदद से बचाया गया। बल ने बताया कि जीवित बचे लोगों को चिकित्सा सहायता और स्थानीय अधिकारियों को सौंपने के लिए न्यू लाया जा रहा है। यूरो बैंक ने ग्रीस से भारत में धन भेजने के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। यह पहल यूरो बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। एक

0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरो बैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक विस्तार में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि यूनान में यूपीआई के शुरू होने से ग्राहक तुरंत सुरक्षित और निर्बाध रूप से धन हस्तांतरण कर सकते हैं। इससे लेन देन लागत पारंपरिक हस्तांतरण लागत के मुकाबले काफी कम हो गई है। श्री गोयल ने यूपीआई की बढ़ती वैश्विक स्वीकृति की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दृष्टिकोण में विश्वास को भी दर्शाता है जिसके तहत प्रौद्योगिकी आधारित समाधान विकसित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
1: सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले दो वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
2: चार दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
1: जनरल धीरज सेठ ने 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी चार दशकों से अधिक समय तक राष्ट्र सेवा के बाद आज सेवानिवृत्त हो गए हैं। जनरल सेठ पुणे स्थित खड़कवासला राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं और दिसंबर 1986 में बख्तरबंद कोर में कमीशन प्राप्त किया था। लगभग चार दशकों की अपनी विशिष्ट सैन्य सेवा में उन्होंने परिचालन, रणनीति, क्षमता विकास और संस्थागत क्षेत्रों में व्यापक अनुभव प्राप्त किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सुदृढ़ अर्थव्यवस्था ही मजबूत रक्षा क्षमताओं की नींव है। गुजरात के वडोदरा में आज वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, जहाज निर्माण और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में मजबूत उपस्थिति के कारण गुजरात जल्द ही रक्षा विनिर्माण के वैश्विक केंद्र के रूप में उभरेगा। भारत ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप पीड़ित वेनेजुएला

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। किशनपुर रटवारा पंचायत से ओम पूनम कुमारी बनी है यशस्वी मुखिया।
1: मैं पूनम कुमारी, ग्राम पंचायत किशनपुर रटवारा, प्रखंड आलमनगर, जिला मधेपुरा। जी मैंने काम करवाए है, अभी तो मेरा बाहर इलाका है, कोसी कटाव से पीड़ित है। वहाँ तो रोड सालों आती है, सालों चली जाती है बह के, तो उसी को हम अभी तक में 25 से 30 हम मतलब कच्ची सड़क बनाए हैं, 10 से 15 पक्की सड़क में मैं 2 बार मुखिया बनी हूँ।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोगकर्ता हिंदुस्तान।
2: श्रोताओं, कहते हैं कि असफलता ही सफलता की वास्तविक सीढ़ी है। यूं तो हम कई सपने देखते हैं और उनको साकार करने हेतु प्रयास भी करते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे सपने हमेशा सच ही हो जाए। कई बार तो असफलता ही हाथ लगती है, लेकिन असफल होने पर चिंताग्रस्त या अवसाद को प्राप्त नहीं होना चाहिए, बल्कि अच्छा यह होगा कि हम अपनी असफलताओं के कारण ही समझ पाते हैं अपने को और उनसे सबक भी लेते हैं, आगे बढ़ते रहें। एक न एक दिन सफलता अवश्य हासिल होगी। श्रोताओं, आइए एक और गीत सुन लेते हैं।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। मोतीपुर पंचायत से ओम प्रेमी देवी बनी है यशस्वी मुखिया।
1: मैं प्रेमा देवी 10 ग्राम पंचायत राजमोतीपुर प्रखंड डोसरा जिला समस्तीपुर। हम सारा काज किए हैं अपना ग्राम सभा में लेकर अपना महिलाओं से और ग्राम से लेकर उसे पंचायत को शुरू किए हैं। हमारे आने से बहुत सारे महिलाओं को रोजगार मिले। अभी लाइब्रेरी खोले हैं जिसका मिल रही है, अभी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोग करता हिंदुस्तान।
2: मिस सीमा
3: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
3: क्यों, लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
3: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1 लाख दो, बच जाओगे।
3: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
3: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
4: हेलो मम्मा।
5: आरबीआई कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। किशनपुर लोहुआर पंचायत से ओम राकेश कुमार बने हैं यशस्वी मुखिया।
7: यशस्वी मुखिया राकेश कुमार शाह, ग्राम पंचायत में पंचायत सरकार भवन नहीं था, जिसके चलते मेरे यहाँ नागरिकों को बहुत कठिनाई होती थी, प्रखंड जाकर काम कराना पड़ता था। मैंने ग्राम पंचायत में अपने ग्राम पंचायत में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराया। अब पंचायत सरकार भवन के एक छत के नीचे ही मेरे पंचायत के लोगों का सारा काम हो जाता है, अब प्रखंड जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोग करता हिंदुस्तान।

0: श्रोताओं, सोलर योजना की भी बात कर लेते हैं। श्रोताओं, भारत सरकार ग्रीन एनर्जी या निहरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए तथा बिजली बिल कम करने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना चला रही है। इसके तहत 3 किलोवाट तक के सोलर सिस्टम पर 78,000 रुपये तक की सरकारी सब्सिडी मिलती है, जिससे हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का लाभ उठाया जा सकता है। तथा साथ ही एक अन्य लाभ यह भी है कि आपके द्वारा अतिरिक्त उत्पादित बिजली को अपग्रेड यानी बिजली बोर्ड को बेचा भी जा सकता है। तो आप भी लाभ लें और अपनी आमदनी को बढ़ाएं। आइए सुनते हैं एक और गीत।
1: ना

अभी आप हमारे युवा साथी अपना प्रसारण घर युवाणी सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। शाम के 6 बजे हैं। प्रस्तुत है लोकगीत।

अभी आप रितेश तिवारी को सुन रहे थे। लोकगीत संपन्न हुआ। एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार बुलेटिन की कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

प्रणाम, ई आकाशवाणी के पटना केंद्र है। अब रउआ चंद्रमोहन से भोजपुरी में समाचार सुनी। राज्य में 53,000 करोड़ रुपया के लागत से 5 गो प्रमुख सड़क आ पुल परियोजना सबके निर्माण कल जाय। इस प्रस्ताव के जल्दीय केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिले के संभावना बा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कल नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन आ राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के साथ भइल बैठक में ए पर सहमति बनल बा। केंद्र सरकार जी

0: अपीलीय न्यायाधिकरण के सामने अपील करे के आखिरी तारीख 31 जुलाई तक बढ़ा देले बिया। वित्त मंत्रालय के मुताबिक पिछला साल सितंबर में जारी भइल अधिसूचना में अपील दायर करे के आखिरी तारीख 30 जून तय कइल गइल रहे। अलग अलग हितधारक न्यायाधिकरण में भारी संख्या में अपील दायर होखे के चलते आयल तकनीकी खराबी के हवाला देके सरकार से आखिरी तारीख बढ़ावे के आग्रह कइले रहलन। सरकार करदाता लोगन के भी सलाह देले बिया कि उ लोग समय रहत ही अपील दायर कर देस आ आखिरी तारीख के इंतजार ना करस। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी आज कहले कि भारतीय सेना के आपन ताकत कोनो एक व्यक्ति से ना बल्कि आपन सैनिक कमांडर और पूर्व सैनिक उनकर परिवार आ देश के नागरिक के अटूट विश्वास से मिलेला। जनरल द्विवेदी आज सेना प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हो गइलन। आपन विदाई समारोह में सेना प्रमुख द्विवेदी नई दिल्ली में मौजूद राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कइले। इस मौका पर उ कहले कि 4 दशक से बेसी समय तक भारतीय सेना में सेवा कइल उनकरा खातिर सबसे बड़ सौभाग्य के बात रहल। नया सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ आपन जिम्मेदारी संभाल लेले बाड़न। केंद्र सरकार पेट्रोल आ डीजल के बिक्री पर लगावल गइल अस्थायी प्रतिबंध हटावे के फैसला कइले बिया। पेट्रोलियम आ प्राकृतिक गैस मंत्रालय कहले बा कि सार्वजनिक क्षेत्र के तेल कंपनी के पेट्रोल पंप पर काल से ई प्रतिबंध लागू ना रही। ध्यान देवे लायक बात बा कि पश्चिमी एशिया संकट के दौरान पेट्रोलियम उत्पाद सबके बिक्री पर 12 जून के अस्थायी प्रतिबंध लगावल गइल रहे। एकरा तहत एक ग्राहक के एक दिन में बेसी से बेसी 200 लीटर डीजल देवे के सीमा तय कइल गइल रहे। मंत्रालय कहलस कि अब देश में पेट्रोल आ डीजल के आपूर्ति सामान्य हो गइल बा, यही से जनहित में अस्थायी प्रतिबंध वापस लेवे के फैसला कइल गइल बा। गांव देहात के विकास के बढ़ावा देवे वाली महत्वाकांक्षी योजना विकसित भारत जी राम जी काल से पूरा प्रदेश में लागू कइल जाई। एकरा तहत हर वयस्क व्यक्ति के साल में 125 दिन के रोजगार के गारंटी दिहल जाई। ग्राम पंचायत सब योजना के निर्माण करी हैं आ मजदूर के बैंक खाता में मजदूरी के सीधा आ समय से भुगतान कइल जाई। जी राम जी योजना अभी चल रहल मनरेगा योजना के जगह ली। राज्य के उत्तरी हिस्सा में मानसून के सक्रिय होखे से कई गो जिला में झमाझम बारिश भइल बा। मौसम विभाग आज गोपालगंज आ पश्चिमी चंपारण जिला खातिर भारी बारिश के ऑरेंज अलर्ट जारी कइले बा। ओहिजा दरभंगा पूर्वी चंपारण मधुबनी शिवहर सीतामढ़ी आ वैशाली जिला में भी कुछ जगह पर भारी बारिश के चेतावनी जारी कइल गइल बा। एने पटना समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम हिस्सा में भी कुछ जगह पर बारिश होखे से लोग के गर्मी से राहत मिलल बा। सुप्रीम कोर्ट भोजपुरी के कथित फर्जी पुलिस मुठभेड़ मामला के सीबीआई जांच के मांग वाली याचिका पर सुनवाई करे से इनकार कर देले बा। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश आ न्यायमूर्ति शीलनागू के अवकाशकालीन पीठ याचिकाकर्ता के इस मामला में पहले हाई कोर्ट जाए के कहले बा। याचिका अधिवक्ता विशाल तिवारी दाखिल कइले रहन। ध्यान रहे कि राज्य सरकार के निर्देश पर इस मामला के न्यायिक जाँच अभी चल रहा बा। कला संस्कृति मंत्री प्रमोद कुमार कहले बाड़न कि राज्य के 26 गो संग्रहालय में सांस्कृतिक विरासत के बचावे और संजोए के काम के और मजबूत कल जाई। श्री कुमार पटना के विकास भवन में आयोजित विभागीय नियुक्ति पत्र बांटे के कार्यक्रम में बोलत रहले। इस मौका पर सहायक संग्रहालय अध्यक्ष के पद खातिर चुनल गई 9 गो उम्मीदवार के नियुक्ति पत्र दिहल गई। उप मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी कहले बाड़न कि राज्य में आवे वाली बाढ़ और सुखाड़ के स्थिति से निपटे खातिर पूरा तैयारी कल गई बा। श्री चौधरी पटना में जदयू ऑफिस में पत्रकार से बातचीत करत कहले कि सरकार एगो नई योजना के तहत बाढ़ के पानी के नहर और दूसर माध्यम से बटोरे के इंतजाम शुरू कैले बिया। ऐसे सुखाड़ के घड़ी किसान के फायदा मिली। उ कहले कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के अगुवाई वाली सरकार केंद्र सरकार के साथ नीमन तालमेल बना के कई गो जरूरी योजना के आगे बढ़ा रहल बिया। एकरे साथे ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार के ई अंक हिजा समाप्त भइल।
1: एफएम बैंड के 103.4 मेगा हर्ज पर यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। प्रस्तुत है किसान वाणी। प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: मेहरबानी कार्यक्रम सुनने वाला सभी श्रोता भाई लोगों के मनु भाई की तरफ से नमस्कार बा और साथे साथे सुमन भाई रोरो के नमस्कार।
1: सब श्रोता भाई बहन के सुमन भाई के ओर से प्रणाम। मनु भाई जी, देखें काले से जोन बरसा होता बरखा के चलते एकदम मने मन जोन बा हरियरा गिल बा।
0: देखो तनी सुमन भाई की रुआ वर्षा में भिंजते आ गिल बनी।
1: हाँ,
0: बारिश में रुके के भी मौका ना मिल रहा, इतना बारिश। आ देखिए बारिश हो चाहे जड़ा हो चाहे गर्मी हो, मौसम में बड़ा अच्छा लगे ला। बारिश के मौसम में बारिश हो के झमाझम आ गर्मी में गर्मी पड़े तो ये सब मौसम के अनुसार अच्छा लगे ला। होके के भी चाहिए ये बारिश से देखी सारे जीव जंतु पेड़ पौधा सब खुश बा। काहे से कि बहुत गर्मी पड़त रहल आ गर्मी से सब बेचैन हो गए परेशान रहे आ बारिश हो जाए से समय को नया जान आ गई बा।
1: देखे जोन आज अदरा के जोन बारिश भइल ह काहो भइल, अब जोन खेत जोता गइल बा हमने के रोपन जोन रोहनी के चढ़ते रोहनी के बिया बा उहो अब धीरे धीरे तैयार हो रहल बा।
0: जी जी,
1: तो अब खेत में के आदमी सब किसान भाई लोग तैयारी कर ले बाना के दो चार पाँच दिन में रोपनी शुरू कर दीहन और नहर भी बढ़िया से पानी दे रहल बा।
0: जी जी,
1: तो इ वर्षा के पानी जोन बा तौन ऐसनो देखी हमने के जिला में कुछ ऐसनो बा भाग जोन है कि नहरी क्षेत्र नहीं है, सिंचाई से वंचित क्षेत्र बा,
0: पूरा
1: बरखे के पानी पर आश्रित बा खेती। तो ओहिजा भी वर्षा से अब बिया डाले जोन पिछात बिया बा
0: जी,
1: अब वो पड़ जाई और बढ़िया से फिर आगे के रोपनी के भी काम शुरू हो जाए।
0: देखी थोड़ा सा भी बारिश हो जाता सुमन भाई तो हमने की जो नहरी क्षेत्र में बा वो पानी रोके कोशिश निकल करत और पानी आगे बढ़ल चल
1: आगे बढ़ जाए।
0: तो इससे बारिश से बहुत नहरी क्षेत्रों को आ चाहे बेनहरी हो के सब में माने फायदा बा।
1: सब में और देखी एक जो कहनी है ना कि बीज जो जीव जंतु बाणन सब जान तो 1 जुलाई से पौधा रोपण के भी काम बहुत तेजी से होखे वाला बा वन विभाग ओकरा कराई। तो अगर ये बरसात हो गई बरसा बढ़िया हो गई तो पौधा के जोन लागे के जोन दर बा वो अधिक होई
0: एकदम मौसम के तापमान जोन में गिरावट आ गई ऐसा में पौधा लागे के चांस जोन बा अच्छा हो जाला। आई आज के कार्यक्रम के थोड़ा संक्षिप्त जानकारी लिया जा तो अभी हमने के देश विदेश के तहत कुछ खबर जानल जी कृषि संबंधी। एक बाद आज के किसान रहम राम नरेश पांडे जी यहाँ से वो भेंट वार्ता सुनल जी, विषय रहे मछली पालन की तैयारी। भेंट करता रहब डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी जी। नया दौर नई बातें के तहत प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत जानकारी लिया जी। आज के नसीहत के तहत हम जानल जी रास्ता के अतिक्रमण न कर जाओ, प्रश्नोत्तरी भी हुई आ कार्यक्रम के अंत में हमने के मौसम के मिजाज भी जानल जी, बीच में हमने के संदेश भी सुनल जाए। तो देखो तनि कि कृषि संबंधी खबर लेकर हुआ तैयार बनी तो फरिया फरिया के सुमन भाई तनि बताई किसान भाई लोग के आज के कृषि संबंधी खबर का कहवा।
1: देखें 1 जुलाई से यानी कल से जोन बीबी जी राम जी जोन योजना बा जोना के हमने के मनरेगा के नाम से पहले जाना वगैरह में काफ़ी बदलाव कल गई बा। अब 125 दिन के काम मिली और एकरा के कई तरह के काम से जोड़ दिहल गई बा। अब खाली सरकारी काम से नहीं है, बहुत सा ओकरा में काम जोड़ दिहल गई बा कि 125 दिन हर व्यक्ति के रोजगार मिल जाए साल में।
0: बहुत बढ़िया भाई।
1: और एकरा खातिर पहले रहे कि मास्टर रोल जोन तैयार होते रहे तो निकल दो दो महीना के तैयार हो जाए, अब 7 दिन के तैयार करके ओकरा पर जाँच भी हुई तो अब जोन पैसा भी बा वो भी एकदम समय समय पर खटाखट खाता से में आ जाए। तो अब एकरा में कई तरह से बदलाव लाके जी राम जी योजना के आम आदमी तक पहुँचावे खातिर सरकार कई गो उपाय की लेबा आई काल से शुरू हो जाए। तो एगो तो खबर ई हो गई मनु भाई, सहकारी समिति के माध्यम से उन्नत किस्म के बीज के भी निर्माण करे के

0: कार्ययोजना बनावल गेल बा। आई तैयार बीज के बढ़िया दाम पर बेचे के भी तैयारी बा। एकरा खातिर जौन किसान भाई लोग जौन सहकारी समिति के माध्यम से जौन की पैक्स बा या और अन्य सहकारी समिति जौन बनल बा ओकरा माध्यम से जौन किसान भाई लोग बीज के उत्पादन करिहन ओकरा के खरीद के व्यवस्था जौन बा तौन करी भारतीय बीज सहकारी समिति। ई खरीद के और ओकरा के फिर बाजार में बेची। एकरा खातिर जे किसान भाई लोग बाणन जौन सहकारी समिति के सदस्य लोग बाणन उनका के प्रशिक्षण दिहल जाई और एमें बतावल जाए कि कैसे वो बीज के उत्पादन करस का ओकरा में डालस कैसे उन्नत बीज होई और एकरा के जानकारी दिल हमन जौन भारतीय बीज सहकारी समिति के चेयरमैन योगेश कुमार बाणन वो कार्यक्रम में बतावत रहन कि राज्य भर में अभी बिहार भर में 8494 सहकारी समिति बा और ओकरा के माध्यम से बीज के उत्पादन करावल जाए।
1: बहुत बढ़िया खबर रहल। आ देखी सुमन भाई हमनी के खेती बाड़ी तो करते बढ़िया साथे साथे हमनी के कुछ मछली पालन बा या मुर्गी पालन बा या गाय पालन बा इस सब के पालन करे से हमनी के किसान भाई लोग के आय दुगुना हो सकत बा। तो इससे हमनी के देखी खेती बाड़ी के साथ मछली पालन के भी तैयारी कर जाओ आ जेकरा माने जगह बा स्पेस बढ़िया बा तो मछली पालन आराम से कर सकत बा। यही पर हमनी के एगो भेंट वार्ता सुनल जा आज के किसान मणि राम नरेश पांडे जी आ यहाँ से बातचीत करब डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी जी तो आई सुनल जाओ।

0: श्रोता सभे, मछली पालन आज एक नीमन व्यवसाय के रूप में किसान भाई अपना रहल बन। मछली पालन कैसे कई जाओ, का दिक्कत आवेले आ कितना लाभ बा, एकरा पर बात करे खातिर आज हमरा स्टूडियो में आमंत्रित बानी किसान राम नरेश पांडे जी। राम नरेश पांडे जी रकसिया बड़का गांव विक्रमगंज जिला रोहतास के रहे वाला बानी। आज यहाँ से जानल जाए कि मछली पालन कैसे कई जा, तो राम नरेश पांडे जी आपका हमरा स्टूडियो में स्वागत बा। पहले तो ये बताई कि मछली पालन काहे कई जाओ।
1: मछली आसानी से पचे वाला प्रोटीन स्रोत है, ऐसे सदियों से मानव आहार के अभिन्न अंग रहल बा। मत्स्य पालन मछली के मांग अधिक आ आमदनी भी अधिक के चलते ई व्यवसाय के रूप धारण कर रहल बा।
0: जी जी, अच्छा ये बताएं कि शुरुआत कैसे कई जाओ हमनी का
1: मत्स्य पालन। पोखरा तालाब चंवर जैसन जलाशय में मछली के संचय करके एक निश्चित अवधि तक पालला के बाद में बाजार में बेचल जाई, ओकरा के मत्स्य पालन कहल जाला।
0: जी जी,
1: तो मत्स्य पाले खातिर नया तालाब के निर्माण करे के पड़ी। तालाब निर्माण के समय कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बा जवाना के ध्यान में रखे के चाहिए।
0: जी जी,
1: पहला स्थल ऐसन चयन करे के चाहिए जेकर मिट्टी चिकनी अथवा दुमोट होके।
0: अच्छा अच्छा,
1: ना बलवाही मिट्टी तालाब खातिर उपयुक्त ना होके।
0: जी जी,
1: दूसरका चीज तालाब के आकार न बहुत बड़ा होके आ न बहुत छोटा।
0: जी जी,
1: तालाब आयताकार में निर्माण करावे के चाहिए जवना के लंबाई चौड़ाई से 3 गुना होके आ ओकर गहराई 5-6 फीट से अधिक ना होके के चाहिए।
0: जी जी जी,
1: तालाब के पेड़ भी ऐसन देवे के चाहिए कि ओकरा पर सब्जी केला पपीता के भी खेती कई जा सकला।
0: जी जी,
1: हम भी ये सब बिंदु के ध्यान में रह के एगो नया तालाब निर्माण करौले बानी जवना के लंबाई 215 फीट आ चौड़ाई 72 फीट बा।
0: जी अच्छा, राम नरेश पांडे जी, ये प्रेरणा कहाँ से मिलल रुआ के कि तालाब खुदवावल जाओ और मछली पालन कई जाओ?
1: हम रेडियो दूरदर्शन के माध्यम से जानने कि मत्स्य पालन कृषि के एगो अंग बा। जब ले मछली पालन ना हो तब ले किसान के आय दुगुना ना हो सके।
0: जी जी,
1: ऐसे हम मछली पालन शुरू कैले बानी। पहले ही से एगो छोट तालाब रहे वही में, लेकिन आज एगो हम एगो और तालाब खोदवले बानी।
0: अच्छा अच्छा, अब ये बताएं कि मछली डाले से पहले का सावधानी होके के चाहिए?
1: मछली डाले से पहले तालाब के मिट्टी के पीएच मान नपवा लेवे के चाहिए आ पीएच मान के अनुसार ओकरा में यथोचित चूना के प्रयोग करे के।

0: जी जी
1: चूना के प्रयोग के 3 दिन बाद ऐसे 10,000 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से गोबर के खाद डलवावे के चाहिए
0: जी।
1: और ओकरा से 15 दिन बाद रासायनिक खाद के भी प्रयोग कई जाला ताकि तालाब में पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक आहार बनत रहे।
0: जी जी। अच्छा ये बताएं कि जब शुरुआत कई जाओ मछली पालन का तो महीना कौन होके चाहिए, कहाँ से शुरुआत करे के चाहिए?
1: श्रोतागण मार्च के महीना प्रारंभ करे खातिर सर्वोत्तम होला।
0: जी जी।
1: मार्च के महीना में हमनी के एक तो बीज के उपलब्धता, अच्छा विकास दर, छोटा आहार श्रृंखला और सर्वभक्षी स्वभाव, अच्छा स्वाद, बाजार में अच्छा मांग के चलते कार्प मछली के हमनी के चयन कर जा सकला। कार्प मछली ऐसन मछली बा जवना के कि हमनी के खुराक अपने घर से बना के दिहल जा सकला।
0: जी जी।
1: कार्प मछली में पहला कतला जो उनकी तालाब के ऊपरी सतह पर हला, आयकर मुख्य भोजन जंतु पलवक है। दूसरा रोहू जौन तालाब के मध्य भाग में रहला आ एकर मुख्य भोजन बड़ुए अर्ध सरल गलल पदार्थ आ जन पादप पलवक। नयन जौना के मृगल भी कहल जाला, ई तालाब के तल में रहे वाला मछली है आ पूर्ण सरल गलल पदार्थ के खाइला।
0: जी जी।
1: हमारा यहाँ विदेशी कार्प भी मछली आइल बा, पहमे महत्वपूर्ण सिल्वर कार्प, यह मछली के पाले खातिर चीन से ले आइल गेल।
0: जी जी। ये
1: मछली कतला के तरह ऊपरी सतह में रहला आ ये पादक पलवक एकर भोजन है। दूसरा बड़ुए ग्रास कार्प, ये तालाब में रहे वाला वनस्पति के बड़ी चाव से खाला। एकरा के 1959 में हांगकांग से भारत पाले खातिर ले आइल गई रहे।
0: जी जी।
1: तीसरा विश्व के पाले में मुख्यतः कार्प मछली में कॉमन कार्प है, ये तल में रहला सर्वभक्षी है, एकरा के शीतल जल में भी पालल जा सकला।
0: जी जी। तो मतलब कि 5-6 वैरायटी का मछली इनके पालल जा सकेला।
1: जी जी
0: जी। अच्छा अभी बताएं कि जीरा कहाँ से रूरा लिया इला?
1: जीरा तो पहले हम स्थानीय जैसे संझौली घुसिया में भी जीरा मिलल हम मंगावत रहे वजह से।
0: जी।
1: लेकिन इन साल कृषि विश्वविद्यालय फार्म विक्रमगंज में जीरा उपलब्ध बा।
0: जी जी।
1: हम वजह से जीरा मंगाई।
0: अच्छा अच्छा। उजिया मिले लागल।
1: जी जी जी।
0: अच्छा अच्छा। ये बताएं कि पूरक आहार का होखे के चाहिए मछली इनका, जितना मछली बतौली हाँ, सिल्वर कार्प, कॉमन कार्प, राहू, कतला, यानी का आहार का हुई अगर अलग से देवे के होखे तो?
1: पूरक आहार में मुख्यतः सरसों के खली 40%, राइस ब्रान अर्थात चावल के भूसी 40%, विटामिन मिश्रण 1%, साधारण नमक 3% आ खनिज लवण मिश्रण 1% हमनी के मिश्रण बना के
0: अपना घर ही
1: ओकरा के 6 से 8 घंटा तक पानी में फुलावला के बाद में बढ़िया से पका ली। अब पकावला के बाद में विटामिन मिश्रण के मिला के ओकरा के सुखा ली
0: जी,
1: ओकरा के भंडारित कर ली।
0: जोन पकावे के कहता नहीं, एकर मतलब कि आग पर पकावे के?
1: आग पर पकावे के बाद
0: जी।
1: अब जब भंडारित कर लेनी तो 3 से 5 किलो प्रति दिन तालाब में अनुमानित मत्स्य ओजन के हिसाब से रुआ खुराक दी 2 बार सुबह शाम। जैसे तालाब में अनुमानित मत्स्य ओजन 100 किलो बा तो 5 किलो के हिसाब से प्रतिदिन ओकरा में दी।
0: माने 2.5 किलो सुबह, 2.5 किलो शाम।
1: जी
0: जी जी जी। अच्छा अभी बताएं कि इतना अगर पूरक आहार देता नहीं, मछलिन के ठीक ढंग से रखता नहीं, कितना दिन में तैयार हो जी हसन, कितना दिन में निकले लगी?
1: जोन कार्प मछली बाड़ी सन 1 साल में एहनी के वजन 1.5 किलो से 1.5-2 किलो तक हो जाई। ऐसे 1 साल एकरा 21 साल माने साल में मारे के चाहिए
0: जी।
1: हम फिर एकरा के फरवरी में तालाब के मार देम, सफाई कर देम, फिर मार्च में ओकरा में हम डाल दे।
0: अच्छा अच्छा।
1: 40,000 से 80,000 प्रति एकड़ के हिसाब से शुद्ध मुनाफा बा एकरा में। ऐसे किसान परंपरागत खेती में जौन धान गेहूँ बा ओकरा साथे साथे जब तक मत्स्य पालन ना करी है तब तक वो खुशहाल ना रह सकस।
0: जी जी। अच्छा अच्छा। तो ये खाली अब कार्पे का बात करता नहीं कि कुल मछलिन का बात करता नहीं?
1: कार्प के अलावे ओकरा में यदि हम अभी प्यासी या रूपचंदा डालतनी तेकरा के

0: महीना में हम निकाल ले
1: जी
0: आ कार्प मछली बाजी है सन वो छः महीना से हम तालाब के मेंटेनेंस करत रहम
1: जी जी जी
0: ऐसे हम दोनों मछली के कर सकी ना।
1: अच्छा अच्छा अच्छा ये बताई कि जिसे मछली निकले लगली सन एक मार्केट कहाँ बा कहाँ बेची ला।
0: अभी तो हम स्थानीय मार्केट से जो मछुआरा लोग बा ओकरा के टेलीफोन करी ना वो अपना के जाल लगा के मछली निकाल के लोग लेके चल जाला। अच्छा। लेकिन हम कल पटना में हम एक दूगो मछुआरा से बात कैनी तो लोग कहल कि रुआ यहाँ मछली तैयार हुई हमारा यहाँ टेलीफोन करम हम सीधे गाड़ी लेके चल आई और वहाँ से मछली मार के लेके चल जाए।
1: जी जी जी अच्छा तो रुरा के एकरा में कितना फायदा जनाता
0: हम बतौनी है नु।
1: हाँ।
0: कि 40 से 80 हजार प्रति एकड़ के हिसाब से शुद्ध मुनाफा बा
1: जी सब खर्च काट
0: सब के। खर्च काट के
1: जी जी तब तो अच्छा बात बा भाई का संदेश देव अन्य किसान लोग के
0: हम अन्य किसान के यह संदेश देव कि परंपरागत धान गेहूं खेती के साथे साथे मछली के खेती बड़ा पैमाना पर कल जाए। मछली के खेती तो तालाब के अंदर होई ओकरा पीण पर हमनी के केला आ पपीता के भी खेती खूब बढ़िया से कर सकने जा और वह एगो आमदनी के स्रोत हो जाए।
1: जी जी तो राम नरेश पांडे जी आप अली आ इतना नीमन जानकारी दहनी कि मछली पालन कैसे कल जाओ ओकरा से कितना लाभ बा आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: हम भी आकाशवाणी के धन्यवाद आ सब श्रोता के भी कोटि कोटि धन्यवाद।
1: जी
2: देखी श्रोता सभे कितना नीमन नीमन जानकारी हमनी के राम नरेश पांडे और श्याम सुंदर तिवारी जी से मिलल एकरा खातिर हमनी के यहाँ सबके धन्यवाद दे दिया।
3: बहुत बहुत धन्यवाद दिहल जाओ मनु भाई कहते कि श्याम सुंदर तिवारी जी भी बड़ा एक एक बात खुदिया खुदिया के पूछनी है पांडे जी भी बहुत अच्छा से जानकारी देनी है और बहुत लाभप्रद जानकारी देनी है तो यहाँ दोनों लोग के हमने के बहुत बहुत धन्यवाद दिहल जाओ
2: जी। आई अब हमनी के कुछ संदेश सुन ले जाओ फिर आगे
3: आई सुन जाओ संदेश।

0: ये जो हरे भरे पेड़ और उन पर लगे गुच्छेदार फल दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में हमारे किसान भाइयों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुख समृद्धि के रंग भरने की क्षमता रखते हैं। ऑयल पाम की खेती से किसान सामान्य फसलों की तुलना में कम लागत एवं मेहनत से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसान खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे संभव है, आज इसी के बारे में बताएंगे अपने किसानों को। ऑयल पाम एक बहुमुखी तेल है जिसके कई अलग अलग गुण और कार्य हैं, जो इसे बेहद उपयोगी और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला बनाते हैं। ऑयल पाम के फल से सबसे अधिक तेल प्राप्त होता है। प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन फलों की उपज देने वाले इसके पेड़ परिपक्व होने के बाद लगभग 30 साल तक फल देते रहते हैं। यही नहीं, इन पेड़ों के बीच अंतरवर्ती फसलें उगाकर किसान दोहरी आय भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से भी इसकी खेती के लिए काफी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। भारत सरकार की ओर से 2021-22 में खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, तेल पाम नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम NMEO-OP की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत किसानों को ऑयल पाम की पौध सामग्री, अंतर्वर्ती खेती एवं रखरखाव, ड्रिप सिंचाई, डीजल, बिजली, सोलर पंप सेट, बोरवेल, फल कटाई उपकरणों एवं पुराने पौधों की पुनः रोपाई के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस मिशन के अंतर्गत किसानों को 1 से 5 लाख तक की राशि प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
1: सरकार द्वारा ऑयल पाम के पौध सामग्री के लिए 20 से 29 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलती है। इसके अलावा भी सरकार पहले 4 साल तक 42,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अंतर्वर्ती फसल एवं रखरखाव के लिए भी मुहैया कराती है। इस मिशन के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई के लिए 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अतिरिक्त दिया जाता है। साथ ही किसानों के लिए फसल कटाई मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली की खरीद के लिए भी सहायता का प्रावधान है।
0: कुछ किसानों के मन में ये शंका है

0: ऑयल पाम के पेड़ों की सिंचाई के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं कि ये धरती के उपजाऊपन के लिए भी हानिकारक हैं। किंतु जिन किसानों को ऑयल पाम की खेती से आज लाखों रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है, उनका कहना है कि ये सारे संचय निराधार हैं।
1: ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट की तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है।
2: मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा जमीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं, तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है।
3: ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं। वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के खट्टा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं।
4: ऑयल पाम के लिए सरकार उत्पादों की तत्काल खरीद करती है, साथ ही सरकार एक वायबिलिटी मूल्य भी घोषित करती है, ताकि यदि भाव अचानक गिर जाए तो उस अंतर का भुगतान सरकार किसानों को करती है।
0: सच तो ये है कि ऑयल पाम की खेती हमारे किसानों को और अधिक समृद्ध और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बना रही है। आप भी इसकी खेती और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं।

0: देखी सुमन भाई कितना हमने के अभी ढंग से सुनत रही संदेश। आ संदेश सुनला के बाद जैसे कि बात करते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में,
1: देखिए इतना बढ़िया ये चीज बा कि किसान भाई लोग के सम्मान के निधि है।
0: जी जी।
1: और अगर इंतजार रहेला हर किसान भाई लोग के कि हमारा खाता में दू दू हजार करके जो तीन बार आवता।
0: जी साल में तीन बार मत पूछिए। देखिए एक शुरुआत 24 फरवरी 2019 के भइल रहल उत्तर प्रदेश गोरखपुर में प्रधानमंत्री जी के द्वारा, लेकिन हालांकि एक शुरुआत जौन बा मैंने 1 दिसंबर 2018 से ही लागू मानल गई। मैंने एक
1: पहले
0: 1 दिसंबर 2018 से लागू 24 फरवरी के एक मतलब कि गोरखपुर में एक योजना के शुरुआत कल गए तो, लेकिन अब शुरू तो कल 19 में लेकिन लागू भइल हमने के दिसंबर 1 दिसंबर 2018 से। तो 23वां किस्त चल रहा बा हमने के जून में आई है। तो किसान सम्मान निधि योजना के तहत एक प्रत्यक्ष लाभ जौन बा हस्तांतरण कल जाता किसान के खाता में। इस साल में छः हज़ार रुपया, 3 किस्त में 4 महीना पर 2,000 रुपया।
1: सबसे बड़ चीज बा मनु भाई कि एकरा में किसान भाई लोग के खाता में सीधे पैसा जाता।
0: जी जी।
1: और ओकरा में कोई बिचौलिया नहीं है, सीधे एकदम खाता में मिले से किसान भाई लोग के योजना के लाभ बहुत बढ़िया से मिल रहा बा। और अगर कोनो किसान भाई लोग के लाभ नहीं मिलत अभी तक ना नहीं मिलत तो इनका जाके और जोन कृषि कार्यालय बा प्रखंड कृषि पदाधिकारी से जिला कृषि पदाधिकारी के कार्यालय से जाके मिले के चाहिए और जोन आवेदन बात उन अपलोड करा देवे के चाहिए किसान निधि के पैसा जोन बात उन आवे लगे उनका खाता।
0: जी जी। एक में देखिए जैसे कि योजना के निर्बाध रूप से करे चालू रखे खातिर KYC जरूरी बा। आ KYC खातिर हमने के जोन आधार बा आधार या OTP के माध्यम से पूरा कर सकत बन जाए। अपन आधार नंबर पंजीकृत मोबाइल नंबर या बैंक खाता मैंने दर्ज करी आ गेट डाटा पर क्लिक करी अपन पूरा पेमेंट हिस्ट्री रुआ जान सकतनी स्टेटस रुआ देख सकतनी। यदि हमने आवेदन करे या स्टेटस चेक करे में कोनो प्रकार के दिक्कत होता जिसे रुआ बतनी कृषि कार्यालय में जाके रुआ संपर्क करी आधिकारिक हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते एक हमने के लाभ ले सकत बनी जा। आई अब हमने के आज के नसीहत देखल जाओ। सुमन भाई रास्ता के बहुत लोग का करते हैं कि अतिक्रमण कर देते हैं आ एक से अगल बगल के तो परेशानी होते उनकरा खुद परेशानी होता।
1: देखी कहल गई बा ना मनु भाई
0: जी
1: कि दूसरा खाती अगर वा कुआ अगर अपना खनब दूसरा के दरवाजा पर तो वा खुदे गिरब।
0: जी जी।
1: अतिक्रमण जोन बा पहले के बताई कि हमने के पूर्वज पहले बेवकूफ रहन के हर गांव में चौड़ा चौड़ा रास्ता छोड़ ले रहन।
0: अरे गांव में गली में बैलगाड़ी घूम जात रहे।
1: बैलगाड़ी घूम जात रहे
0: इतना बढ़िया रास्ता
1: है। 5-5 10-10 बीघा के पोखरा तालाब बनवा के छोड़ ले रहन।
0: जी जी।
1: उनका ना जानत रहे कि हम ऊपर जाके बैठेगा।

0: घर बनवा ले हैं।
1: जी
0: आज की स्थिति ये बा कि पूरा जो सिस्टम बा हमने के तौन पुलिस से लेके प्रशासन से लेके जे पहले अंचल अधिकारी कर्मचारी ये गलिये नाली नापे में परेशान बा लोग।
1: जी जी
0: अतिक्रमणवाद मने सैकड़ों के तादाद में बा।
1: अतिक्रमण कहाँ नहीं है, हर गांव में कुछ ना कुछ अतिक्रमण।
0: न्यायालय तक परेशान बा, न्यायालय कहले बा कि भाई जल निकायन के अतिक्रमण के जल्दी से जल्दी हटवावल जाए। कई जगह जाके जेसीबी से हटवावे के प्रयास भी हो रहा बा, लेकिन अतिक्रमणकारी लोग बा ना वो रास्ता मने देखी शहर होके चाहे गांव,
1: जी जी
0: हर जगह रबा अगर शहर में ही निकल जाए तो पूरा सड़क आधा सड़क पर अतिक्रमण करके ठेला खमचा कुल ई रिक्शा टेम्पू सब लागल बा सड़क पर। तो ये अतिक्रमण के कारण आम जनजीवन पर बहुत बुरा असर पड़ता आ हर व्यक्ति जे भी अगर जे संवेदनशील नागरिक बा ओकरा ही सोचे के चाही कि अतिक्रमण हम अपना स्वार्थ खातिर करत नहीं लेकिन दूसरा के कतना हम परेशानी में डाल रहा बानी एक थोड़ा सा चिंता करे के चाहिए।
1: देखी अतिक्रमण से हमनी के दुर्घटना बढ़ रहा बा, अतिक्रमण से यातायात जोन बा ए सेवा में रुकावट हो रहा बा, कानूनी कार्रवाई जोन बा उ भी उ लोग पर हो रहा बा, एकरा में भी फंस जा रहा बा अतिक्रमण करे में, सामाजिक विवाद हो जा रहा बा, रास्ता का अतिक्रमण करे से सामाजिक में पड़ोसियन संगे झगड़ा झंझट हिंसक झड़प मैंने कुछ ना कुछ हो जात रहा बा। हमनी के का करते कि आपन तो जमीन पूरा ले लेते नहीं जा, अतिक्रमण में सीढ़ी बांध देते नहीं जा, अतिक्रमण में बलरेज निकाल देते हैं जा, कोनो ना कोनो तरह से माने रास्ता में कुछ ना कुछ कर देते हैं जाना के चलते एक दूसरा के परेशानी बढ़ जाता है। तो ऐसा भूल के भी ना कोई जा
0: दरवाजा तक ना एम्बुलेंस पहुंच जाता ना गाड़ी पहुंचाता ना कुछ और सब कोई बने परेशान भाई एक दो आदमी के चलते।
1: देखिए हमनी के आज के प्रश्नोत्तरी बा सुमन भाई कि हमनी के किसान सम्मान निधि योजना ये कब शुरुआत भई आ कब एकरा के लागू घोषणा कर दी, एकरा बारे में सब हमनी के लिख के भेजी जा। हमनी के पता बा कार्यक्रम किसान वाणी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी सासाराम, पिन कोड बा 82115। तो एक पता नोट कर ली आ एक पर लिखी कि किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब शुरुआत भई
0: और कब से एकरा के लागू कर ली।
1: जी जी तो आई देखिए
0: एक बार पता फिर से दोहरिया दी रे।
1: जी जी पता बा कार्यक्रम किसान वाणी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी सासाराम, पिन कोड बा 82115। तो आई आज के हमनी के मौसम के मिजाज भी जान लिया जा। देखें मौसम विभाग के अनुसार हमनी के 30 और 1 जुलाई
0: के
1: जी जी वर्षा चले के संभावना बा, वर्षा के जो स्थिति बा 4 से 5 mm हो सकता, अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड रह के उम्मीद बा, अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 75% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 25% रहे के उम्मीद बा, हवा के गति जोन बा 15 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल सकता। देखिए 30 जून के हमनी के हवा में जैसे कि आज भइल है बारिश, आज के अनुसार भी काल बारिश होखे के उम्मीद बा। यही के साथ हमनी के देखें कुछ किसान भाई लोग अगर धान उनके खेती करे और रोपनी करे के बाद तो उन लोग के सलाह दिया जाता कि भूमि के जो खेती के तैयारी बा कर दी मैंने जुताई उताई के सिंचाई करके मैंने अपना सुविधा अनुसार मध्यम किसके धान के बिजड़ा गिराई और बीज स्थली में नमी बनौले रही, आवश्यकता अनुसार जीवन रक्षक दवा ओकरा में डालत रही। यही के साथ साथ देखें समय तो एकदम सुमन भाई उड़ा गए चलत चलत के बेरा से सभी लोगों के मनु भाई के तरफ से नमस्कार बा और साथे साथे सुमन भाई रो के प्रणाम बा।
0: सब श्रोता भाई बहन के सुमन भाई की ओर से प्रणाम, मनु भाई रहो के नमस्कार।

किसान वाणी कार्यक्रम संपन्न हुआ। प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। लीजिए सुनिए सांझ गीत।

0: सुन सोचतानी की काहे ना आपन बिजनेस बढ़ाई
1: तो रोकले के बा
0: रोकले तो कोई नहीं खे बाकी समझ में नहीं खे आवत की कैसे मदद मांगी
1: हमरा से
0: तुहरा से तो बतावो
1: आकाशवाणी बाना हम सुनले बानी की आकाशवाणी के नेटवर्क देश भर में फैलल बा
0: तो ओकरा से हमरा की का फायदा बा
1: फायदा बा जौना शहर में चाही विज्ञापन के माध्यम से ओही जगह पहुंच जाई
0: तो इहो बता द कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे होई
1: बहुत आसान बा हम बतावत बानी नंबर लिखी 8700014242
0: ओ 8700014242
1: हाँ
0: तो बहिने फोन लगावत बानी 8700014242 पर

श्रोताओं, अभी आप आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से सांझ गीत सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म चलत मुसाफिर मोहलियोरे। गायक कलाकार हैं कल्पना। आइए सुनते हैं यह गीत।

अभी आप सांझ गीत सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। प्रस्तुत है सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास।

आज दिनांक 30/6/2026 को जिला पदाधिकारी रोहतास के द्वारा जिला पदाधिकारी कार्यालय प्रकोष्ठ में दैनिक साक्षात्कार आयोजित किया गया।

इस दौरान जिले के विभिन्न क्षेत्रों में आए लोगों की समस्याएं सुनी गई, जिसमें कुल 23 आवेदन प्राप्त हुए। दैनिक साक्षात्कार में दिनारा प्रखंड अंतर्गत चोर पोखर इंग्लिशपुर टोला निवासी भरत चौधरी ने आम रास्ता बाधित कर मड़ई लगाकर रास्ता बंद कर दिए जाने की शिकायत दर्ज कराई। जिला पदाधिकारी ने मामले की जांच कर शीघ्र निष्पादन हेतु आवेदन को दिनारा अंचल कार्यालय अग्रसारित किया गया। आज दिनांक 29/6/2026 को माननीय मंत्री पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग बिहार सरकार श्रीमती रमा निषाद द्वारा सासाराम के मोकर स्थित राजकीय अन्य पिछड़ा वर्ग अन्य आवासीय प्लस टू उच्च विद्यालय का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विद्यालय की शैक्षणिक एवं आवासीय व्यवस्थाओं का गहन जायजा लिया तथा छात्राओं से सीधा संवाद स्थापित कर उनकी पढ़ाई सुविधाओं एवं भविष्य की आकांक्षाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की। माननीय मंत्री ने छात्राओं को संबोधित करते हुए शिक्षा के महत्व पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही वह माध्यम है जो समाज में समान अवसर प्रदान करती है और बेटियों को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाती है। उन्होंने छात्राओं को नियमित अध्ययन अनुशासन एवं कठिन परिश्रम के साथ अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहने की के लिए प्रेरित किया। संवाद के दौरान मंत्री ने छात्राओं से उनके भविष्य की योजनाओं के बारे में जानकारी ली। माननीय मंत्री ने उन्हें प्रोत्साहित करते हुए कहा कि राज्य सरकार पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों विशेषकर बालिकाओं के शैक्षणिक विकास हेतु निरंतर कार्य कर रही है ताकि उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं बेहतर अवसर उपलब्ध हो। निरीक्षण के दौरान विद्यालय परिसर की स्वच्छता छात्रावास व्यवस्था भोजन सुरक्षा तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं की भी समीक्षा की गई। संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए कि छात्राओं की सुविधा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्रोताओं आइए सुनते हैं यह गीत।

गुड इवनिंग रोहतास कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को अर्चना का नमस्कार। गुड इवनिंग रोहतास संपन्न हुआ एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: और इस गीत के बाद
3: छाया गीत।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। ग्रामीण विकास को समर्पित महत्वाकांक्षी योजना विकसित भारत जी राम जी कल से प्रदेश भर में होगी लागू। प्रत्येक वयस्क को 125 दिन रोजगार की गारंटी मिलेगी। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा, राज्य की एनडीए सरकार सुशासन और विकास के एजेंडे पर कार्य कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने भोजपुर कथित पुलिस मुठभेड़ मामले में सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से किया इनकार। और दक्षिण पश्चिम मानसून का राज्य भर में हुआ विस्तार। मौसम विभाग ने आज पूर्वी चंपारण, कटिहार, शिवहर, सीतामढ़ी समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। ग्रामीण विकास

0: को बढ़ावा देने वाली महत्वाकांक्षी योजना विकसित भारत जी राम जी कल से प्रदेश भर में लागू कर दी जाएगी। इसके तहत हर वयस्क व्यक्ति को वर्ष में 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाएगी। ग्राम पंचायतें योजना का निर्माण करेंगी और श्रमिकों के बैंक खातों में मजदूरी का सीधा और समयबद्ध भुगतान किया जाएगा। जी राम जी योजना वर्तमान में चल रही मनरेगा योजना का स्थान लेगी। राज्य में 53,000 करोड़ रुपए की लागत से 5 प्रमुख सड़क और पुल परियोजनाओं का निर्माण किया जाएगा। इस प्रस्ताव को जल्द ही केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने की संभावना है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की कल नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के साथ हुई बैठक में इस पर सहमति बनी है। इनमें पटना पूर्णिया मार्ग, वाराणसी कोलकाता कॉरिडोर के 2 पैकेज, गंडक नदी पर पुल, मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी राष्ट्रीय राजमार्ग और अनीसाबाद दीदारगंज एलिवेटेड रोड सहित कई परियोजनाएं शामिल हैं। बिहार विधान परिषद में नवनिर्वाचित सदस्यों का कल शपथ ग्रहण होगा। परिषद के उप सभागार में अपराह्न 4 बजे आयोजित शपथ ग्रहण समारोह के दौरान स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार, भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह, भाजपा नेता संजय मयूख, लोजपा रामविलास के अशरफ अंसारी और राजद के सुनील सिंह समेत 10 नवनिर्वाचित पार्षदों को सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई जाएगी। कला संस्कृति मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा है कि राज्य के 26 संग्रहालयों में सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण का कार्य सुदृढ़ बनाया जाएगा। श्री कुमार पटना के विकास भवन में आयोजित विभागीय नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर सहायक संग्रहालय अध्यक्ष पद पर चयनित 9 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। राज्य के सरकारी स्कूलों में आगामी 4 जुलाई को अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र जारी किया है। संगोष्ठी के दौरान स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति और ड्रॉपआउट, सरकारी योजनाओं तथा स्कूलों में उपलब्ध सुविधाओं पर चर्चा की जाएगी। गौरतलब है कि 27 जून को भीषण गर्मी और अवकाश के कारण कई स्कूलों में संगोष्ठी का आयोजन नहीं हो सका था। रोहतास जिले के काराकाट प्रखंड में फर्जी डिग्री के आधार पर कार्य कर रहे 13 शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से सेवा से हटाने का निर्देश दिया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी मदन राय ने अपने आदेश में कहा है कि आरोपी शिक्षकों से मानदेय की वसूली की जाएगी, साथ ही उनके खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कराई जाएगी।
1: काराकाट प्रखंड में हमारे 13 ऐसे शिक्षक थे जो अमान्य संस्थान भारत शिक्षा परिषद उड़ीसा से उपाधि प्राप्त किए थे, उन्हीं के विरुद्ध कार्रवाई की गई है और सभी की सेवा समाप्ति के लिए प्रखंड के जो हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी सह सचिव है उनको लिखा गया है कि अगर बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के अगर ये सब सेवा में है तो फिर उनको सेवा से मुक्त किया जाए और जो राशि लिए हैं उनकी वसूली की जाए।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। हरियाणा के हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है जो मिट्टी और उसमें आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगी। उन्होंने किसानों को जैविक खेती अपनाने की भी सलाह दी है।
2: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहां भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
0: पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध कल से हट जाएंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर 1 जुलाई से एक दिन में अधिकतम 200 लीटर पेट्रोल या डीजल देने की सीमा समाप्त कर दी गई है। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला किया गया है। गौरतलब है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण 12 जून से पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री पर अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। सर्वोच्च न्यायालय ने भोजपुर कथित फर्जी पुलिस मुठभेड़ मामले की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है।

0: न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति शील नागू की अवकाशकालीन पीठ ने याचिकाकर्ता को इस मामले में पहले उच्च न्यायालय का रुख करने को कहा है। यह याचिका अधिवक्ता विशाल तिवारी ने दाखिल की थी। गौरतलब है कि राज्य सरकार के निर्देश पर मामले की न्यायिक जांच शुरू की जा चुकी है। उप मुख्यमंत्री सह जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में एनडीए सरकार सुशासन और विकास के एजेंडे पर कार्य कर रही है। श्री चौधरी ने पटना स्थित जदयू कार्यालय में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि विकास कार्यों में केंद्र सरकार का महत्वपूर्ण सहयोग मिल रहा है।
1: सरकार के 100 दिन पूरे हो रहे और इस दरमियान सरकार ने अपनी विश्वसनीयता कई मायने में प्रमाणित की। बिहार सरकार जो जनता की अपेक्षाएं हैं उसी के अनुरूप चल रही। सम्राट चौधरी जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं इन्होंने घोषणा जारी रखी है कि सरकार के चलने की दिशा जो नीतीश कुमार जी ने तय की थी वही रहेगी।
0: शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_पटना को फॉलो कर सकते हैं। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि राज्य में संभावित बाढ़ और सूखे की स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार ने पर्याप्त तैयारी की है। सरकार ने नई योजना के तहत बाढ़ के पानी को नहरों और अन्य माध्यमों से संग्रहित करने की व्यवस्था की है।
1: बाढ़ के समय में गंगा गंडक से पानी निकाल के जो हमारे अलग अलग जलाशय जिनमें सिंचाई के लिए पानी कम उपलब्ध रहता है, ऐसी स्थिति से निपटने के लिए बाढ़ के समय में नदियों के पानी को स्थानांतरित करके हम लोग इन जलाशयों में फिर से सुरक्षित जमा करेंगे, जिससे कि अल्पवृष्टि का समय हो तो वैसी हालत में हम लोग अपने जलाशय से किसानों को सिंचाई के लिए पानी दे सकें।
0: दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे राज्य में सक्रिय हो गया है। इसके कारण कई जिलों में झमाझम बारिश हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार खगड़िया, समस्तीपुर और जमुई में आज सुबह तेज बारिश हुई। पटना समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम भागों में भी कुछ स्थानों पर बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी चंपारण, कटिहार, शिवहर, सीतामढ़ी, भागलपुर, पूर्णिया समेत कई जिलों में तेज हवा के साथ भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
2: दिनांक 1 जुलाई राज्य के पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, कटिहार एवं पश्चिमी चंपारण जिलों में मेज गर्जन वज्रपात तथा अत्यधिक भारी वर्षा के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के शिवहर एवं सीतामढ़ी जिलों में मेज गर्जन वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। बांका, भागलपुर एवं पूर्णिया जिलों में मेज गर्जन वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: केंद्र सरकार ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के सामने अपील की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय के अनुसार पिछले वर्ष सितंबर में जारी अधिसूचना में अपील दायर करने की अंतिम तिथि इस वर्ष 30 जून यानी आज तक निर्धारित की गई थी। विभिन्न हितधारकों न्यायाधिकरण में शामिल अपील दायर करने की भारी संख्या के कारण आई तकनीकी बाधा का हवाला देते हुए सरकार से अंतिम तिथि बढ़ाने का अनुरोध किया था। सरकार ने करदाताओं को भी सलाह दी है कि वे समय रहते ही अपील दायर कर दें और अंतिम तिथि का इंतजार न करें। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज सेवानिवृत्त हो गए। अपने विदाई समारोह के तहत उन्होंने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 4 दशकों से अधिक समय तक भारतीय सेना में सेवा करना उनके लिए सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। जनरल

द्विवेदी ने नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपते हुए उनके सफल भविष्य की शुभकामना दी। आकाशवाणी पटना में कार्यरत वरीय अभियंता सहायक विपिन चंद्र गुप्ता आज सेवानिवृत्त हो गए। इस अवसर पर आयोजित विदाई कार्यक्रम में केंद्र अध्यक्ष एचडी सिडाम समेत अधिकारियों और कर्मियों ने उन्हें सफल और स्वस्थ जीवन की शुभकामनाएं दी। शेखपुरा जिले के कई पंचायत में आज सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि जिलाधिकारी के आदेश पर आयोजित विशेष शिविरों में वरीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने लोगों की समस्याएं सुनी। रोहतास जिले के बौलिया रोड स्थित सुराज संस्था के कार्यालय में एचआईवी एड्स की ऑनलाइन काउंसिलिंग को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मास्टर ट्रेनर शैलेंद्र कुमार शुक्ला ने एड्स संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए स्लॉट बुक करने की प्रक्रिया बताई। अररिया के जिलाधिकारी विनोद दुहन ने जिले में चलाई जा रही प्रधानमंत्री मुफ्त सूर्यघर बिजली योजना की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने के

मास्टर ट्रेनर शैलेंद्र कुमार शुक्ला ने एड्स संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए स्लॉट बुक करने की प्रक्रिया बताई। अररिया के जिलाधिकारी विनोद दुहन ने जिले में चलाई जा रही प्रधानमंत्री मुफ्त सूर्यघर बिजली योजना की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। शिवहर के एडीआर भवन में आज जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से स्थायी लोक अदालत के संचालन को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की गई। इसकी अध्यक्षता प्राधिकार के सचिव सह न्यायाधीश ललन कुमार रजक ने किया। मुंगेर के स्थानीय प्रेक्षागृह में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत आज कन्या जन्मोत्सव सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी निखिल धनराज निपणिकर ने इसका शुभारंभ किया। सारण जिले के चिरांद में आज 19वें चेतना महोत्सव का शुभारंभ हुआ। कला संस्कृति मंत्री प्रमोद कुमार ने महोत्सव का उद्घाटन किया। महोत्सव के दौरान गंगा पूजन, महाआरती, चित्र प्रदर्शनी और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सुपौल जिले के स्थानीय मेडिएशन सेंटर में स्थायी लोक अदालत की जानकारी देने के लिए जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। लोक अदालत के अध्यक्ष संजय कुमार झा ने अदालत के क्षेत्राधिकार और कार्य प्रणाली की जानकारी दी। सीवान पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत 35 लोगों को उनके गुम और चोरी हुए मोबाइल फोन लौटा दिए। पुलिस अधीक्षक पूरन कुमार झा ने वास्तविक मालिकों को उनके फोन सौंप दिए। अरवल जिले के कोनिका गांव में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर भारी मात्रा में देसी शराब नष्ट कर दिया। उत्पाद अधीक्षक ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि मौके पर मौजूद शराब भट्टी को भी ध्वस्त कर दिया गया। जहानाबाद जिले के काको प्रखंड अंतर्गत आमथुआ में जागृति योजना 2025 के तहत सुरक्षित बचपन सुरक्षित भविष्य विषय पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुंगेर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत दियारा इलाके में गंगा नदी में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव की तबीयत खराब होने के कारण उन्हें पटना के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राज्य सरकार के कई मंत्रियों, विधायक और पार्षद ने अस्पताल पहुंचकर उनका हालचाल लिया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ग्रामीण विकास को समर्पित महत्वाकांक्षी योजना विकसित भारत जी राम जी कल से प्रदेश भर में होगी लागू। प्रत्येक वयस्क को 125 दिन रोजगार की गारंटी मिलेगी। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा, राज्य की एनडीए सरकार सुशासन और विकास के एजेंडे पर कार्य कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने भोजपुर कथित पुलिस मुठभेड़ मामले में सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से किया इनकार। और दक्षिण पश्चिम मानसून का राज्य भर में हुआ विस्तार। मौसम विभाग ने आज पूर्वी चंपारण, कटिहार, शिवहर, सीतामढ़ी समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: चामुंडेश्वरी मंदिर और करकटगढ़ जलप्रपात तक पर्यटकों की सुविधा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार न्याय के साथ विकास की नीति पर कार्य कर रही है। इधर कैमूर जिले के सभी 146 पंचायतों में 28 जून को पंचायत विकास दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य पंचायतों को सशक्त बनाकर गांवों के समग्र विकास को गति देना, आम जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना तथा सरकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना रहा। जिले के मुख्य कार्यक्रम का आयोजन मोहनिया प्रखंड की उसरी पंचायत में हुआ, जहां प्रभारी मंत्री संजय सिंह टाइगर ने ग्रामीणों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याओं को सुनी और संबंधित अधिकारियों को त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पंचायतें विकास की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है और जन भागीदारी के बिना समग्र विकास संभव नहीं है। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक पदाधिकारियों तथा बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भागीदारी रही। विभिन्न विभागों ने सरकारी योजनाओं की जानकारी दी और प्राप्त शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया शुरू की। कैमूर जिले में मुहर्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण और सौहार्द वातावरण में संपन्न हुआ। जिला मुख्यालय भभुआ सहित विभिन्न प्रखंडों में ताजिया जुलूस निकाले गए। विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने जिले के 242 स्थानों पर दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल की तैनाती की थी। जिलाधिकारी नितिन कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक शिखर चौधरी ने लगातार विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी की। मनरेगा योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिलाधिकारी नितिन कुमार सिंह ने समीक्षा के दौरान कार्य में शिथिलता पाए जाने पर 72 पंचायत रोजगार सेवकों और 6 कार्यपालक कार्यक्रम पदाधिकारियों से जवाब तलब करते हुए उनके मानदेय एवं वेतन भुगतान पर रोक लगा दी है। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्यों में तेजी लाने और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। बीते दिनों जिले में जिलाधिकारी नितिन कुमार सिंह की अध्यक्षता में बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में बताया गया कि पिछले 3 महीने में जिले में बाल श्रम से मुक्त कराए गए 13 बच्चों का सफल पुनर्वास किया गया है। परवरिश योजना के तहत 404 बच्चों तथा प्रयोजन एवं स्पॉन्सरशिप योजना के अंतर्गत 248 बच्चों को नियमित सहायता दी जा रही है। वहीं विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान के माध्यम से अब तक 73 बच्चों को दत्तक ग्रहण कराया जा चुका है। जिलाधिकारी ने सभी योजनाओं के प्रभावी संचालन के निर्देश दिए। भीषण गर्मी के बीच मंगलवार को जिले में मौसम में अचानक बदलाव आया और कई क्षेत्रों में अच्छी बारिश हुई। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली, वहीं किसानों के चेहरे भी खिल उठे। कृषि कार्य के लिए तैयार धान के बिचड़े को इस वर्षा से विशेष लाभ मिला। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त के तहत कैमूर जिले के 1,18,350 किसानों के खातों में 23,67,00,000 रुपए की राशि हस्तांतरित की गई है। जिला कृषि पदाधिकारी विकास कुमार ने बताया कि किसानों के खाते में 2,000 रुपए पहुंचने के बाद बड़ी संख्या में किसानों ने योजना के प्रति संतोष व्यक्त की। भभुआ प्रखंड के सिक्ठी गाँव में आयोजित सखी वार्ता कार्यक्रम में महिलाओं और किशोरियों को सामाजिक कुरीतियों, महिला अधिकार, घरेलू हिंसा, दहेज निषेध, बाल विवाह रोकथाम, बालिका शिक्षा तथा साइबर अपराध से बचाव के प्रति जागरूक किया गया। महिला एवं बाल विकास निगम के जिला प्रबंधक कुमारी प्रियंका राज ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का भी आह्वान किया। भभुआ प्रखंड कार्यालय के पुराने भवन एवं परिसर में अधिकारियों के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त नए आवासीय परिसर के निर्माण की तैयारी शुरू की गई है। जिला प्रशासन ने लगभग 1 एकड़ 42 डिसमिल भूमि के लिए प्रस्ताव तैयार कर सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया है। स्वीकृति मिलने के बाद भवन निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कैमूर जिले के न्यायपालिका, जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग, पतंजलि परिवार तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से अनेक स्थानों पर योग शिविर आयोजित किए गए।
1: अभी आप सुन रहे थे कैमूर जिले की हलचल, इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता श्रीकांत पांडे।
2: हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम ई मन पसंद। ई मन पसंद कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को अर्चना का नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत

0: AIR at 90.
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है कैमूर जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता श्रीकांत पांडे।
2: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जिले के भगवानपुर प्रखंड के मुंडेश्वरी धर्मशाला परिसर में आयोजित सहयोग शिविर में भाग लेते हुए कैमूर जिले के लिए लगभग 196.60 करोड़ रुपए की लागत वाली 60 विकास योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि

फिल्म हम दिल दे चुके सनम से गायक कलाकार हैं कविता कृष्णमूर्ति और साथी इस गीत को पसंद करने वाले हैं। कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर, विजया लक्ष्मी सावनकर, राजेश राकेश ऋषिता। वाइट फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिवेंदु भूषण, संस्कृति और पौरुष।

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म संगम से गायक कलाकार हैं मोहम्मद रफ़ी। इस गीत को पसंद करने वाले हैं दीवाना रेडियो लिस्नर क्लब जमानिया गाजीपुर यूपी से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल, कमरिया जमशेदपुर से बिपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव कुमार जायसवाल, आर्य कुमार जायसवाल, जमानिया रेलवे स्टेशन से एसपी जायसवाल, डिंपल जायसवाल, गमरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल, आर्य जायसवाल, व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से दिवेंदु भूषण, रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी और कुलदीप।

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म सौदागर से, गायक कलाकार हैं मनहर कविता कृष्णमूर्ति और सुखविंदर। इस गीत को पसंद करने वाले हैं सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिटा बजाज। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला ओम प्रकाश, आरती सुरलकर। उत्तर नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश।

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म प्रेम कहानी से, गायक कलाकार हैं किशोर कुमार, लता मंगेशकर। इस गीत को पसंद करने वाले हैं। गांव टोरोवाल, जिला नवान शहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी, डॉक्टर प्रियम थांदी, बेबी वामिका वाणी थांदी। अनारकली बाजार जगराओ से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, जयपाल मल्होत्रा। ग्राम नहौना प्रखंड सासाराम से आप हैं भरत सिंह, धर्मराज सिंह, डॉक्टर अनिल, जयनाथ सिंह, जगदीश सिंह, दशरथ सिंह, विमला देवी, मास्टर अनिल, रविंद्र सिंह और डमरू कलाकार।

मैं तुझे प्यार करूंगा तो तेरी याद आएगी, तेरी याद आएगी तो हम तुम मिलेंगे। मैं तुझे प्यार करूंगा तो तेरी याद आएगी, तेरी याद आएगी तो हम तुम मिलेंगे। हम तुम मिलेंगे तो, हम तुम मिलेंगे तो सब लोग देखेंगे, सब लोग देखेंगे तो, देखेंगे तो

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ई मनपसंद आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से अर्चना के साथ। कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म प्रेम रोग। गायक कलाकार हैं सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर। इस गीत को पसंद करने वाले हैं फुटानी चौक नरहन स्टेट से ललन मिश्रा, नूतन मिश्रा, गुंजन, छोटू, अमित, सुमित, अमर।

पराशर बेबी आराध्या और लल्लू पंडित। रिंगनी छत्तीसगढ़ से, दिनेश वर्मा करुणा वर्मा। बागपत उत्तर प्रदेश से, संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया, अपार ढिंगिया।

श्रोताओं, अभी हम आपकी कसम फिल्म का गीत सुन रहे थे। गायक कलाकार थे किशोर कुमार, लता मंगेशकर इस गीत को पसंद करने वाले थे। गांव डंडी जम्मू कश्मीर से उस्मान अली अंसारी, तहसील भद्रवाह शेख जफर हसन। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबिहा नवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय।

श्रोताओं, अभी हम सुन रहे थे फिल्म मस्ती से। गायक कलाकार हैं आनंद राज आनंद। इस गीत को पसंद करने वाले थे अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय, नवनीत राय, बक्सर बिहार से सरफुदी।

अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और सुरीत रमेश साहू। कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति है फिल्म कन्यादान से। इस गीत को पसंद करने वाले हैं डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभ्यानंद आर्य और परमानंद आर्य, सरिमपुर बक्सर से राजेश डी अंसारी और आसमा खातून अंसारी, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा।

गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभ्यानंद आर्य और परमानंद आर्य, सरिमपुर बक्सर से राजेश डी अंसारी और आसमा खातून अंसारी, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा।

श्रोताओं, ई मन पसंद कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को अर्चना का नमस्कार। ई मन पसंद कार्यक्रम संपन्न हुआ FM बैंड के 103.4 MHz पर। यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। दिल्ली से प्रसारित समाचार संध्या की कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 कल से लागू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड का शुभारम्भ किया। दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू। मॉनसून के अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात टेक्सास में आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से। अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 कल से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं, कार्यान्वयन प्रणालियां पूरी तरह से तैयार हैं और चल रहे कार्य बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगे। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतन भोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। ये अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतन भोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से शिक्षा के माध्यम से समान और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है।

0: आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी। राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। उन्होंने
1: जनजातीय विश्वविद्यालय से विशेष रूप से ये अपेक्षा भी की जाती है कि वे जनजातियों भाषा बोलियां के संरक्षण पर मिशन मोड में काम करेंगे। मुझे बताया गया है कि संस्था के ट्राइबल स्टडीज विभाग द्वारा कुई और सावरा समेत अनेक जनजातीय बोलियों के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इसी प्रकार से जमीनी कार्य किया जा रहा है।
0: भारतीय रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। रेलवे ने दक्षिण पूर्वी रेलवे में लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से शेष 48 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने की मंजूरी दी है। इससे देश में रेलवे नेटवर्क की डिजिटल संचार व्यवस्था मजबूत होगी। ये परियोजना दक्षिण पूर्वी रेलवे के 4 प्रमुख डिवीजनों में 1600 किलोमीटर से अधिक मार्ग पर फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। पूर्वी रेलवे के आसनसोल डिवीजन के हाई डेंसिटी नेटवर्क और हाईली यूटिलाइज्ड नेटवर्क मार्गों पर स्थित 27 स्टेशनों या डिब्बों में रिले आधारित इंटरलॉकिंग को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग से बदलने की परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। स्वीकृत कार्य में 28 रिले आधारित इंटरलॉकिंग को अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणालियों से बदला जाएगा। परियोजना की लागत 400 करोड़ रुपये से अधिक है। इसके अलावा रेलवे ने करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वी मध्य रेलवे के 44 किलोमीटर से अधिक लंबे मानसी सहरसा खंड के दोहरीकरण को भी स्वीकृति दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम FCRA 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक यानी EOCI कार्ड सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन दोनों पहलों से नागरिक सेवाएं बेहतर होंगी और FCRA पोर्टल के माध्यम से विदेशी चंदा प्राप्त करने वाली संस्थाओं को होने वाली कठिनाइयां दूर होंगी। उन्होंने कहा कि सख्त निगरानी व्यवस्था से देश की सुरक्षा और मजबूत होती है। गृह मंत्री ने बताया कि नई EOCI व्यवस्था में पहले की कई समस्याओं का समाधान किया गया है। इससे 50 लाख से अधिक OCI कार्ड धारकों को सुविधा मिलेगी। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने 26 से अधिक देशों के साथ प्रवासन और आवागमन संबंधी 28 साझेदारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासन, मानव तस्करी, धोखाधड़ी करने वाले बिचौलियों और शोषण जैसी चुनौतियों से निपटना सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है। वे आज नई दिल्ली में मानव संसाधन आवागमन मंच को संबोधित कर रहे थे। विदेश मंत्री ने कहा कि सुरक्षित और कानूनी प्रवासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म से साफ दिखाई देती है।
2: One key pillar which has brought about a transformation.
3: प्रवासन से जुड़े प्रबंधन में बहुत बड़ा बदलाव डिजिटल व्यवस्था और प्रणालियों से आया है। सुरक्षित और कानूनी आवाजाही के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म में दिखती है। इसकी शुरुआत के बाद से ही 50 लाख से ज्यादा लोगों को विदेश जाने की मंजूरी दी जा चुकी है। यह डिजिटल तंत्र लोगों की आवाजाही को आसान बनाने के साथ साथ प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का एक वैश्विक उदाहरण बन गया है।
0: विदेश मंत्री ने आज आयरलैंड की विदेश मंत्री हेलेन मैकेंटे को यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभालने पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि उन्होंने व्यापार और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर भी चर्चा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मजबूत अर्थव्यवस्था से ही देश की रक्षा क्षमता मजबूत होती है। वे आज गुजरात के वडोदरा में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है।
4: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली 46,000 करोड़ था, लेकिन आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन बढ़कर 1,78,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। इसके अलावा भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 39,000 करोड़ का कर लिया है और आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने में गुजरात अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकता है।
0: रक्षा मंत्री ने कहा कि वडोदरा अब देश की

0: निजी क्षेत्र की पहली सैन्य विमान निर्माण इकाई का केंद्र बन गया है। ये टाटा समूह और एयरबस मिलकर C-295 परिवहन विमान बना रहे हैं। जनरल धीरज सेठ ने आज देश के 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाल लिया है। उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया है। जनरल धीरज सेठ पुणे स्थित खड़कवासला की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं। उन्हें दिसंबर 1986 में बख्तरबंद कोर में कमीशन मिला था। इससे पहले जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
1: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: दिल्ली और 4 राज्यों कर्नाटक, झारखंड, मेघालय तथा महाराष्ट्र में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत दिल्ली में 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पहले दिन 1,68,200 से अधिक गणना प्रपत्र मतदाताओं को वितरित किए गए। वहीं 7,600 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण किया गया। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दाखिल की जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। मतदाता अपना गणना प्रपत्र ऑनलाइन भी voters.eci.gov.in पर भर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज अपना गणना प्रपत्र जमा किया और राष्ट्रीय राजधानी के सभी पात्र मतदाताओं से मतदाता सूची के चल रहे इस अभियान में भाग लेने की अपील की। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उधर महाराष्ट्र में भी बूथ स्तरीय अधिकारियों ने घर घर जाकर मतदाता रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए सत्यापन अभियान शुरू किया है।
3: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 5 अगस्त को जारी की जाएगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। जिन वोटरों का नाम पिछली SIR की मतदाता सूची में शामिल था, उन्हें आमतौर पर कोई नया दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। बाकी वोटरों को निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 दस्तावेजों में से कोई एक जमा करना पड़ सकता है। आयोग का कहना है कि इस अभियान का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि जिसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए उसका नाम जरूर शामिल हो और जो इसके लिए योग्य नहीं है उसका नाम सूची में ना हो। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा व्यवस्था में कल से बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। अब राज्य के सभी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के तहत संचालित होंगे। नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता देने, उनकी कार्यप्रणाली की निगरानी करने और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का काम करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा 2 प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील और अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने जन्मजात नागरिकता को समाप्त करने के उद्देश्य से जारी किए गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकारी आदेश को रद्द कर दिया है और इस बात की पुष्टि की है कि अमेरिका में जन्म लेने वाले लगभग हर व्यक्ति को स्वतः ही अमेरिकी नागरिकता प्राप्त हो जाती है। न्यायालय ने 6-3 के बहुमत से कार्यकारी आदेश को गैर कानूनी घोषित किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी है। इससे पहले वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न व्यवधानों के कारण अस्थायी और लक्षित राहत के रूप में केंद्र ने आज तक पूर्ण सीमा शुल्क में छूट प्रदान की थी। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के स्थायी मिशन ने पक्तिया, पक्तिका और कुनार प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। मिशन ने कहा है कि इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित कई अफगान नागरिक मारे गए और घायल हुए।

0: वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था और 55,000 तीर्थ यात्रियों के ठहरने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा की 57 दिनों की तीर्थ यात्रा की शुरुआत 3 जुलाई से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हूल दिवस पर सिधो कान्हू, चंद भैरव, फूलो झानो सहित विदेशी शासन के अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वाले सभी वीर आदिवासी योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। हूल दिवस के अवसर पर झारखंड में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमनदीव तथा राजस्थान में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। बृहस्पतिवार तक बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, ओडिशा में मूसलाधार बारिश की आशंका है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज आइवरी कोस्ट का सामना नॉर्वे से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे से अमेरिका के टेक्सास में खेला जाएगा। वहीं देर रात 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कल से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। 2 दिन तक चलने वाला ये सम्मेलन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन पर सचिवों से बातचीत की। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 कल से लागू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड का शुभारंभ किया। दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है लोकधारा। आइए सुन लेते हैं लोकधारा के अंतर्गत कुछ लोकगीत।

श्रोताओं, अभी आप देवी गीत सुन रहे थे वंदना कुमारी से, और अब आइए सुनते हैं विंध्यवासिनी सिन्हा से बरसाती गीत।

लोक गीतों का कार्यक्रम लोकधारा संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। महफिल के तहत पेश है चंद गजलें।

श्रोताओं, अभी आप गुलाम अली को सुन रहे थे। महफिल कार्यक्रम संपन्न हुआ। एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण विविध भारती मुंबई से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

लेकिन कल्याण जी और आनंद जी की जोड़ी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। इसीलिए आज के इस कार्यक्रम में ज्यादा जिक्र तो कल्याण जी का होगा, लेकिन कुल मिलाकर ये बात कल्याण जी और आनंद जी पर केंद्रित रहेगी। यानी जोड़ी कल्याण जी आनंद जी की बातें होंगी आज के इस प्रोग्राम में।

कल्याण जी भाई दोनों भाइयों में सबसे बड़े हैं। 1929 में उनका जन्म हुआ था, जबकि आनंद जी का जन्म कच्छ में सन 1933 में हुआ था। मजे की बात यह है कि आनंद जी तो बचपन में कच्छ गुजरात में रहे, लेकिन कल्याण जी मुंबई में बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने चले आए। आगे चलकर इनका परिवार मुंबई आ गया। दोनों भाई चाल के अपने घर में पड़ोसियों के घरों में रेडियो सुना करते थे, क्योंकि रेडियो तब एक लग्जरी हुआ करता था और सबके घरों में रेडियो नहीं होता था। जब घर में ग्रामोफोन आया तो दोनों भाई मिलकर सुरेंद्र, शांता आप्टे, कुंदनलाल सहगल और पंकज मलिक के गीतों को बड़े चाव से सुना करते थे। सन 1954 अचानक कल्याण जी वीरजी शाह शोहरत की ऊंचाई पर पहुंच गए। दरअसल शशधर मुखर्जी की फिल्म नागिन में उन्होंने संगीतकार हेमंत कुमार के निर्देशन में क्ले वॉयलिन पर बीन की आवाज निकाली थी। ये अपने आप में एक करिश्मा था, क्योंकि इससे पहले फिल्म संगीत में जब भी बीन

इस गाने के वादक, जी हाँ वादक यानी म्यूजिशियन कल्याण जी को बड़ी प्रसिद्धि मिली। कल्याण जी वीरजी शाह ने बतौर अकेले संगीतकार फिल्म सट्टा बाजार में भी संगीत दिया था। अभी तक आनंद जी उनके साथ नहीं आए थे।

सन 1958 में निर्माता निर्देशक कीकू भाई देसाई ने दोनों भाइयों को सम्राट चंद्रगुप्त नामक फिल्म में बतौर स्वतंत्र जोड़ी पहला मौका दिया। हम आपको बता दें कि कीकू भाई मनमोहन देसाई के पिता थे।

दिलचस्प बात यह है कि मनमोहन देसाई ने सन 1960 में जब छलिया फिल्म बनाई तो भी कल्याण जी आनंद जी को मौका दिया। छलिया का संगीत बड़ा ही लोकप्रिय हुआ।

सन 1964 की बात है। मनोज कुमार फिल्म उपकार बना रहे थे। उनकी इच्छा थी कि इसका संगीत शंकर जयकिशन दें, लेकिन इस जानी मानी जोड़ी के बीच तनाव चल रहा था, इसलिए बात कुछ बनी नहीं।

उपकार वो फिल्म है जिसने कल्याण जी आनंद जी को शंकर जयकिशन के प्रभाव से मुक्त किया। यहां से वो संगीत आया जिसमें रिदम का अनूठा पैटर्न था।

ने संगीत के कदरदान केवल रिदम और अरेंजमेंट को सुनकर कल्याण जी आनंद जी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी का फर्क समझ लेते हैं

से ने संगीत के कद्रदान केवल रिदम और अरेंजमेंट को सुनकर कल्याण जी आनंद जी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी का फर्क समझ लेते हैं।

ताशे और बांसुरी और साथ में ग्रुप वायलिन, सब कुछ कल्याण जी आनंद जी के संगीत में अनूठा और निराला है।

कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। ये गाना मेरे छोटे भाई आनंद जी ने कई सालों पहले इंदिओ जी का लिखा हुआ वो तैयार करके रखा हुआ था। तो मनोज जी नए नए डायरेक्टर हुए थे, उपकार पिक्चर बना रहे थे, तो उनको ये गाना बहुत पसंद आ गया। उन्होंने बोला कि कल्याण जी भाई ये गाना मेरे लिए रख लीजिए, मैं उपकार फिल्म में प्राण जी के पास गाऊंगा। तो हमने सोचा कि ये उनको उस टाइम प्राण जी फिल्मों में गाया नहीं करते थे, तो हमने सोचा कि बिल्कुल नए डायरेक्टर हैं और शायद हमें भी नए कर देंगे। लेकिन मनोज जी ने उपकार फिल्म में वो गाना प्राण जी से इतना अच्छा गवाया और प्राण जी ने भी इतना अच्छा गाया है कि जब अपन फिल्म देखते हैं तो लगता नहीं है कि किसी प्लेबैक सिंगर ने ये गाना गाया होगा। बिल्कुल प्राण जी ऐसी इसी तरह गा रहे हैं कि जैसे वो ही गा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली गाना मन्ना डी जी ने गाया हुआ है।

मुकेश और कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी ने कुछ बड़े अद्भुत नगमे दिए हैं। दरअसल शंकर जयकिशन के बाद अगर मुकेश की प्रतिभा को किसी ने पहचाना तो वो कल्याण जी आनंद जी ही थे।

तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार न कर। आपको शायद मालूम होगा कि ये गाने के लिए हम लोगों को सिने म्यूजिक डायरेक्टर का फर्स्ट टाइम अवार्ड मिला था। और मुझे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि कोई भी गाना मैं जब अनाउंस करता हूँ तो सब लोग चाहते हैं कि इसके साथ कोई हंसी मजाक जरूर होनी चाहिए। तो इसमें तो सही वाक्या हो गया था, वो मैं आपको सुनाता हूँ। क्योंकि मुझे एक दिन एक ये गाना रिकॉर्ड होने के बाद किसी एक लड़की का फोन आया कि भाई हमें आपका मैं तो एक ख्वाब हूँ ये गाना बहुत पसंद आया और मैं चाहूंगी कि आपके मुंह से ये गाना सुनूं। तो हमने उनको म्यूजिक हॉल पे बुला लिया, तो एक दफे सुनाया। उसके बाद फिर वो दो चार दिन के बाद आई कि मुझे हमें ये फिर गाना सुनाइए। तो तीन चार दफे उन्होंने जब हमसे सुना तो मैं उनके सामने देख रहा था। तो बाद में चौथी दफे जब मैंने ये गाना सुनाया तो मैंने ये गाना बोला कि मैं तो एक बाप हूँ, इस बाप से तो प्यार न कर, क्योंकि उसकी निगाहों से लग रहा था कि इसमें और कुछ चक्कर है।

कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी ने भारतीय शास्त्रीय संगीत और पाश्चात्य संगीत को मिला दिया। वे प्रगतिशील संगीतकार थे, प्रगतिशील इस मायने में कि उन्होंने संगीत के बने बनाए ढर्रे को तोड़ा, लगातार नए प्रयोग किए, नई ध्वनियां अपने संगीत में पिरोई और बनाया अद्भुत संगीत। ढोल बजा

चाहे उदास नगमा हो या ढमाढम संगीत, कल्याण जी आनंद जी की कोई सानी नहीं। आइए कुछ उदास नगमे सुने जाएं इस संगीतकार जोड़ी के।

0: फिल्म समझौता।
1: समझौता कमों से कर लो जिंदगी में।
2: समझौता कमों से कर लो जिंदगी में कम भी मिलते हैं। ये गाना मेरे एक डॉक्टर दोस्त हैं, उन्होंने एक दिन मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन दिया। मैं बोले किस बात की कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहे हैं आप? तो बोले भाई आपका मैं गाना लेके गया था और उससे मेरा एक पेशेंट बहुत अच्छा हो गया। मतलब गाने से पेशेंट अच्छा हो गया? बोले आपके गाने के कुछ वर्ड्स ऐसे थे कि उसकी लाइफ में कुछ चेंज आ गया। तो अरे सही वाक्य है कि अगर इस गाने को करेक्ट कोई मीनिंग समझे तो जिंदगी की काफ़ी उलझने कम हो जाती है।

आपको ये जानकर अचरज होगा कि कल्याण जी आनंद जी की इस सदाबहार और सुपरहिट जोड़ी को जीवन में केवल एक बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सन 1974 में ये फिल्म थी कोरा कागज। कल्याण जी आनंद जी की संगीत यात्रा इतनी लंबी है कि आधे घंटे के सीमित समय में हम सिर्फ ऊपर ऊपर से उनके सफर पर नजर डाल सकते हैं। कुल मिलाकर ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि ये जोड़ी लगातार हिट संगीत देती रही, लगातार लोगों के दिलों पर राज करती रही।

कल्याण जी आनंद जी की ये जोड़ी टूट गई है। टूटना शायद आपको सही शब्द ना लगे, ये जोड़ी एक दूसरे से बिछड़ गई है। आज कल्याण जी नहीं हैं, लेकिन आनंद जी हैं और है इस जोड़ी का अनूठा संग।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के कल्याण जी पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

रसरंग के तहत अभी आप एल्बम सॉन्ग सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए चित्रपट तराने। चित्रपट तराने कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को अर्चना का नमस्कार। श्रोताओं, प्रेम हमारी जिंदगी की जरूरत है। प्रेम बंजर में बारिश की तरह है। प्रेम फूलों में समाहित खुशबू की तरह खुला है। प्रेम वह शय है जिससे नफरत की कटार भी पायलों की झंकार में बदल जाती है।

मोहब्बत में मेलजोल रिश्तों की जीवंतता तय करती है। मुलाकातों की लंबी लंबी घड़ियाँ भी छोटी दिखती है। काश मुलाकातों के दौर कभी समाप्त ही ना होते।

चित्रपट तराने संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी।

प्रातः 7:30 पर सुनिएगा नमस्ते रोहतास और 8:20 पर पसंद आपकी सुनिएगा।

9:10 पर आप सुनते हैं गीत मलिका और 10:05 पर सुनिएगा कार्यक्रम श्रम संसार।

अब एक नज़र कल के मौसम पूर्वानुमान पर। कल का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस संभावित है। हवा की रफ्तार 5 किलोमीटर प्रति घंटा और हवा में आर्द्रता 70% रह सकती है।

एफएम बैंड के 103.4 मेगा हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित समाचार, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। समय रात्रि के 11 बजने को है। अब से कुछ ही देर में प्रसारित किए जाएंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पजश्कियन से टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पजश्कियन ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम और आगामी कदमों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने ईरान की अमरीका के साथ बनी सहमति का स्वागत किया और भारत के स्थापित रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने और नौवहन तथा व्यापारिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया। पश्चिम एशिया संघर्ष को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। इससे पहले वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न व्यवधानों के कारण अस्थायी और लक्षित राहत के रूप में केंद्र ने आज तक पूर्ण सीमा शुल्क में छूट प्रदान की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा दो प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने अंतर विभागीय समन्वय और सूचित निर्णय लेने के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में पीएम गति शक्ति के व्यापक उपयोग को प्रोत्साहित किया। इस दौरान सचिवों ने दो प्रमुख विषयों के अनुरूप अपने मंत्रालयों और विभागों द्वारा उठाए जा रहे प्रमुख कदमों की रूपरेखा प्रस्तुत की। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील तथा अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 कल से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतन भोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। ये अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतन भोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से शिक्षा के माध्यम से समान और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए।
2: जनजातीय विश्वविद्यालय से विशेष रूप से ये अपेक्षा भी की जाती है कि वे जनजातीय भाषा बोलियां के संरक्षण पर मिशन मोड में काम करेंगे। मुझे बताया गया है कि संस्था के ट्राइबल स्टडीज विभाग द्वारा